आन दिन कर्म करे बहु तेरे सुपने सुख ना होई। ज्ञानी गुरबिन भगत ना होई, कोरे रंग कदे ना चढ़े जे लोचे सब कोई रहाओ। जप तप संयम वर्त करे पूजा, मन मुख रोग ना जाई। अंतर रोग महा अभिमाना, दूजे पाए खोवाई। बाहर भेख बहुत चितराई, मनुआ दे दिस्तावे। हमें ब्यापिया शब्द ना चीने, फिर जूनी आवे। नानक नजर करे सो बूझे।

उनका उतर जाएगा झूठ को मान, जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हूं करी वखियान। सूही महला चौथा।

प्रगटया सूर जोत उजियारा, सेज विशाई सरदया पारा, नव रंग लाल सेज राम ने आया, जन नानक पिर तन मिल सुख पाया। सूही महला पंजवा, उम क्यों हियो मिलन प्रभताई, खोजत चरियो देखो प्रे जाई। सुनत संदे सरो प्रे ग्रह सेज विशाई, भ्रम भ्रम आयो तौ नजर ना पाई। किन बिद हियरो धीरे निमानो, मिल साजनो तुझ कुर्बानो रहाओ। एका सेज विशी तन कंता, तन सूती पिर सदजा गंता, पियो मदरो तन मतवंता, तन जागे जे पिर बोलंता। पही निरासी बहुत दिन लागे, देह दिसंतर मैं सगले चागे। खिन रहन ना पावाओ बिन पग पागे, होए कृपाल प्रभ मिलै सुभागे। भयो कृपाल सतसंग मिलाया, बूझी तप्त करै पिर पाया। सगल सिंगार हुण मुझै सुहाया, कहो नानक गुर परम चुकाया। जै देखा तै पिर है भाई, खोलियो कपाट ता मन ठहराई। रहाओ दूजा सूही महला पंजवा, क्या गुण तेरे।

लाल रंगीले प्रीतम मनमोहनो तेरे दर्शन को हम बारे रहाओ। प्रभ दाता मोहि दीन पेखारी तुम सदा सदा उपकारे सो किश नाही जे मैं ते होवै। मेरे ठाकुर अगम अपारे क्या सेवक मावाओ क्या कहरी जावाओ बिदगित पावो दरसारे। मित नहीं पाईए अंत न लहीए मंत्र से चरनारे पावो दान ढीठ होए मांगो मुख लागे संतरे नारे। जन नानक कहो गुर कृपा तारी प्रभ हाथ दे निस्तारे। सुही महला पंजवा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सेवा थोरी मंगन बहुता महल ना पावे कहतो पहुता। जो प्रेमाने तिन की रीसा कूड़े मूर्ख की हाठी सा रहाओ। पेख दिखावे सच ना कमावे कहतो महली निकट ना आवे। अतीत सदाए माया का माता मने प्रीत कह मुखराता। कहो नानक प्रभ बिनो सुनी जय कुचल कठोर कामी मुक्त की जय। दर्शन देखे की वड्याई तुम सुखदाते पुरख सुभाई रहाओ दूजा। सूही महला पंजवा बुरे काम को ऊठ खलोया नाम की बेला पै पै सोया। अवसर अपना बुझै ना आना माया मोह रंग लपटाना रहाओ। लोभ लहर कौ बिगस फूल बैठा साज जना का दर्शन दीठा। कबहू ना समझे अज्ञान गवारा बहुर बहुर लपट्यो जंजारा रहाओ। बिखे नाद करन सुन पीना हर जै सुनत आलस मन कीना। दृष्ट नाही रे पेखते अंदे छोड़ जाहे झूठे सब धंदे रहाओ। कहो नानक प्रभ बख्श करी जै कर कृपा मोहे साध संग दीजै। तौ किश पाईए जौ होइए रेना जिसै बुझाए तिस नाम लैना रहाओ। सुही महला पंजवा कर मैं ठाकुर नदर ना आवै गल मैं पाहण लै लटकावै। भरमे पूला सख्त फिरता नीर बिरोलै खप खप मरता रहाओ। जिस पाहण को ठाकर कहता ओह पाहण लै उसको डुबता। गुनहगार लूण हरामी पाहण नाव ना पार गिरामी। गुरमिल नानक ठाकर जाता जल थल महियल पूर्ण विधाता। सुही महला पंजवा।

असाच नाम की अमृत वर्खा गोहज कथा ए गुरते जानी नानक बोले हर हर बाणी सूही महला पंजवा जा कै दर्श पाप कोट उतारे भेटत संग एहो पव जल तारे ओए साजन ओए मीत प्यारे जो हमको हर नाम चितारे रहाओ जा का शब्द सुनत सुख सारे जा की टहल जमदूत बिदारे जा की तीरक इस मने सुधारे जा कै सिमरन मुख उजलारे प्रभ के सेवक प्रभ आप सवारे सरन नानक तिन सद बलिहारे सूही महला पंजवा रहन ना पावै सुर नर देवा ऊट सिधारे कर मुन जन सेवा जीवत पेखे जिन्नी हर हर त्याया साध संग तिनी दर्शन पाया रहाओ बाद सहा सहा वापारी मरना जो दिसै सो कल खरना कूड़े मोहे लपट लपटाना छोड़ चलिया ता फिर पछताना किरपा निधान नानक कौ करहो दात नाम तेरा जपी दिन रात सूही महला पंजवा कड़क

दास के पर हरिया कर कृपा प्रभ अपना करया तुम्हें छाए लियो जन अपना उर्ज परयो जाल जग सुपना रहाओ पर्वत दुख महा बिकराला खिन मैं दूर किए दयाला सोग रोग विपत्यत भारी दूर पही चपना मुरारी दृष्ट तार लीनो लड़ लाए हर चरण गए नानक शरण आए सूही महला पंजवां।

सच्चा धर्म पुन भला कराए, दीन कह तो सह दुनी ना जाए, सर्व निरंतर एको जागे, जित जित लाया तित तित को लागे। अगम अगोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले।

ओट सवारी। सदा सदा जपिए हर नाम, पूर्ण होवे मन के काम रहाओ। प्रभ अविनाशी रहन दिन गाओ, जीवत मरत निहचर पावे थाओ। सो साहो सेव जे टोट ना आवे, खात खर्चत सुख अंध विहावे। जग जीवन पुरख साध संग पाया, गुर प्रसाद नानक नाम ते आया। सुही महला पंजवा, गुर पूरे जप है दयाल, दुख बिन से पूर्ण पई काल। पेख पेख जीवा दर्श तुम्हारा, चरण कमल जाई बलिहारा। तुझ बिन ठाकुर कवन हमारा रहाओ। साध संगत स्यों प्रीत बन आई, पूर्व कर्म लिखत तुर पाई। जप हर हर नाम अचरज प्रताप, जाल न सके तीने ताप। निमख न बिसरे हर चरण तुम्हारे, नानक मांगे दान प्यारे। सूही महला पंजवा, से संजोग करो मेरे प्यारे। जित रसना हर नाम उचारे,

जिस कृपा करे बसे तिस नेरा, जन की भूख तेरा नाम आहार, तू दाता प्रभ देवनहार। राम रमत संतन सुख माना, नानक देवनहार सो जाना। सुही महला पंजवा, बहती जात कदे दृष्णा तारत, मिथ्या मोह बंधे नित पारच। माधवे पाज दिन नित रैणी, जन्म पदार्थ जीत हर सरणी रहाओ। करत बेकार दो कर चारत, राम रतन रेतल नहीं तारत। परन पोखण संग औद बिहानी, जय जगदीश की गत नहीं जानी। सरण समरथ अगोचर स्वामी, उदर नानक प्रभ अंतर जामी। सूही महला पंजवा, साध संग तरै पै सागर। हर हर नाम सिमर रतनागर, सिमर सिमर जीवा नारायण। दुख रोग सोग सब से गुर पूरे, मिल पाप तजायण रहाओ। जीवन पदवी हर का नाओ, मन तन निर्मल साच सुवाओ। आठ पहर पार ब्रह्म ते आई है, पूर्व लिखत होए ता पाई है। शरण पै जप दीन दयाला, नानक जाचै संतर वाला। सुही महला पंजवा, कर का काज ना जानी रूड़ा, झूठे तंदे रचियो मूड़ा।

दर्शन को लोचे सब कोई, पूरे भाग प्राप्त होई रहाओ। श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई, महामोहनी दूता लाई। प्रेम विशोहा करत गसाई, निर्दय जंत तिस दया ना पाई। अनक जन्म बीतियन परमाई, करवास ना देवे दुत्तर माई। दिन रहने अपना किया पाई, किस दोष ना दी जय कृत पवाई। सुन साजन संत जन पाई, चरण सरन नानक गत पाई। राग सुही महला पंजवां, कर चौथा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद भली सुहावी छापरी, जा मैं गुण गाए। कित ही कामना तौल हर, जित हर बिसराए रहाओ। अनद गरीबी साध संग, जित प्रभ चित आए। जल जाओ एह बड़पना, माया लपटाए। पीसन पीस ओड कामरी, सुख मन संतोखाए। ऐसो राजना कितै काज, जितने त्रिपताए। नगन फिरत रंग एक कै, ओहो सोभा पाए। पाठ पटंबर बिरथिया, जेह रच लोबाए। सब किश तुमरै हाथ प्रभ, आप करे कराए। साथ साथ सिमरत रहा, नानक दान पाए। सूही महला पंजवां, हर का संत प्राण तानु, तिसका पनिहारा। भाई मीत सुत सगल ते, जीहू ते प्यारा। रहाओ केसा का कर बीजना, संत चौर टोलावो। शीस निहारो चरण तल, तूर मुख लावो। मिष्ट बचन बेनती करो, दीन की न्याई। तजा मान सरणी परो, हर गुण निद पाई। अवलोकन पुनः पुनः करो, जन का दरसार। अमृत बचन मन में सिंचाओ, बंदाओ बार बार। चितवो मन आसा करो, जन का संग मांगो। नानक को प्रभ दया कर, दास चरणी लागो। सुही महला पंजवा, जिन मोहे ब्रह्मांड खंड, ताहू मैं पाओ। राख लेहो एहो बिखई जियो, देहो अपना नाओ रहाओ। जाते नाही को सुखी, ता कै पाछे जाओ। छोड़ जाहे जो सगल कहो, फिर लपटाओ। करहो कृपा करना पते, तेरे हर गुण गाओ। नानक की प्रभ बेनती, साध संग समाओ। राग सुही महला पंजवा, कर पंजवा पड़ताल। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना। जप मन गोबिंद एक है, अवर नहीं को लेखै। संत लाग मने छाड़, दुबदा की कुरिया रहाओ। निर्गुण हरिया सरगुण तरिया, अनक कोठरिया। पिन पिन पिन पिन करिया, विच मन कोट वरिया। निज मंदिर प्रिया, तहां आनंद करिया। नै मरिया नै जरिया, कीर्तन जुरिया। बहुविध फिरिया, पर कौ हिरिया। बिखना किरिया, अब साधु संग परिया। हर द्वारे खरिया, दर्शन करिया। नानक गुर मिरिया, बहुर ना फिरिया। सूही महला पंजवा, रास मंडल कीनो आखारा। सगलो साज रखियो पासारा रहाओ। बहुविध रूप रंग आपारा, पेखै खुशी भोग नहीं हारा। सब रस लैत बस्त निरारा, वर्ण चिहन नाही मुख नाम सारा। कहन न जाई खेल तुहारा, नानक रेण संत चरनारा। सुही महला पंजवा, तौ मैं आया सरनी आया। भरोसै आया कृपा आया, ज्यो पावै त्यो राखो स्वामी। मार्ग गुरै पठाया रहाओ। महादुत्तर माया, जैसे पवन चुलाया। सुन सुन ही डराया, करो त्रमराया। ग्रह अंध कु पाया, पावक सगराया। गही ओढ़ साधाया, नानक हर त्याया। अब मैं पूरा पाया। राग सुही महला पंजवा, कर छेवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद सतगुर पास, बेनंतियां मिले नाम आधारा। तुठा सच्चा पात साहो, ताप गया संसारा। भगता की टेक तू, संता की ओट तू। सच्चा सिरजनहारा रहाओ।
ਸੱਚ ਤੇਰੀ ਸਾਮਗਰੀ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰਾ, ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ੀਨਿਆਂ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪਾਸਾਰਾ, ਤੇਰਾ ਰੂਪਿਆ ਗਮ ਹੈ ਅਨੂਪ ਤੇਰਾ ਦਰਸਾਰਾ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਣੀ ਤੇਰਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ, ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਇਆ ਗਮਿਆ ਪਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਣਾ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰਾ, ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਸਤਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮਨਾਏ, ਜਿਸਨੋ ਹੋਏ ਦਇਆਲਾ ਸਾਈ ਭਗਤ।

प्यास चुकाई मेरे राम राय तुद चित आया उबरे तेरी टेक परवासा तुमरा जप नाम तुम्हारा उधरे रहाओ अंध कूब ते काल लिए तुम आप है कृपाला सार समाल सर्व सुख दिए आप करे प्रतपाला अपनी नदर करे परमेसर बंधन काट छाए अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाए परम गया पै मोह बिनासे मिटिया सगल विसूरा नानक दया करी सुखदाता पेटिया सतगुर पूरा सूही महला पंजवा जब कश ना सी ओ तब क्या करता कवन कर्म कर आया अपना खेल आप कर देखै ठाकुर रचन रचाया मेरे राम राय मुझते कछु न होई आपे करता आप कराए सर्व निरंतर सोई रहाओ गणती गणी न छूटे कतहूं काची देह आनी कृपा करो प्रभ करण हारे तेरी बख्श निराली जी जंत सब तेरे कीते घट घट तू ही ते आई है तेरी गतमित तू है जाने कुदरत कीम ना पाई है निर्गुण मुग्ध अजान अज्ञानी कर्म धर्म नहीं जाना दया करो नानक गुण गावे मिठा लगे तेरा पाना सूही महला पंजवा भाग ठड़े हर संत तुम्हारे जिन कर तन हर नामा प्रवान गणी से ही एह आए सफल तिना के कामा मेरे राम हर जन कह

तेरे सेवक को पौ किश नाही, जम नहीं आवै नेरे। रहाओ जो तेरा रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा। तेरी बक्सना मेटै कोई, सतगुर का दिलासा। नाम ते आए न

किश कर्म ना जाना सार ना जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी सूही महला पंजवां सगल त्या

आठ पहर प्रभ अपना त्याई है, गुर प्रसाद पौतरी है, आप त्याग होई है सब रेणा, जीवत्यां इं मरी है, सफल जन्म तिसका जग पीतर, साध संग नाव जापे।

चिट्टे जिन के कपड़े मैले चित कठोर जियो तिन मुख नाम ना उपजे दूजे व्यापे चोर जियो मूल ना बुझे अपना से पशुआ से टोर जियो नित नित खुशियां मन करे नित नित मंगे सुख जियो करता चेतना आवई फिर लगे दुख जियो सुख दुख दाता मन वसै ते तन कैसी भुख जियो बाकी वाला तलबी है सिर मारे जंदार जियो लेखा मंगे देवना पुछे कर विचार जियो सच्चे की लिव उबरै बख्शे बख्शन हार जियो अन को की जय मित्रा खाक रलै मर जाए जियो बहु रंग देख पुलाया पुल पुल आवे जाए जियो नजर प्रभु ते छुट्टी है नजरी मेल मिलाए जियो गाफल ज्ञान में होने गुरबिन ज्ञान ना पाल जियो खिंचो तान में गुची है बुरा भला दो नाल जियो बिन शब्द पैरते आ सब जो ही जमकाल जियो जिनका कारण तारे आ सब सहदे आधार जियो सो क्यों मनो विसारी है सदा सदा दातार जियो नानक नाम ना

मानस जन्म दुलंब गुरमुख पाया, मन तन होए चुलंब जे सतगुर पाया। चले जन्म सवार वखर सच लै, पथ पाए दरबार सतगुर शब्द पै रहाओ। मन तन सच सलाहे साचे मन पाया, लाल रत्ता मन मानिया गुरपूरा पाया। हौ जीवा गुण सार अंतर तू वसै, तू वसै मन माए सहजे रस रसै। मूर्ख मन समझाए आखो के तड़ा, गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा। नित नित हृदय संभाल प्रीत में अपना, जे चले गुण नाल नाही दुख संतापना। मन मुख परम भुलाना ना तिस रंग है, मरसी होए विडाणा मन तन भंग है। गुर की कार कमाए लाहा कर आणिया, गुरबाणी निर्बाण शब्द पछाणिया। एक नानक की अरदास जे तुद भाव सी, मैं दीजै नाम निवास हर गुण गावसी। सूही महला पहला, ज्यों आरन लोहा पाए पन कढ़ाई है, त्यों साक्त जोनी पाए पवै पवाई है। बिन बूझे सब दुख दुख कमावना, हाँ मैं आवै जाए परम पुलावना। रहाओ तू गुरमुख रखण हार, हर नाम ते आई है मिले तुझै रजाए शब्द कमाई है। तू कर कर वेखै आप देह सो पाई है, तू देखै थाप थाप दर भी नाई है।

मैं हर वर पावे तिसकी बलराम जियो। रव रहया जुग चारो त्रिपवन बाणी जिसकी बलराम जियो। त्रिपवन कंतर वै सोहागण अवगणवंती दूरे। जैसी आसा तैसी मनसा पूर रहा परपूरे। हर की नार सो सर्ब सुहागणो रांडना मैं ले वे से। नानक मैं वरसा चा पावे जो जुग प्रीतम तैसे। बाबा लगन गणाए हम्पी वहियां साहुरै बलराम जियो। साहा हुक्मर जाए सो न टले जो प्रभ करे बलराम जियो। किरत पया करते कर पाया मेट न सके कोई। जानी ना नरह ने केवल रव रहा त्यो लोई। माए निरासी होए विशुन्नी बाली बाले हेते। नानक साच शब्द सुख महली गुरचरणी प्रभ चेते। बाबल दितड़ी दूर ना आवे कर पेई है बलराम जियो। रैसी वेखा दूर पिरावी कर सोही है बलराम जियो। साचे पिर लोड़ी प्रीतम जोड़ी मत पूरी परदाने। संजोगी मेला थान सोहेला गुणवंती गुर ज्ञाने। सत संतोख सदा सच पल्ले सच बोले पिर पाए। नानक विछड़ ना दुख पाए गुरमत अंक समाए। राग सुही महला पहला शंत घर दूजा एको अंकार। सतगुर प्रसाद हम कर साजन आए साचे मेल मिलाए। सहज मिलाए हर मन पाए पंच मिले सुख पाया। साई वस्त प्राप्त होई जैसे ती मन लाया। आन दिन मेल पाया मन मानिया कर मंदिर सोहाए। पंच शब्द तुन अनहद वाजे हम कर साजन आए। आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे। सच मंगल गावो ता प्रभ पावो सोहे लड़ा जुग चारे। अपने कर आया थान सुहाया कार्य शब्द सवारे। ज्ञान महारस नेत्री अंजन त्रिपवन रूप दिखाया। सखी मिलो रस मंगल गावो हम कर साजन आया। मन तन अमृत पिन्ना अंतर प्रेम रतन्ना। अंतर रतन पदार्थ मेरा है परम तत्व विचारो। जंत पेख तू सफल्यो दाता सिर सिर देवन हारो। तू जान ज्ञानी अंतर जामी आपे कारण कीना। सुनो सखी मन मोहन मोहया तन मन अमृत पीना। आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा। सच खेल तुम्हारा अगम्या पारा तुद बिन कौन बुझाए। सिद्ध साधक सियाने केते तुझ बिन कवन कहाए। काल बिकाल पहे देवाने मन राख्या गुर ठाए। नानक अवगुण शब्द जलाए गुण संगम प्रभ पाए। राग

कर अपन रह खड़ी तका मैं मन चौक नेरा राम। मन चौक नेरा सुन प्रभ मेरा मैं तेरा परवासा, दर्शन देख पई नह केवल जन्म मरण दुख नासा। सगली जोत जाता तू सोई मिलिया पाए सुभाए, नानक साजन कौ बल जाई है साच मिले कर आए। कर आए अड़े साजना ता तन खरी सरसी राम, हर मोहे अड़ी साच शब्द ठाकर देख रंसी राम। गुण संग रहसी खरी सरसी जा रावी रंग रात, अवगण मार गुणी कर छाया पूरे पुरख विदात। तस्कर मार वसी पंचायण अदल करे विचारे, नानक राम नाम निस्तारा गुरमत मिले प्यारे। वर पायाड़ा बल लड़िए आसा मनसा पूरी राम, फिर रावे अड़ी शब्द रली रव रया ने दूरी राम। प्रभ दूर ना होई कटकट सोई तिसकी नार सवाई, आपे रसिया आपे रावे जो तिस दी वड़ियाई। अमरिया डोलिया मोलिया पारा गुरपूरै सच पाईऐ, नानक आपे जोग संजोगी नदर करे लिवलाईऐ। फिर उचरड़ीऐ माड़ड़ीऐ तिहलोवा सिर ताजा राम, हम बिसम पई देख गुणा अनहद शब्दया गाजा राम। शब्द विचारी करनी सारी राम नाम निशानो, नाम बिना खोटे नहीं ठाहर नाम रतन परवाणो। पत मत पूरी पूरा परवाना ना आवै ना जासी, नानक गुरमुखिया पछाणे प्रभ जैसे अवनासी। एको ओंकार सतगुर प्रसाद राग सूही संत महला पहला, कर चौथा जिन किया तिन देखिया जगत हंदड़ै लाया, दान तिरे कर चानना तन चांदी पाया। चंदो दी पाया दान हर कै दुख अंधेरा उठ गया, गुण जन लाड़े नाल सोहै परख मोहनिया लया। विवाह होवा सोभ सेती पंच शब्दी आया, जिन किया तिन देखिया जगत हंदड़ै लाया। हम बलिहारी साजना मीता अवरीता, एह तन जिन स्यों गाड़िया मन लियड़ा दीता। लिया तां दिया मान जिन स्यों से सज्जन क्यों विसरै, जिन दिस आया होहे रलियां जी से ती गैर है। सगल

तंत मंत पाखंड ना जाना राम हृदय मन मानिया अंजन नाम तिसै ते सूजै गुरसबदी सच जानिया साजन होवन अपने क्यों पर कर जाही साजन राते सच के संगे मन माही मन माहे साजन करै रलिया कर्म धर्म सवाया अड़सठ तीर्थ पुन पूजा नाम साचा पाया आप साजे थाप वेखै तिसै पाना पाया साजन रंग रंगी लड़े रंग लाल बनाया अंधा आगू जेथिया क्यों पादर जाने आप मुसै मत होछिए क्यों राह पछाणे क्यों राहे जावे महल पावे अंध की मत अंधली विण नाम हर के कछ ना सूजै अंध बूढ़ो तंदली दिन रात चानन चाओ उपजै शब्द गुर का मन वसै कर जोड़ गुर पै कर बिनंती राहो पादर गुर दसै मन परदेसी जे थिया सब देश पर आया किस पै खोलो गंठड़ी दुखी पर आया दुखी पर आया जगत सबाया कौन जाने बिद मेरिया आवने जावने खरे डरावने तोड़ना आवे फेरिया नाम में हुने हुने चूने ना गुर शब्द सुनाया मन परदेसी जे थिया सब देश पर आया गुर महली करे अपने सो परपुर लीना सेवक सेवा ता करे स शब्द पतीना शब्दे पतीजै अंक पीजै सो महल महला अंतरे आप करता करे सोई प्रभ आप अंत निरंतरे गुर शब्द मेला ता सुहेला बाजंत अनहद बीणा गुर महली करे अपने सो परपुर लीना कीता कैसा लाही है कर वेखै सोई ता की कीमत ना पवै जे लोचै कोई कीमत सो पावै आप जनावै आपा भुल ना भुलै जय जयकार करै तुद पावै गुर कै शब्द अमुलै हीणो नीच करो बेनंती साच ना छोड़ो भाई नानक जिन कर देखिया देवै मत साई। राग सूही संत महला तीजा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख सोहिलड़ा हर त्यावो गुरमुख हर फल पावो गुरमुख फल पावो हर नाम ते आवो जन्म जन्म के दुख निवारे बलिहारी गुरे अपने विटो जिन कार्ज सब सवारे हर प्रभ कृपा करे हर जापो सुख फल हर जन पावो नानक कहे सुनो जन पाई सुख सोहिलड़ा हर त्यावो सुन हर गुण पीने सह सुभाए गुरमत सहजे नाम ते आए जिन को तुर लिखिया तिन गुर मिलिया तिन जन मरण पाओ भागा अंदरों दुरमत दूजी खोई सो जन हर लिव लागा जिन कौ कृपा कीनी मेरे स्वामी तेने अंदन हर गुण गाए सुन मन पीने सह सुभाए जुग मैं राम नाम निस्तारा गुरते उपजै शब्द विचारा गुर शब्द विचारा राम नाम प्यारा जिस कृपा करे सो पाए सहजे गुण गावे दिन राती किलविख सब गवाए सब को तेरा तू सबना का हौ तेरा तू हमारा जुग मैं राम नाम निस्तारा साजने आए उठे कर माही हर गुण गावे तृप्त अगाही हर गुण गाए सदा तृप्तासी फिर पूखना लागे आए दह दिस पूज होवे हर जन की जो हर हर नाम ते आए नानक हरे आपे जोड़ विछोड़े हर बिन को दूजा नाही साजने आए उठे कर माही एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सुही महला तीजा कर तीजा भक्त जना की हर जियो राख जुग जुग रखदा आया राम सो भगत जो गुरमुख होवै हौ मैं शब्द जलाया राम हौ मैं शब्द जलाया मेरे हर पाया जिस दी साची बाणी सची भगत करै दिन राती गुरमुख आख वखाणी भगता की चाल सची अत निर्मल नाम सच्चा मन पाया नानक भगत सोहै दर सच जिन्नी सचो सच कमाया
हर भगता की जात पात है, भगत हर कै नाम समाणे राम। हर भगत करै विचों आप गवावै, जिन गुण अवगुण पछाणे राम। गुण अवगुण पछाणे हर नाम वखाणै, पै भगत मीठी लागी। अंदन भगत करै दिन राती, कर ही मैं बैरागी। भगती राते सदा मन निर्मल, हर जियो वेखै सदा नाले। नानक से भगत हर कै दरसाचे, अंदन नाम समाले। मन मुख भगत करै बिन सतगुर, बिन सतगुर भगत न होई राम। हौ मैं माया रोग व्यापे, मर जन्मै दुख होई राम। मर जन्मै दुख होई दूजै पाए, पर जवे गोई बिन गुर तत् न जानिया। भगत विहूणा सब जग भरमिया, अंत गया पछतानिया। कोट मदे कने पछाणिया, हर नामा सच सोई। नानक नाम मिले वड्याई, दूजे पाए पत खोई। भगतां कै कर कारज साचा, हर गुण सदा वखाणे राम। भगत खजाना आपे दिया, काल कंटक मार समाणे राम। काल कंटक मार समाणे, हर मन पाणे। नाम निधान सच पाया, सदा अखुट कदे नान खुट। हर दिया सह सुबाया, हर जन ऊचे सद ही ऊचे। गुर कै शब्द सुहाया, नानक आपे बख्श मिलाए। जो जुग सोभा पाया, सूही महला तीजा। शब्द सच्चा सच सोहेला, जिथे सच्चा का होए विचारो राम। हौ मैं सब किलवे काटे, साच रखिया और तारे राम। सच रखिया और तारे, दुत्तर तारे, फिर पवजल तरण ना होई। सच्चा सतगुर सच्ची बाणी, जिन सच विखालिया सोई। साचे गुण गावै सच समावै, सच वेखै सब सोई। नानक साचा साहेब साची नाई, सच निस्तारा होई। साचा सतगुर साच बुझाया, पत राखै सच सोई राम। सच्चा भोजन पाओ सच्चा है, सच्चा नाम सुखोई राम। साचा नाम सुख होई, मरे ना कोई गर्भ ना जूनी वासा। ज्योति ज्योत मिलाई सच समाई, सच नाए परगासा। जिनी सच जाता से सच्चे होए, अंधन साहित आयन। नानक सच नाम जिन हृदय वसिया, ना विछड़ दुख पायन। सच्ची बाणी सच्चे गुण गावै, तितकर सोला होई राम। निर्मल गुण साचे तन मन साचा, विच साचा पुरख प्रभ सोई राम। सब सच वरतै सचो बोलै, जो सच करै सो होई। जह देखा तै सच पसरिया, अवर न दूजा कोई। सचे उपजै सच समावै, मर जन मैं दूजा होई। नानक सब किछ आपे करता, आप करावै सोई। सच्चे भगत सोहै दरबारे, सचो सच वखाणे राम। कट अंतरे साची बाणी, सचो आप पछाणे राम। आप पछाणै ता सच जाणै, साचे सोजी होई। सच्चा शब्द सच्ची है सोभा, साचे ही सुख होई। साच रते भगत एक रंगी, दूजा रंग ना कोई। नानक जिसको मस्तक लिखिया, ते सच प्राप्त होई। सूही महला तीजा, जुग चारे तन जे पवै, बिन सतगुर सोहाग न होई राम। निचल राज सदा हर के रा, तिस बिन अवर न कोई राम। तिस बिन अवर ना कोई, सदा सच सोई। गुरमुखे को जानिया, तन पिर मेला वा होवा, गुरमति मन मानिया। सतगुर मिलिया ता हर पाया, बिन हर नावै मुक्त ना होई। नानक का मन कंतै रावै, मन मानिया सुख होई। सतगुर सेव तन बालड़िए, हर वर पावै सोई राम। सदा होवै सोहागणी, फिर मेला वेस ना होई राम। फिर मैला वेसना होई, गुरमुख बूझै कोई। हौ मैं मार पछाणिया, करनी कार कमावै, शब्द समावै, अंतरे को जानिया। गुरमुख प्रभ रावे दिन राती, अपना साची सोभा होई।
ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਪ੍ਰਧਾਵੇ ਆਪਣਾ ਰਵ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਰੇ ਤਨ ਬਾਲੜੀਏ ਹਰ ਵਰ ਦੇ ਮਿਲਾਏ ਰਾਮ। ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ ਰਤੀ ਹੈ ਕਾਮਣ ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਪਾਏ ਰਾਮ। ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਚ ਸਮਾਏ ਸਚ ਵਰਤੈ ਸਭ ਥਾਈ। ਸੱਚਾ ਸਿੰਗਾਰ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਕਾਮਣ ਸਚ ਸਮਾਈ। ਹਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ ਕਾਮਣ ਲਇਆ ਕੰਠ ਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਮੈਲੀ ਮੈਲ ਪਛਾਣੈ ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਪਾਏ। ਸਾ ਧਨ ਬਾਲੀ ਤੁਰ ਮੇਲੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭਿਆ ਮਿਲਾਈ ਰਾਮ। ਗੁਰਮਤੀ ਕਟ ਚਾਨਣ ਹੋਵਾ ਪ੍ਰਭ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਭ ਥਾਈ ਰਾਮ। ਪ੍ਰਭ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਭ ਥਾਈ ਮਨ ਵਸਾਈ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ। ਸੇ ਸੁਖਾਲੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਣੀ ਸਚ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਕਾਮਣ ਨਿਰਮਲ ਹਉਮੈ ਮਲ ਖੋਈ ਗੁਰਮਤ ਸਚ ਸਮਾਈ। ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਈ ਕਰਤੈ ਨਾਮ ਨਵੈ ਨਿਧ ਪਾਈ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਹਰ ਹਰੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਹਰ ਗੁਰਮੁਖੇ ਪਾਏ ਰਾਮ। ਅਨ ਦਿਨੋ ਸ਼ਬਦ ਰਵੋ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਏ ਰਾਮ। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਏ ਹਰ ਜੀਉ ਕਰ ਆਏ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਨਾਰੀ। ਅੰਦਨ ਭਗਤ ਕਰੈ ਗੁਰ ਆਗੈ ਸਾਤਨ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸਿਆ ਘਟ ਚਾਨਣ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸਿਆ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸੇਜਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਏ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕਰ ਸਦ ਹੀ ਸੋਹਿਲਾ ਹਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਆਏ। ਭਗਤਾ ਮਨਿਆ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਹਰ ਨਾਮ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ ਰਾਮ। ਗੁਰਮੁਖੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵਾ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਰਾਮ। ਨਿਰਮਲ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨਾ ਮਨ ਵਸਾਏ ਹਰ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸਹੀ ਜਨ ਨਿਸਤਰੇ ਘਟ ਘਟ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਣੀ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ ਸ਼ਬਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਸਫਲ ਜਨਮ ਤਿਨ ਕੇਰਾ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਪਾਏ। ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਸਿਉ ਮੇਲ ਭਇਆ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਰਾਮ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਦ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਭਏ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਏ ਰਾਮ। ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਏ ਗੁਰਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਮਨੁਆ ਰਤਾ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸੁਖਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਅੰਦਿਨ ਨਾਮ ਸਮਾਲੇ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੇ ਰਾਤਾ ਸਹਿਜੇ ਮਾਤਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕਰ ਸਦ ਹੀ ਸੋਹਿਲਾ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਮਾਏ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜਗ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ ਹਰ ਕਾ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਰਾਮ। ਗੁਰਮੁਖੇ ਇੱਕ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ ਤਿਨਕੇ ਦੁੱਖ ਗਵਾਇਆ ਰਾਮ। ਤਿਨਕੇ ਦੁੱਖ ਗਵਾਇਆ ਜਾਂ ਹਰ ਮਨ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਗਾਵੈ ਰੰਗਰਾਤੇ। ਹਰ ਕੇ ਭਗਤ ਸਦਾ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਦ ਹੀ ਜਾਤੇ। ਸਾਚੀ ਭਗਤ ਕਰੈ ਦਰ ਜਾਪੈ ਘਰ ਦਰ ਸੱਚਾ ਸੋਈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸੱਚੀ ਸੱਚ ਬਾਣੀ ਸਬਦੇ ਹੀ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਜੇ ਲੋੜੈ ਵਰ ਬਾਲੜੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਏ ਰਾਮ। ਸਦਾ ਹੋਵੈ ਸੁਹਾਗਣੀ ਹਰ ਜੀਉ ਮਰੈ ਨਾ ਜਾਏ ਰਾਮ। ਹਰ ਜੀਉ ਮਰੈ ਨਾ ਜਾਏ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਸਾਤਨ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ। ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਸਦਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਿੰਗਾਰੀ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਸਦ ਹੀ ਸਾਚਾ ਜਿਨ ਆਪੇ ਆਪਿਓ ਪਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਵੇ ਆਪਣਾ ਜਿਨ ਗੁਰਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਪਿਰ ਪਾਇਆੜਾ ਬਾਲੜੀਏ ਆਂਦਨ ਸਹਿਜੇ ਮਾਤੀ ਰਾਮ। ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਅੰਧ ਭਇਆ ਤੇ ਤਨ ਮੈਲ ਨਾ ਰਾਤੀ ਰਾਮ। ਤੇ ਤਨ ਮੈਲ ਨਾ ਰਾਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਆਂਦਨ ਰਾਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਗੁਰਮਤ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਮਿਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਤੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਭ ਰਾਵੇ ਰੰਗ ਰਾਤੀ। ਪਿਰ ਰਾਵੇ ਰੰਗ ਰਾਤੜੀਏ ਪਿਰ ਕਾ ਮਹਿਲ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਰਾਮ। ਸੋ ਸਹਵਤ ਨਿਰਮਲ ਦਾਤਾ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਰਾਮ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਂ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਕਾ ਮਨ ਮਨ ਪਾਣੀ। ਆਨ ਦਿਨ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਿਤ ਸਾਚੇ ਕਥੇ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ।
जुग चारे साचा एको वरतै बिन गुर किनै ना पाया। नानक रंग रवै रंग राती जिन हर सेती चित लाया। कामण मन सोहिलड़ा साजन मिले प्यारे राम। गुरमती मंडर मल होवा हर राख्या और तारे राम। हर राख्या और तारे अपना कार्य सवारे गुरमती हर जाता। प्रीतम मोहे लया मन मेरा पाया कर्म विधाता। सतगुर सेव सदा सुख पाया हर वस्या मन मुरारे। नानक मेल लई गुर अपने गुर कै शब्द सवारे। सुही महला तीजा सोहिलड़ा हर राम नाम। गुर शब्दी विचारे राम हर मन तनो गुरमुख बीजै। राम नाम प्यारे राम। राम नाम प्यारे सब कुल उधारे। राम नाम मुख बाणी आवन जान रहे सुख पाया। कर अनहद सुरत समाणी हर हर एको पाया हर प्रभ। नानक कृपा तारे सोहिलड़ा हर राम नाम। गुर शब्दी विचारे हम नीवी प्रभ अतूचा। क्यों कर मिलिया जाए राम। गुर मेली बहु कृपा तारी हर कै शब्द सुभाए राम। मेरे शब्द सुभाए आप गवाए रंग सो रलिया माने। से सुखाली जा प्रभ पाया हर हर नाम समाणे। नानक सोहागण सा वड भागी जे चले सतगुर पाए। हम नीवी प्रभ अत ऊचा क्यों कर मिलिया जाए राम। घट घटे सबना विच एको एको राम पतारो राम। एक ना प्रभ दूर वसै एक ना मन आधारो राम। एक ना मन आधारो सृजन हारो वड भागी गुर पाया। घट घट हर प्रभ एको स्वामी गुरमुख लख लखाया। सहजे अंध हुआ मन मानिया नानक ब्रह्म विचारो। घट घटे सबना विच एको एको राम पतारो राम। गुर सेवन सतगुर दाता हर हर नाम समाया राम। हर धूड़ देवो मैं पूरे गुर की हम पापी मुत कराया राम। पापी मुत कराए आप गवाए नहीं कर पाया वासा। बबेक बुद्धि सुख रैन विहानी गुरमत नाम प्रगासा। हर हर आनंद भया दिन राती नानक हर मीठ लगाए। गुर सेवन सतगुर दाता हर हर नाम समाए। राग सूही महला चौथा शंत कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सतगुर पुरख में लाए।

निश्चल हब जाना मिथ्या माना, संत प्रभु होए दासा, जीवत मरिया भौ जल तरिया, जे थीवै कर्म लिखिया सा, गुरसे बीजे अमृत पीजे, जिसला वैसे त्यानो, नानक शरण पया हरिद्वार, हौ बलबल सत कुरबानो, सुन बावरे मत जाने प्रभ मैं पाया, सुन बावरे थियो रेण जिनी प्रभ त्याया, जिन प्रभ त्याया तिन सुख पाया, वड पागी दर्शन पाई है, थियो न माना सद गुरबाणा, सगलाया मिटाई है, ओह तन भाग सुदा जिन प्रभ लद्दा, हम तिस पाया विचाया, नानक दीन सरन सुख सागर, राख लाज अपनाया, सूही महला पंजवा, हर चरण कमल की टेक, सतगुर दित्ती तुसकै बलराम जियो, हर अमृत भरे भंडार, सब किश है कर तिसकै बलराम जियो, बाबल मेरा वड समर्था, करण कारण प्रभारा, जिस मृत दुख कोई ना लागे, पौजल पार उतारा, आद जुगाद भगतन का राखा, उस्त कर कर जीवा, नानक नाम महारस मीठा, अंदन मंतन पीवा, हरिया

ठाकुर पाणी सा गुणवंती तिन्ही सब रंग माणा, नानक की तर तू है ठाकुर तू नानक का माणा। हम वारी वन्या कोली वन्या तू पर्वत मेरा ओला राम, हम बल जाई लख लख लख बरिया जिन परम परदा खोला राम। मिटे अंधारे तजे बिकारे ठाकर से मन माना, प्रभ जी पानी पई निकाणी सफल जन्म परवाना। पई अमोली पारा तोली मुक्त जुगत दर खोला, कहो नानक कहो निरपा होई सोप्रभ मेरा ओला। सोही महला पंजवा साजन पुरख सतगुर मेरा पूरा, तिस बने अवर न जाना राम। मात पिता भाई सुत बंदप जी प्राण मन भाणा राम, जियो पिंड सब तिसका दिया सर्व गुणा परपूरे, अंतर जामी सोप्रभ मेरा सर्वरया परपूरे। ता की सरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा, सदा सदा प्रभ को बलिहार है नानक सतगुरबाणा। ऐसा गुरु वड पा

हर तूड़ी नाई है प्रभु ते आई है, बाहुड़ जोड़ ना आई है, गुरचरणी लागे परंपा भागे, मन चंदिया फल पाई है, हर गुण नित गाए नाम ते आए, फिर सोग नाही संताप, नानक सो प्रभु जी का दाता पूरा जिस पर तप, हर हरे हर गुण निधे हर संतन कै वसियाए राम, संत चरण गुर सेवा लागे तिन्नी परम पद पाए राम, परम पद पाया या मिटाया हर पूर्ण कृपा तारी, सफल जन्म होवा पौ भागा हर भेटिया एक मुरारी, जिसका साथ तिन्ही मिल लिया ज्योति ज्योत समाया, नानक नाम निरंजन जपिया मेरा सतगुर सुख पाया, गाओ मंगलो नित हर जनो पुनी इच सबाई राम, रंग रते अपने स्वामी सेती मर नया वै जाई राम, अबनासी पाया नाम ते आया सगल मनोरथ पाए, सांत सहज आनंद कनेरे गुरचरणी मन लाए, पूर रहया कट कट अबनासी थान थनंतर साई, कहो नानक कार्य सगले पूरे गुरचरणी मन लाई, सूही महला पंजवां कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी, नेत्र देखे दर्श तेरा राम, लाख जेहवा देहो मेरे प्यारे मुख हरियारा दे मेरा राम, हरियारा दे जम पंथ साधे दुख ना व्यापै कोई, जल थन मयल पूर्ण स्वामी जद देखा तत सोई, परम मोह बेकार नाठे प्रभ नेर हूं ते नेरा, नानक कहो प्रभ कृपा कीजै नेत्र देखै दर्श तेरा, कोट करन दीजै प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिय अबनासी राम, सुन सुन एहो मन निर्मल होवै कटिया काल की फासी राम, कटिया जम फासी सिमर अबनासी सगल मंगल सुगयाना, हर हर जप जपिया दिन राती लागे सहित आना, काल मल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी, कहो नानक प्रभु कृपा कीजै हर गुण सुनिए अविनासी, करोड़ हस्त तेरी टहल कमावै चरण चले प्रभ मार्ग राम, पव सागर नाव हर सेवा जो चढ़ै तिस तार ग्राम, पव जल तरिया हर हर सिमरिया सगल मनोरथ पूरे, महाबिकार गए सुख उपजे बाजे अनहद तूरे, मन बाहित फल पाए सगले कुदरत की मया पारग, कहो नानक प्रभ कृपा कीजै मन सदा चलै तेरे मार्ग, एहो वर एहा वडियाई एहो तन होए वडभागा राम, एहो रंग एहो रस भोगा हर चरणी मन लागा राम, मन लागा चरणे प्रभ की सरणे करण कारण गोपाला, सब किश कीता तेरा सब किश तेरा तू प्रभ मेरा, मेरे ठाकर दीन दयाला, मोहे निर्गुण प्रीतम सुख सागर संत संग मन जागा, कहो नानक प्रभ कृपा कीनी चरण कमल मन लागा, सूही महला पंजवा हर जपे हर मंदिर साजिया, संत भगत गुण गावै राम, सिमर सिमर

भला संयोग मूर्त पल साचा अब चल निवर खाई जन नानक प्रभय दयाला सर्व कला बने आई। आनंदा वजह नित वाजे पार ब्रह्म मन उठा राम गुरमुखे सच करनी सारी बिरसे परम पै झूठा राम। अनहद बाणी गुरमुख वखाणी जस सुन सुन मंतन हरिया सर्व सुखा तिस ही बन आए जो प्रभ अपना करया। घर मैं नवनिध परे भंडारा राम नाम रंग लागा नानक जन प्रभ कदे न विसरै पूर्ण जाके पागा।

पूर्ण पुरख अच्युत अविनाशी जस वेद पुराणी गाया अपना बिरद रखिया परमेश्वर नानक नाम ते आया। नवनिध सिद्ध रिध दीने करते तोट न आवै काई राम खात खर्चत बिलशत सुख पाया करते की दास सवाई राम दास सवाई ने खुट न जाई अंतर जामी पाया। कोट बिघन सगले उठ नाठे दुख ना नेड़े आया सात सहज आनंद कनेरे बिनसी भूख सवाई नानक गुण गावै स्वामी के अचरज जिस वड्याई राम जिसका कार्य तिन्ही किया मानस क्या वेचारा राम भगत सोहन हर के गुण गावै सदा करै जयकारा राम गुण गाए गोविंद अंध उपजे साध संगत संग बनी जिन उद्यम किया ताल केरा तिसकी उपमा क्या गनी। आठ साठ तीर्थ पुन किरिया महा निर्मल चारा पतत पावन बिरद स्वामी नानक शब्द आधारा गुण निधान मेरा प्रभ करता उसत कौन करी जय राम संता की बेनती स्वामी नाम महारस दी जय राम नाम दी जय दान की जय बिसर नाही एक खिनो गुण गोपाल उचर रसना सदा गाइए अंदेनो जिस प्रीत लागी नाम सेती मंतन अमृत पीजै बिनवंत नानक इच्छ पुनी पेख दर्शन जीजै राग सुही महला पंजवा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन सुवा

कौड़ा बोल न जाने पूर्ण भगवान है अवगुण को न चितारे पतत पावनो हर बिरद सदाए एक तिल नहीं पन्ने कहले कटकट वासी सर्व निवासी नेरा ही ते नेरा नानक दास सदा शरणागत हर अमृत सज्जन मेरा हां बिसम भई जी हर दर्शन देखिया पारा मेरा सुंदर स्वामी जी हां चरण कमल पग शारा प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा ते जेवड़े अवर ना कोई आद अंत मध प्रभ रव्या जल थल मई अलसोई चरण कमल जप सागर तरिया पवजल उतरे पारा नानक शरण पूर्ण परमेसर तेरा अंत ना पारा वारा हाउ निमख ना छोड़ा जी हर प्रीतम प्राण आधारो गुर सतगुर कहया जी साचा या गंभीचारो मिल साधु दीना ता नाम लीना जन्म मरण दुख नाठे सहज सुख आनंद कनेरे हमे बिंठी गाठे सब कै मद सबहू ते बाहर राग दुख ते न्यारो नानक दास गोविंद सरण आई हर प्रीतम मने सदारो मैं खोजत खोजत जी हर नेह चल सो कर पाया सब अत्रुव डिठे जियो ता चरण कमल चित लाया प्रभ अबनासी हौ तिसकी दासी मरै न आवै जाए धर्म अर्थ काम सा पूर्ण मन चिंदी इच्छ पुजाए स्रोत सिमरत गुण गावै करते सिद्ध साधक मुन जन ध्याया नानक शरण कृपा निध स्वामी वडभागी हर हर गाया एक ओवंकार सतगुर प्रसाद वार सूही की सलोका नाल महला तीजा सलोक महला तीजा सूहै वेश दुहागणी पर पिर रावण जाए पिर छोड़िया कर अपने मोही दूजै पाए मिठा करके खाया बहु साधो वध्या रोग शुद्ध पदार हर छोड़िया फिर लगा जाए विजोग गुरमुख होवै सो पलटिया हर राती साज सिंगार सहज सच फिर रावया हर नामा उतार आग्याकारी सदा सुहागण आ मेली करतार नानक फिर पाया हर साचा सदा सुहागण नार महला तीजा सुहवीए निमाणी है सो सहो

कौड़ी आपे तख्त रचायोन आकाश पताला हुक्मे तरती साजियानो सच्ची धर्मशाला आप उपायख पाएंदा सच्चे दीन दयाला सब नारिक सुबाहेंदा तेरा हुक्म निराला आपे आवरदा पे प्रतपाला श्लोक महला तीजा सुहबता सोहागणी जा मन लह सच नाओ सतगुर अपना मनाए लै रूप चढ़ी ता अगला दूजा नाही थाओ ऐसा सिंगार बनाए तू मैला कदे ना हो वही एनस लागे पाओ नानक सोहागण का क्या चहन है अंदर सच मुख उजला खसमै माहे समाए महला तीजा लोका वेह सुहवी सुहा वेस करी वेसी सह ना पाई है कर कर वेस रही नानक तिन्नी सह पाया जिन्नी गुर की सिख सुनी जो तिस पावै सो थी है इन बिद कंत मिली पौड़ी हुक्मी सिट साजियन बहु पित संसारा तेरा हुक्म ना जापी केतड़ा सचे लाख्या पारा

जिस तू मिलै सो तुद मिलै, सोई सचियारा। श्लोक महला तीजा। सूह वीए सूहा सब संसार है, जिन दुरमत दूजा पाओ, खिन मैं झूठ सब बिनस जाए, जो टिके ना बिरख की छाओ। गुरमुख लालो लाल है, जो रंग मजीठ सचड़ाओ, उल्टी सख्त सवै करे आई, मन वस्या हर अमृत नाओ। नानक बलिहारी गुरे अपने।

मुंद एयाणी दुमणी सूहै वे सुलभाए शब्द सच्चा रंग लाल कर पह पाए सिंगार बनाए नानक सदा सुहागनी जे चलन सतगुर पाए पौड़ी आपे आपो पाया ने आप कीमत पाई तिसदा यंत्रा जा पई गुर शब्द बुझाई माया मोह गुबार है दूजे परमाई मन मुख ठौर ना पाई नी फिर आवै जाई जो तिस पावै सो थीऐ सब चलै रजाई। सलोक महला तीजा सुहै वेस कामन को लखनी जो प्रभ छोड़ पर पुरख धरे प्यार ओस सील ना संजम सदा झूठ बोलै मन मुख कर्म खुवार जिस पूर्व होवै लिखिया ते सतगुर मिलै पतार सुहा वेस सब उतार धरे गल पहरै खिमा सिंगार पेयै सहरै बहु सोभा पाए तिस पूज करे सब संसार ओहर लाई किसै दी ना रलै जिस रावे सृजनहार नानक गुरमुख सदा सुहागणी जिस अविनाशी पुरख

कहो कबीर मैं सो गुर पाया, जा का नाओ बबे को। राग सूही बाणी श्री रविदास जीओ की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सहकी सार सुहागन जान है, ताजा मान सुख रलिया मान है, तन मन दे न अंतर रख है, अवरा देखना सुने अपक है, सो कत जाने पीर पराई, जाके अंतर दर्द ना पाई, रहाओ दुखी दुहागन दोए पख हीनी, जे ना निरंतर भगत ना कीनी, पुरुष लात का पंथ दुहेला, संगना साथी गवने अकेला, दुखिया दर्द वंद दर आया, बहुत प्यास जवाब ना पाया, कह रविदास शरण प्रभ तेरी, जो जानो त्यों कर गत मेरी, सूही जो दिन आवै सो दिन जाही, करना

क्या तू सोया जाग आना, तैं जीवन जग सच कर जाना रहाओ। जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावै, सब कट पीतर हाट चलावै। कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय नाम समार सवेरा। जन्म सिरानो पंथ ना सवारा, सांझ परी दह दिस अंधियारा। कह रविदास निदान दीवाने, चेतस नाही दुनिया फन खाने। सूही ऊचे मंदर साल रसोई, एक करी फुन रहन ना होई। एहो तन ऐसा जैसे कास की टाटी, जल गयो कास रल गयो माटी। रहाओ पाई बंद कुटंब सहेरा, ओए पी लागे काड़ सवेरा। घर की नार उरै तन लागी, ओ तो पूत पूत कर भागी। कह रविदास सवै जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग सूही बाणी शेख फरीद जी की। तप तप लोहे लोहे हाथ मरो रहो, बावल होई सो सहलो रहो। तै सह मन में किया रोस, मुझ अवगन सह नाही दोस। तै साहेब की मैं सार ना जानी, जोबन खोए पाछा पछतानी। रहाओ काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हम बिरह जाली। पिरै बिहून का तै सुख पाए, जा हुए कृपाल ता प्रभु मिलाए। विदन खूही मुंद अकेली, ना को साथी ना को बेली। कर कृपा प्रभ साध संग मेली, जा फिर देखा ता मेरा अल्लाह बेली। वाट हमारी खरी उडीनी, खन्यो तिखी बहुत पैणी। उस ऊपर है मार्ग मेरा, शेख फरीदा पंथ।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद राग बिलावल महला।

रजाई, जैसे सच में रहो रजाई रहाओ, जो किश होवा सब किश तुझते, तेरी सब असनाई तेरा यंत्रना जाना मेरे साहेब। मैं अंधले क्या चतराई, क्या हूं कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथ ना जाई, जो तुद पावे सोई आखा, तिल तेरी वड्याई, एते कुकरहु बेगाना पौका स्तनताई, भगतहीण नाक जे होएगा ता खसमै नाओ ना जाई। बिलावल महला पहला, मन मंदर तन वेसकलंदर, कठी तीर्थ नावा, एक शब्द मेरा प्राण बस्त है, बाहुड़ जन्म ना आवा।

अगमा गोचर लाख्या पारा, चिंता करो हमारी। जल थल मैयल भरपुर लीना, कड़कड़ जोत तुम्हारी। सिख मत सब तुम्हारी, मंदिर छावा तेरे। तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहेबा, गुण गावन तेरे। जी जंत सब सरन तुम्हारी, सर्व चिंत तुद पासे। जो तुद पावे सोई चंगा, एक नानक की अरदासे। बिलावल महला पहला, आपे शब्द आपे निशान, आपे सुरता आपे जान। आपे कर कर वेखे तान, तू दाता नाम प्रमाण। ऐसा नाम

मुक्त बंद सब तुते होए ऐसा आख वखाणे गुरमुख होवै सो मुक्त कही है। मनमुख बंद विचारे सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रह हर नाले तिनकी गहन गत कही ना जाई सच्चा आप सुवारे। परम पुलाणे से मनमुख कही है नारोवार ना पारे जिसनो नजर करे सोई जन पाए गुर का शब्द संभाले। हर जन माया माहि निस्तारे नानक भाग होवे जिस मस्तक काले मार बिदारे। बिलावल महला तीजा अतुल क्यों तो लिया जाए दूजा होए ता सोजी पाए तिसते दूजा नाही कोए तिसदी कीमत किकू होए। गुर प्रसाद वसै मन आए ता को जाने दुबदा जाए रहाओ आप सराफ कसवटी लाए आपे परखे आप चलाए आपे तोले पूरा होए आपे जाने को सोए। माया का रूप सब तिस्ते होए जिसनो मेले सो निर्मल होए जिसनो लाए लगे तसे आए सब सच दिखाले ता सच समाए। आपे लिव तात है आपे आप आप बुझाए आपे जापे आपे सतगुरु शब्द है आपे नानक आख सुनाए आपे। बिलावल महला तीजा साहिब ते सेव को सेव साहिब ते क्या को कह बहाना ऐसा एक तेरा खेल बनया है समय एक समाना। सतगुर परचय हर नाम समाना जिस कर्म होवे सो सतगुर पाए अंधन लागे सही ध्याना रहाओ। क्या कोई तेरी सेवा करे क्या को करे अवमाना जब अपनी जोत खिंचे तू स्वामी तब कोई करो दिखा वखियाना। आपे गुर चेला है आपे आपे गुणी निधाना जो आप चलाए तिवे कोई चाले जो हर पावे भगवाना। कहत नानक तू साचा साहेब कौन जाने तेरे कामा एक ना करमे दे वड़ियाई एक परम पवे अभमाना। बिलावल महला तीजा पूरा थाट बनाया पूरा वेखो एक समाना इस परपंच में साचे नाम की वड़ियाई मत को तरो गुमाना। सतगुर की जिसनो मत आवे सो सतगुर माए समाना एह बाणी जो जियो जाने तिसे अंतर रवे हर नामा रहाओ। चहो जुगा का हुण नबेड़ा नर मनुखा नो एक निधाना जत संजम तीर्थ ओना जुगा का धर्म है कलमे कीर्त हर नामा। जुग जुग आपो अपना धर्म है सोध देखो वेद पुराना गुरमुख जिनी ध्याया हर हर जगते पूरे परवाना। कहत नानक सच्चे स्यों प्रीत लाए चूकै मन अभमाना कहत सुनत सबे सुख पावै मानत पाहे निधाना। बिलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए तित घर बिलावल गुर शब्द सुहाए मंगल नारी गावै आए मिल प्रीतम सदा सुख पाए। हाँ तिन बलिहार है जिन हर मन वसाए हर जन को मिलिया सुख पाई है हर गुण गावे सह सुभाए रहाओ। सदा रंग राते तेरे चाए हर जो आव वसै मन आए आपे शोभा सद ही पाए गुरमुख मेले मेल मिलाए। गुरमुख राते शब्द रंगाए निज कर वासा हर गुण गाए रंग चलू लै हर रस पाए एहो रंग कदे न उतरे साज समाए। अंतर शब्द मिटिया ज्ञान अंधेरा सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा जो सच राते तन बौन ना फेरा नानक नाम दरड़ाए पूरा गुर मेरा। बिलावल महला तीजा पूरे गुरते वड्याई पाई अचिंत नाम वस्या मन आई। हाँ मैं माया शब्द जलाई दर साचै गुरते सोभा पाई जगदीश सेवो मैं अवर ना काजा अन दिन अंध होवे मन मेरा गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा रहाओ। मन की प्रतीत मन ते पाई पूरे गुरते शब्द बुझाई जीवन मरण को संसार वेखै
बहु न मरै न जंपे खै कर ही मैं सब कोट निदान। सतगुर दिखाए गया अभमान सद ही लागा सही ध्यान अंधन गावै एको नाम। इस युग में वड्याई पाई पूरे गुरते नाम ते आई जै देखा तरिया समाई। सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई पूरे भाग गुरपुरा पाया अंतर नाम निदान दिखाया गुर का शब्द वत मीठा लाया। नानक तृष्ण बुझी मन तन सुख पाया राग बिलावल महला चौथा कर तीजा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद। उद्दम मत प्रभ अंतर जामी ज्यो प्रेरे त्यों करना ज्यो नटुआ तंत वजाए तंती त्यों वाजे जंत जना। जप मन राम नाम रसना मस्तक लिखत लिखे गुर पाया हर हृदय हर बसना रहाओ। माया ग्रस्त प्रमत है प्राणी रख ले वो जन अपना ज्यो प्रहलाद हर नाक्ष ग्रस्यो हर रख्यो हर सरना। कवन कवन की गत मित कही है हर किए पतत पवन्ना ओह ढोवे ढोर हाथ चम चमरे हर उदरियो परयो सरना। प्रभ दीन दयाल भगत पवतारनो हम पापी राख पपना। हर दासन दास दास हम करियो जन नानक दास दसन्ना। बिलावल महला चौथा हम मूर्ख मुग्ध अज्ञान मति शरणागत पुरख्या जन्मा कर कृपा रख लेवो मेरे ठाकुरो हम पाथर हीन अकर्मा। मेरे मन पज राम ना मैं रामा गुरमत हर रस पाई है होर त्यागो ने फल कामा रहाओ। हर जन सेवक से हर तारे हम निर्गुण राख उपमा तुझ बिन अवर ना कोई मेरे ठाकुर हर जपिया वड्डे करमा। नामहीन त्रिग जीवते तिन वड़ दुख सहमा ओए फिर जोन पवाई है मंद भागी मूड़िया करमा। हर जन नाम आधार है तुर पूर्व लिखे वड़ करमा गुर सतगुर नाम दृढ़ाया जन नानक सफल जनमा। बिलावल महला चौथा हमरा चित लुभत मोहे बिखिया बहु दुर्बत मैल परा तुमरी सेवा करना सके प्रभ हम क्यों कर मुग्ध तारा। मेरे मन जप नरहर नाम नरहरा जानी ऊपर कृपा प्रभ तारी मेरे सतगुर पार परा रहाओ। हमरे पिता ठाकर प्रभ स्वामी हर देहो मती जस करा तुमरा संग लगे से उधरे ज्यो संग काष्ट लोहो तरा। सागत नर होची मत मध्यम जिन हर हर सेवना करा ते नर भागहीन दोचारी ओए जन्म ओए फिर मरा। जिन कहो तुम हर मेलो स्वामी ते नाय संतोख गुरसरा दुर्मत मैल गई हर भजया जन नानक पार परा। बिलावल महला चौथा आवो संत मिलो मेरे भाई मिल हर हर कथा करो हर हर नाम बोथ है कल युग खेवट गुर सब तरो। मेरे मन हर गुण हर उचरो मस्तक लिख लिखे गुण गाए मिल संगत पार परो रहाओ। काया नगर में राम रसी उत्तम क्यों पाई अवदे जन करो। सतगुर सेव सफल हर दर्शन मिल अमृत हर रस पियो। हर हर नाम अमृत हर मीठा हर संतो चाख दिखाओ। गुरमत हर रस मीठा लागा तिन बिसरे सब बिखरसो। राम नाम रस राम रसायण हर सेवो संत जनो चार पदार्थ चारे पाए। गुरमत नानक हर भजो बिलावल महला चौथा खत्री ब्राह्मण सूद वैस को जापै हर मंत्र जपैनी। गुर सतगुर पार ब्रह्म कर पूजो नित सेवो दिन सो सब रैनी। हर जन देखो सतगुर नैनी जो इच्छो सोई फल पावो हर बोलो गुरमत बैनी रहाओ। अन क्यो पाव चितवी है बहु तेरे सा होवै जे बात होवै नी अपना पला सब कोई बंश है सो करे जे मेरा चितना चितैनी। मन की मत आगो हर जन एह बात कठैनी आन दिन हर हर नाम ते आवो गुर सतगुर की मत लैनी। मत सुमत तेरे वस स्वामी
हम जंत तू पुरख जंतैनी जन नानके प्रभ करते स्वामी ज्यो पावै तवै बुलैनी बिलावल महला चौथा अनद मूल त्यायो पुरखोत्म अंधन अंध अनंदे धर्मराय की कान चुकाई सब चूके जमके शंदे जप मानो हर हर नाम गोविंदे वडभागी गुर सतगुर पाया गुण गाए परमानंदे रहाओ साकत मूड माया के बद्धक विच माया फिरै फिरंदे तृष्णा जलत किरत के बांधे ज्यो तेली बल्द पवंदे गुरमुख सेव लगे सेव उधरे वडभागी सेव करन दे जिन हर जपया तिन फल पाया सब टूटे माया फंदे आपे ठाकुर आपे सेवको सब आपे आप गोविंदे जन नानक आपे।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद, बोलो भैया राम नाम पतत पावनो, हर संत भगतारनो हर परपुरे रया, जल थले राम नाम नित गाइए हर दुख बिसारनो रहाओ, हर किया है सब जन्म हमारा, हर जपया हर दुख बिसार नहारा, गुर भेटिया है मुक्त दाता, हर की हमारी सफल जाता, मिल संगति गुण गावनो मन राम नाम कर आसा, पाओ दूजा बिनस बिनासा, विच आसा होए निरासी, सो जन मिलिया हर पासी, कोई राम नाम गुण गावनो, जन नानक तिस पग लावनो, राग बिलावल महला पंजवा, चौपदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नदरी आवै तिस्यो मोह, क्यों मिलिया प्रभ नासी तोहे, कर कृपा मोय मार्ग पावो, सात संगत कै अंचल लावो, क्यों तरिय बिख्या संसार, सतगुर बोहित

देख पतंगा सगल सिंगार करे नहीं पावै जा होए कृपाल ता गुरु मिलावै। हाँ फिरो उदासी मैं करतन दसाया निर्मोलक हीरा मिलै ना उपाया। हर का मंदिर तिसमें लाल गुर खोलिया पड़दा देख पही निहाल। जिन चाखिया तिस आया साध जो गुंगा मन में बिस्माद। आनंद रूप सब नदरी आया जन नानक हर गुण अक्स माया। बिलावल महला पंजवां सर्व कल्याण किए गुरुदेव सेव के अपनी लायो सेव। बिघन ना लागे जप अलाख्या पेव धरत पुनीत पई गुण गाए दुरत गया हर नाम ते आए रहाओ। सबनी थाई रव्या आप आद जुगाद जा कावड़ प्रताप। गुर प्रसाद ना होए संताप गुर के चरण लगे मन मीठे। निर्विघ्न होए सब थाई बूठे सब सुख पाए सदगुर तूठे। पार ब्रह्म प्रभ रखवाले जिथे किथे दिसे नाले नानक दास खसम प्रतपाले। बिलावल महला पंजवां सुख निदान प्रीतम प्रभ मेरे अगणत गुण ठाकर प्रभ तेरे। मोहे अनाथ तुमरी सरनाई कर कृपा हर चरण ते आई। दया करो बसो मन आए मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए रहाओ। प्रभ चित आवे ता कैसी भीड़ हर सेवक नाही जम पीड़। सर्व दुख हर सिमरत नसे जा कै संग सदा प्रभ बसे। प्रभ का नाम मन तन आधार बिसरत नाम हो तन शार। प्रभ चित आए पूर्ण सब काज हर बिसरत सब का मोहताज। चरण कमल संग लागी प्रीत बिसर गई सब दुर्मत रीत। मन तन अंतर हर हर मंत नानक भगतन कै कर सदा आनंद। राग बिलावल महला पंजवां कर दूजा यानड़िए कै कर गावना एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे मैं मन तेरी टेक अवर स्याणपा बिरथिया प्यारे। राखण कौ तुम एक रहाओ सतगुर पूरा जे मिले प्यारे। सो जन होत निहाला गुर की सेवा सो करे प्यारे जिसनो होए दयाला। सफल मूर्त गुरदेव स्वामी सर्व कला परपूरे नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सदा सदा हजूरे। सुन सुन जीवा सोए तिना की जिन्हें अपना प्रभ जाता। हर नाम आराधे नाम वखाणे हर नाम में ही मन राता। सेवक जन की सेवा मांगे पूरे कर्म कमावा। नानक की बेनंती स्वामी तेरे जन देखण पावा। वड भागी से काढ़िए प्यारे संत संगत जिन्ना वासो। अमृत नाम आराधिए निर्मल मने होवे परगासो। जन्म मरण दुख काटिए प्यारे चूके जमकी काणे। तना प्राप्त दर्शन नानक जो प्रभ अपने पाणे। ऊंच अपार

कनेरे पशु प्रेत मुगत कवतारे पान पारो तारै नानक दास तेरी सरनाई सदा सदा बलिहारै। बिलावल महला पंजवां बिखै वन फीका त्यागरी सखिए नाम महारस पियो बिन रस चाखे बुट गई सगली सुखी ना होवत जियो। मान महतना शक्ति काई सादा दासी थियो नानक से दर सो बावंते जो प्रभ अपने कियो। हर चंदौरी चित प्रम सखिए मृग तृष्णा द्रुम छाया चंचल संगना चालती सखिए अंत तज जावत माया। रस भोगण अत रूप रस माते इन संग सुख नाम पाया तन तन हर सा जन सखिए नानक जिन्नी नाम ते आया। जाए बसो वट पागणी सखिए संता संग समाई है तह दुख ना भूख ना रोग व्यापै चरण कमल लिवलाई है। तह जन्म ना मरण ना आवन जाना निश्चर सरणी पाई है प्रेम बिछो न मोह व्यापै नानक हर एक त्याई है। दृष्ट तार मन बेदया प्यारे रतड़े सह सुभाए से सुहावी संग मिल प्रीतम अंद मंगल गुण गाए। सखी सहेली राम रंग राती मन तन इच पुजाए नानक अचरज अचरज स्यों मिलिया कहना कछु ना जाए। राग बिलावल महला पंजवा कर चौथा एको अंकार सतगुर प्रसाद एक रूप सगलो पा सारा आपे बनजे आप ब्योहारा ऐसो ज्ञान बिरलोई पाए। जत जत जाइए तत दृष्टाए रहाओ अनक रंग निर्गुण एक रंगा आपे जल पा आप ही तिरंगा। आप ही मंदिर आपै सेवा आप ही पुजारी आप ही देवा आपै जोग आप ही जुगता नानक के प्रभ सद ही मुक्ता। बिलावल महला पंजवा आपो पावन आप सुधरना आप करावन दोष ना लेना आपन बचनो आप ही कर।

आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही घट घट आप लिपना, आपे अवगत आप संगरचना, कहो नानक प्रभ के सब जचना। बिलावल महला पंजवा, पूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरवड भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे, बस रहे हृदय गुरचरण प्यारे। रहाओ काम क्रोध लोभ मोहे मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुख सुख करत जन्म फुरमुआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया, अग्न सागर बूढ़ संसारा, नानक बहा पकड़ सतगुर निस्तारा। बिलावल महला पंजवा, तन मन तन अर्पो सब अपना, कमन सुमत जित हर हर जपना, कर आसा आयो प्रभ मंगन, तुम पेखत सोभा मेरा अंगन। रहाओ अनक जुगत कर बहुत बिचारो, साध संग इस मन उधारो, मत बुद्ध सुरत नाही चितराई, ता मिलिया जा ले मिलाई, नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया, कहो नानक सफल सो आया। बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ ना माया, साध संग सब दुख मिटाया, रव रहया प्रभ सब मैं आपे, हर जप रसना दुख ना व्यापे। रहाओ तिखा भूख बहुत तप्त व्यापिया, शीतल पय हर हर जस जापिया, कोट जतन संतोख ना पाया, मंत्र बताना हर गुण गाया, देहो भगत प्रभ अंतर जामी, नानक की बेनंती स्वामी। बिलावल महला पंजवा, गुरपुरा वडपागी पाई है, मिल साधु हर नाम ते आई है, पार ब्रह्म प्रभ तेरी सरना, किलवे काट पज गुर के चरना। रहाओ अवर कर्म सब लोकाचार, मिल साधु संग होए उधार, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, जपिए नाम जित पारे उतारे, जन नानक प्रभ कृपा करिए, साधु तूर मिले निस्तरिए। बिलावल महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय मैं चीना, सगल मनोरथ पूर्ण आसीना, संत जना का मुख उज्जल कीना, कर कृपा अपना नाम दीना। रहाओ अंधकूप ते कर गै लीना, जय जयकार जगत प्रगटीना, नीचा ते ऊंच ऊन पूरीना, अमृत नाम महारस लीना, मन तन निर्मल पाप जल खीना, कहो नानक प्रभ भय परसीना। बिलावल महला पंजवा, सगल मनोरथ पाई मीता, चरण कमल स्यों लाइए चीता, हौ बलिहारी जो प्रभु ते आवत, जलन बुझे हर हर गुण गावत। रहाओ सफल जन्म होवत वटभागी, साह संग्राम लिव लागी, मत पत धन

आठ पहर प्रभ जानो नेरे रहाओ, कहो नानक जाके निर्मल भाग, हर चरणी ताका मन लाग। बिलावल महला पंजवा, रो गया प्रभ आप गवाया, नींद पई सुख सहज कर आया। रहाओ रज रज भोजन खावो मेरे भाई, अमृत नाम अमृत माए ते आई। नानक गुरपूरे सरनाई, जिने अपने नाम की पैज रखाई। बिलावल महला पंजवा, सतगुर कर दीने अस्थिर घर बार। रहाओ जो जो निंद करे इन ग्रहण की, तिस आग्या ही मारे करतार। नानक दास तां की सरनाई, जाको सबद्या खंडिया पार। बिलावल महला पंजवा, ताप संताप सगले गए बिनसे ते रोग, पार ब्रह्म तू बख्सिया संतन रस भोग। रहाओ सर्व सुखा तेरी मंडली, तेरा मंतन या रोग, गुण गावो नित राम के ए अवखद जोग। आए बसो कर देश में एह भले संजोग, नानक प्रभ सो प्रसन्न भय लह गए बेयोग। बिलावल महला पंजवा, काहू संग न चल ही माया जंजाल। ऊठ सिधारे छत्रपातो संतन कै ख्याल। रहाओ अहं बुद्ध कहो बिनसना ए तुरकी ढाल, बहु जोनी जन्म मरे बिखिया बिकराल। सत बचन साधु कह नित जपै गोपाल, सिमर सिमर नानक तरे हर के रंग लाल। बिलावल महला पंजवा, सह समाधानंद सुख पूरे गुरदीन, सदा सहाई संग प्रभ अमृत गुण चीन। रहाओ जय जय कार जगत्र मैं लोचै सब जिया, सो प्रसन्न पए सतगुर प्रभु कछ बिघ्न न थिया। जां का अंग दयाल प्रभ ताके सब दास, सदा सदा वड़ियाइया नानक गुरपास। राग बिलावल महला पंजवा, घर पंजवा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मृत मंडल जग साजिया, ज्यो बालू घर बार, बिनसत बार ना लाग गई ज्यो कागद बूंदार। सुन मेरी मनसा मनै माहे, सत देख बिचार, से सतक गिरि जोगी तज गए कर बार। रहाओ जैसा सुपना रैन का तैसा संसार, दृष्ट मान सब बिनसी है क्या लगे गवार। कहां सो भाई मीत है देख नैन पसार, एक चाल एक चाल सह सब अपनी वार। जिन पूरा सतगुर सेवया से असर हर द्वार, जन नानक हर का दास है राग पैज मुरार। बिलावल महला पंजवा, लोकन किया वड्याइया बैसंतर पागो, जो मिले प्यारा अपना ते बोल करा गो। जो प्रभ जियो दयाल होए तो भगती लागो, लपट रहो मन बासना गुर मिले त्यागो। रहाओ करो बेनती अत कनी यो जियो हमांगो, अर्थ आन सवारिया प्रे निमक सुहागो। पंच संग गुर ते छुट्टे दोख हर राग, हृदय प्रगास प्रगट भया निस्बा सिर जागो। शरण सुहागने आया जिस मस्तक भागो, कहो नानक तिन पाया तन मन सीत लागो। बिलावल महला पंजवा, लाल रंग तिसको लगा जिसके वड भागा। मैला कदे ना हो वही न लागे दागा, प्रभ पाया सुखदाइया मिलिया सुख पाए। सह समाना भीतरे छोड़िया न जाए। रहाओ जरा मरा न व्यापई फिर दुख ना पाया, पी अमृतया गान्या गुर अमर कराया। सो जाने जिन चाखिया हर नाम मोला, कीमत कही ना जाइए क्या कह मुख बोला। सफल दर्स तेरा पार ब्रह्म गुण तेरी बाणी, पावो तूर तेरे दास की नानक कुर्बानी। बिलावल महला पंजवा, राखो अपनी सरन प्रभ मोहे कृपा तारे। सेवा कछु ना जानो नीच मूर्खारे, मान करो तुद उपरे मेरे प्रीतम प्यारे। हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शन हारे,
रहाओ। हम अवगन करें असंख नीत, तुम निर्गुण दातारे, दासी संगत प्रभु त्याग, ए कर्म हमारे। तुम देवो सबके दया तार, हम अकृत कनारे, लाग परे तेरे दान स्यो, नैचित खसमारे। तुइ ते बाहर किश नहीं, पव काट नहारे, कहो नानक सरण दयाल गुर, लेहो मुगदे उधारे। बिलावल महला पंजवां, दोष ना काहू दीजिए, प्रभ अपना त्याई है, जित सेवे है, सुख होए कना, मन सोई गई है। कहिए काय प्यारे तुझ बिना, तुम दयाल स्वामी, सब अवगन हमा रहाओ। ज्यो तुम राखो त्यों रहा, अवर नहीं चारा, नी तरिया तर तेरिया, एक नाम आधारा। जो तुम करो सोई भला, मन लेता मुक्ता, सगल समग्री तेरिया, सब तेरी जुगता। चरण पखारो कर सेवा, जे ठाकर पावै, हो कृपाल दयाल प्रभ, नानक गुण गावै। बिलावल महला पंजवा, मृत हसै श्री उपरे, पशुआ नहीं बूझै, बाद साध हंकार में, मरना नहीं सूझै। सतगुर सेवो अपना, काहे फिर अपागे, देह कुसुम्बा रंगला, काहे फूल लागे। रहाओ कर कर पाप दर्पण की, कर कर पाप दर्ब किया, वर्तन कहताई, माटी स्यो माटी रली, नांगा उठ जाई। जा कह किया श्रम कर, ते बैर विरोधी, अंत काल पा जाहेंगे, काहे जलो क्रोधी। दास रेण सोई होवा, जिस मस्त कर्मा, कहो नानक बंधन छुटे, सतगुर की सरना। बिलावल महला पंजवा, पिंगल पर्वत पार परे, खल चतुर बकीता।

रूप तूप सौगंधता कापर पोगाद मिलत संग पापिष्ट तन होए दुर्गाद फिरत फिरत मानुख पाया खिन पंगन देहाद। ए अवसर ते चूकिया बहु जोन परमाद प्रभ कृपा ते गुरमिले हर हर बिस्माद। सूख सहज नानक आनंद ताकै पूर्ण नाद बिलावल महला पंजवा चरण पहे संत बोए था तरे सागर जेत मार्ग पायो ध्यान मैं गुरदसे पेत। हर हर हर हर हर हरे हर हर हर हेत उठत बैठत सोबते हर हर हर चेत रहाओ। पंच चोर आग्ञा पगे जब साध संगेत पूंजी साबत कणो लाभ गृह शोभा सेत। निहचल आसन मिटी चिंत नाही डोलेत परम भुलावा मिट गया प्रभ पेखत नेत। गुण गंभीर गुण नायका गुण कहिया केत नानक पाया साध संग हर हर अमृत बिलावल महला पंजवा। बिन साधु जो जीवना ते तो बिरथारी मिलत संग सब प्रम मिटे गत पई हमारी। जा दिन पेटे साध मोहे उवा दिन बलिहारी तन मन अपनो जियरा फिर फिराओ वारी। रहाओ एत छिडाई मोहे ते इतनी दृढ़तारी सगल रेन एहो मन पया बिनसी अपतारी। निंद चिंद पर दुख ना ए खिन में जारी दया माया अर निकट पेख नाही दूरारी। तन मन शीतल पय अब मुक्ते संसारी हीत चीत सब प्राण तानो नानक दरसारी बिलावल महला पंजवा। टहल करो तेरे दास की पग चारा बाल मस्तक अपना पेट दियो गुण सुनो रसाल। तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिलो दयालो निस्बासर मन अंध हो तो चिरवत कृपाल। रहाओ जगते उदाहरण साध प्रभ तिन लागो पाल मोको दीजे दान प्रभ संतन पगराल। उक्त सियान पो कश नहीं नाही कश काल भ्रम पै राखो मोहते काटो जमजाल। बिना करो करना पते पिता प्रतपाल गुण गावो तेरे साध संग नानक सुखसाल। बिलावल महला पंजवा कीता लोड़ै सो करै तुझ बिन कश नाहे प्रताप तुम्हारा देह कै। जम दूत छड़ जाहे तुमरी कृपा ते छूटिया बिनसै अहमेव सर्व कला समरथ प्रभ पूरे गुरुदेव। रहाओ खोजत खोजत खोजिया नामे बिनपूर जीवन सुख सब साध संग प्रमन सापूर। जित जित लावो तित तित लगे सियान सब जाली जत का तुम भरपूर हो मेरे दीन दयाली। सब किश तुम ते मांगना वड भागी पाए नानक की अरदास प्रभ जीवा गुण गाए। बिलावल महला पंजवा साध संगत कै बास बै कलमल सब नसना प्रभ सेती रंग रातिया। ता ते गर्भ ना ग्रसना नाम कहत गोविंद का सूची पई रसना। मन तन निर्मल होई है गुर का जप जपना रहाओ। हर रस चाखत त्रापिया मन रस लै हसना बुद्ध प्रगास प्रगट पई उल्ट कमल बिगसना। शीतल सांत संतोख होए सब बूझी तृष्णा दह दिस तावत मिट गए निर्मल थान बसना। रखन हारे राखिया पय परम पसना नाम निधान नानक सुखी पेक साध दर्शना। बिलावल महला पंजवा पानी पखा पीस दास कै तब होए निहाल। राज मिलख सिकदारिया अग्नि में जाल
संत जना का शोहरा, तिस चरणी लाग माया तारी शत्रपात, तिन छोड़ो त्याग रहाओ। संतन का दाना रूखा सो सर्वन दान, गृह साक्त शक्ति प्रकार ते बिहू समान। भगत जना का लुगरा ओढ़ नगन ना होई, साख सिर पाओ रेशमी पहरत पत खोई। साक्त स्यो मुख जोर है आद विचो टूटे, हर जन की सेवा जो करे इत उते छूटे। सब किश तुम ही ते होवा, आप बनत बनाई दर्शन भेटत साधका, नानक गुण गाई। बिलावल महला पंजवा, सरवणी सुनाओ हर हर हरे, ठाकर जस गावो। संत चरण कर सीस तार, हर नाम ते आवो। कर कृपा दयाल प्रभ एह निध सिद्ध पावो, संत जना की रेणका लै माथे लावो रहाओ। नीच ते नीच अत नीच होए, कर बिनो बुलावो। पाव मलोवा आप त्याग, संत संग समावो। सास सास न विसरे अनकत ना तावो, सफल दर्शन गुर भेटी है मान मोह मिटावो। सत संतोख दया धर्म सिंगार बनावो, सफल सुहागण नानका अपने प्रभावो। बिलावल महला पंजवा, अटल बचन साधु जना सब मैं प्रगटाया, जिस जन होवा सा संग तिस पेटे हर राया। एह प्रतीत गोविंद की जप हर सुख पाया, अनक बाता सब कर रहे गुर कर ले आया रहाओ। शरण परे की राखता नाही सहसाया, कर्म भूम हर नाम बोए अवसर दुर्बाया। अंतरजामी आप प्रभ सब करे कराया, पतत पुनीत कणे करे ठाकुर बिरदाया। मत भूलो मानुख जन माया परमाया, नानक तिस पत राखसी जो प्रभ पहराया। बिलावल महला पंजवा, माटी ते जन साजिया कर दुर्लभ देह, अनक छिद्र मन में टके निर्मल दृष्टे। क्यों बिसरे प्रभ मनैते जिसके गुण ए है, प्रभ तज रचे जे आन स्यों सोर लिये खे है। रहाओ सिमरो सिमरो सास सास, मत बिलम करे हे छोड़ परपंच, प्रभ स्यों रचो तज कूड़े ने है। जिन अनक एक बहु रंग किए है होसी ए है, कर सेवा तिस पार ब्रह्म गुरते मत ले है। ऊचे ते ऊचा वड्डा सब संग बरने है, दास दास को दासरा नान कर ले है। बिलावल महला पंजवा, एक टे गोविंद की त्यागी अन्यास, सब ऊपर समरथ प्रभ पूर्ण गुणतास। जन का नामाधार है प्रभ सरणी पाहे, परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे रहाओ। आप रखे आप देवसी आपे प्रतपार, दीन दयाल कृपा निदे सास सास सुमार। करण हार जो कर रहे साई वड्याई, गुरपूरे उपदेसिया सुख स्मर जाई। चिंत अंदेसा गणत तज जन हुकुम पछाता, नह बिनसै नह छोड़ जाए नानक रंग राता। बिलावल महला पंजवा, महातप ते पई सांत परसत पाप नाठे। अंध कूप में गलत थे काढे दे हाथे, ओए हमारे साजना हम उनकी रेन। जिन पेड़त होवत सुखी जी दान देन रहाओ। परा पूर्बला लिखिया मिलिया अवे आए, बस्त संग हर साध कै पूर्ण आसाए। पै बिन से तिहु लोक के पाए सुखथान, दया करी समरथ गुर बसिया मन नाम। नानक की तू टेक प्रभ तेरा आधार, करण कारण समरथ प्रभ हर अगम अपार। बिलावल महला पंजवा, सोई मलीन दीनहीन
ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰਾਨਾ ਕਰਨੈ ਹਰ ਨਾ ਬੂਜਈ ਆਪ ਗਨੈ ਬੇਗਾਨਾ ਦੁਖ ਤਦੇ ਜਦ ਵੀ ਸਰੈ ਸੁਖ।

नीच खन में थाप है कीमत कहीं ना जाई है ठाकर परताप है। पेखत लीला रंग रूप चलने दिन आया सुपने का सुपना पया संग चलिया कमाया। कारण कारण समर्थ प्रभ तेरी सरनाई हर दिन सरैण नानक जप है साध साध बल जाई। बिलावल महला पंजवा जल ढोव एह सीस कर पग पख लावो बार जाओ लख बेरिया दर्स पेख जीवावो। करो मनोरथ मने माहे अपने प्रभ ते पावो देव सुहनी साध कै बीजन टोलावो रहाओ। अमृत गुण संत बोलते सुन मने पीलावो ओवा रस मैं सांत तृप्त होए बिख्या जलन बुझावो। जब भगत करे संत मंडली तिन मिल हर गावो करो नमस्कार भगत जन तूर मुख लावो। ऊठत बैठत जपो नाम एहो कर्म कमावो नानक की प्रभ बेनती हर सरण समावो। बिलावल महला पंजवा एहो सागर सोई तरै जो हर गुण गाए साध संगत कै संग वसै वडभागी पाए। सुन सुन जीवै दास तुम बाणी जन आखी प्रगट पई सब लो मैं सेव की राखी रहाओ। अग्न सागर ते काढ़िया प्रभ जलन बुझाई अमृत नाम जल संचिया गुर पय सहाई। जन्म मरण दुख काटिया सुख का थान पाया काटी सिलक प्रभ मोह की अपने प्रभ पाया। मत कोई जानो अवर कश सब प्रभ कै हाथ सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ। बिलावल महला पंजवा बंधन काटे आ प्रभ होवा कृपाल दीन दयाल प्रभ पार ब्रह्म ताकि नदर निहाल। गुरपुरे कृपा करी काटिया दुख रोग मन तन शीतल सुखी पाया प्रभ त्यावन जोग रहाओ। औखद हर का नाम है जित रोग ना व्यापै साध संग मन तन हितै फिर दुख ना जापै। हर हर हर हर जापिए अंतर लिवलाई किलवख उतरै सुध होए साधु सरनाई। सुनत जपत हर नाम जस ता की दूर बलाई महामंत्र नानक कथै हर के गुण गाई। बिलावल महला पंजवा पहते उपजै भगत प्रभ यंत्र होए सांत नाम जपत गोविंद का बिनसै परम प्रांत। गुरपुरा जिस पेट

हाथ और आओ जीवन का दाता एक है बिया नहीं होर। नानक की बेनतिया मैं तेरा जोर। बिलावल महला पंजवा। मीत हमारे साजना राखे गोविंद, निंदक मृतक होए गए तुम हो निचिंद। रहाओ सगल मनोरथ प्रभ किए पेटे गुरुदेव, जय जय कार जगत में सफल जा की सेव। ऊच अपार गणत हर सब जी जिस हाथ, नानक प्रभ शरणागति जत कत मेरे साथ। बिलावल महला पंजवा।

गावत प्रभ नाम सहज सुख्या आनंद रस पूर्ण सब काम रहाओ। जलन बुझी शीतल पय राखे प्रभ आप, नानक प्रभ शरणागति जा कावड परताप। बिलावल महला पंजवा तरत सुहावी सफल थान, पूर्ण पय काम पौ नाठा प्रभ मिट गया रव्या नित राम। सात जना कै संग बस्त सुख सहज विश्राम, साई कड़ी सुलखणी सिमरत हर नाम रहाओ। प्रगट पय संसार मैं फिरते पहनाम, नानक ते शरणागति कड़कड़ सब जान। बिलावल महला पंजवा रोग मिटाया आप प्रभ उपजया सुख सात, वट प्रताप अचरज रूप हर की नीदात। गुर गोविंद कृपा करी राख्या मेरा पाई, हम तिसकी शरणागति जो सदा सहाई रहाओ। बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास, नानक जोर गोविंद का पूर्ण गुणतास। बिलावल महला पंजवा मर मर जन्मे जन बिसरिया, जीवन का दाता पार ब्रह्म जन सेवया अंदन रंगराता। सात सहज आनंद घना पूर्ण पई आस, सुख पाया हर साध संग सिमरत गुणतास रहाओ। सुन स्वामी अरदास जन तुम्हें अंतर जामी, थान थनंतर रव रहे नानक के स्वामी। बिलावल महला पंजवा ताती वाओ न लगई, पार ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारे रामकार, दुख लगे न पाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई, राम नाम औखद दिया एका लिवलाई रहाओ। राख लिए तिन रखन हार सब ब्याद मिटाई, कहो नान कृपा पई प्रभ पय सहाई। बिलावल महला पंजवा अपने बाल के आप रखिया नो, पार ब्रह्म गुरुदेव सुख सात सहज आनंद पय पूर्ण पई सेव रहाओ। भगत जना की बेनती सुनी प्रभ आप, रोग मिटाए जी वालिया नो जा कावड़ प्रताप। दोख हमारे बख्शियां नो अपनी कल तारी, मन बाइत फल दित्या नो नानक बलिहारी। राग बिलावल महला पंजवा चौप दे दुप दे कर शेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे मोहन श्रवण यह ना सुनाए, साकत गीत नाद तुन गावत बोलत बोलिया जाए रहाओ। सेवत सेव सेव साध सेवाओ सदा करो करताए, अपैदान पावो पुरख दाते मिल संगत हर गुण गाए। रसना अगह अगह गुण राती नैन दर्श रंग लाए, हो कृपाल दीन दुख पंजन। मोहे चरण हृदय वसाए, सब हूं तले तले सब ऊपर एह दृष्ट दृष्टाए। अब मान खोए खोए खोए खोई हों, मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए। अतुल अतुल अतुल नह तुलिये भगत वच्छल कृपाए, जो जो शरण पर्यो गुर नानक अपह दान सुख पाए। बिलावल महला पंजवा प्रभ जी तू मेरे प्राण आधार है, नमस्कार डंडौत बंदना अनक बार जाओ बार है रहाओ। उठत बैठत सोवत जागत एहो मन तुझे चितार है, सुख दुख इस मन की बिरथा तुझ ही आगे सार है। तू मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम ही, तुम्हें मेरा परिवार है। जो तुम करहो सोई पल हमरे, पेख नानक सुख चरणार है। बिलावल महला पंजवा सुनियत प्रभ तो सगले उदाहरण, मोह मगन पतत संग प्राणी ऐसे मने बिसारन रहाओ। संच बिख्याले ग्रह जकीनी अमृत मनते डारन, काम क्रोध लोभ रत निंदा सत संतोख बेदारन। इनते काढ़ लेहो मेरे स्वामी हार परे तुम सारन, नानक की बेनंती प्रप है साध संक रंक तारन। बिलावल महला पंजवा संतन कै सुनियत प्रभ की बात,
कथा कीर्तन आनंद मंगल तोन पूर रही दिन से रात रहाओ। कर कृपा अपने प्रभु कीने नाम अपने की कीनी दात। आठ पहर गुण गावत प्रभ के काम क्रोध इस तन ते जात। तृप्त अगाए पेख प्रभ दर्शन अमृत हर रस भोजन खात। चरण सरन नानक प्रभ तेरी कर कृपा संत संग मिलात। बिलावल महला पंजवा। राख लिए अपने जने आप कर कृपा हर हर नाम दीनो बिरस गए सब शोक संताप। रहाओ गुण गोविंद गावो सब हर जन राग रतन रसना आलाप। कोट जन्म की तृष्णा निवारी राम रसायन आत्म त्राप। चरण गहे शरण सुखदाते गुर कै बचन जपे हर जाप। सागर तरे परम पै बिनसे कहो नानक ठाकर प्रताप। बिलावल महला पंजवा। ताप लाहया गुर सिरजनहार सतगुर अपने कौ बल जाई जिन पैज रखी सारे संसार। रहाओ कर मस्तक तार बालक रख लीनो प्रभ अमृत नाम महारस दीनो। दास की लाज रखे मेहरवान गुरु नानक बोले दरगह परवान। राग बिलावल महला पंजवा। चौपदे दोपदे कर सतवा एको ओंकार सतगुर प्रसाद। सतगुर शब्द उजारो दीपा बिनस्यो अंधकार तह मंदर रतन कोठड़ी खुली अनूपा। रहाओ बिस्मन बिस्म पए जौ पेखियो कहन न जाए वड़ियाई। मगन पए ऊहा संग माते ओत पोत लपटाई। आल जाल नहीं कछु जंजारा अहम बुद्ध नहीं पोरा। ऊचन ऊंचा बीचना खींचा हौ तेरा तू मोरा। एक अंकार एक पासारा एक है प्रयापारा। एक विस्तीर्ण एक संपूर्ण एक है प्राण आधारा। निर्मल निर्मल सूचा सूचो सूचा सूचो सूचा। अंत ना अंता सदा बेअंता कहो नानक ऊचो ऊचा। बिलावल महला पंजवा। बिन हर काम ना आवत है जा स्यो राच माज तुम लागे ओ मोनी मोहावत है। रहाओ कनक कामनी सेज सोहनी छोड़ खिन मैं जावत है। उर्ज रहो इंद्री रस प्रेरियो बिखै ठगौरी खावत है। तृण को मंदिर साज सवारियो पावक तलै जरावत है। ऐसे गढ़ में ऐठ ठीलो फूल फूल क्या पावत है। पंच दूत मूंड पर ठंडे केस गहे फेर आवत है। दृष्ट ना आवे अंध अज्ञानी सोए रहो मदमावत है। जाल पसार चोग विस्थारी पंखी जोफा हावत है। कहो नानक बंधन काटन कहो मैं सतगुर पुरख ते आवत है। बिलावल महला पंजवा। हर हर नाम अपारिया मोली प्राण प्यारो मन आधारो चीत चितवो जैसे पांत बोली। रहाओ सह समायो ग्रह बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली। प्रेम मुख लागो जाओ वट पागो सुहाग हमारो कतो न डोली। रूप ना धूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मौली। कहो नानक प्रेरवि सुहागन अतनी की मेरी बनी खटोली। बिलावल महला पंजवा। गोबिंद गोबिंद गोबिंद मई जब ते पेटे साथ दयारा तब ते दुर्मत दूर पही। रहाओ पूर्ण पूर्ण रहो संपूर्ण सीत सां दयाल दई। काम क्रोध तृष्णा अहंकारा तंते होए सगल खई। सत संतोख दया धर्म सुच संतन ते हो मंत लई। कहो नानक जिन मनो पछानिया तिन कहो सगली सोज पई। बिलावल महला पंजवा। क्या हम जी जंत बेचारे वर्ण न साकै एक रोमाई ब्रह्म महेश सिद्ध मुनि इंदिरा। बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई क्या कथिया किश कथन न जाई। जह जह देखा तह रया समाई। रहाओ जय महा भयान दुख जम सुनिए
तह मेरे प्रभ तू है सहाई, शरण परयो हर चरण गए प्रभ, गुरु नानक को बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा, आगम रूप अविनाशी करता, पतत पवित एक निमख जपाई है, अचरज सुनियो प्राप्त भेट ले, संत चरण चरण मन लाई है, कित विधि है कित संयम पाई है, कौ सुरजन के जुगति त्याई है। रहाओ जो मानुख मानुख की सेवा, ओ तिसकी लई लई फुन जाई है, नानक शरण शरण सुख सागर, मोहे टेक तेरो एक नाई है। बिलावल महला पंजवा, संत शरण संत टहल करी, तंद बंद अर सगल जंजारो, अवर काज ते छूट परी। रहाओ सुख सहज अर करो आनंदा, गुरते पायो नाम हरी, ऐसो हरस बरना सा कहो, गुरपुर है मेरी उल्ट तरी, पेख्यो मोहन सब कै संगे, ऊन ना काहू सगल भरी, पूर्ण पूर रहो कृपा निध, कहो नानक मेरी पूरी परी। बिलावल महला पंजवा, मन क्या कहता हौ क्या कहता, जान प्रवीण ठाकुर प्रभ मेरे, तिसे आज्ञा क्या कहता। रहाओ अन बोले कहो तुही पछाने, जो जियन मैं होता, रे मन काय कहां लो डह कह, जो पेहती संग सुनता, ऐसो जान पहे मन आनंद, आन न बियो करता, कहो नानक गुर पहे दयारा, हर रंग न कभू लहता। बिलावल महला पंजवा, निंदक ऐसे ही चर परी है, एह निशानी सुनो तुम पाई, जो कालर पीत गिरी। रहाओ जो देखे शिदर तो निंदक उमा है, पलो देख दुख परी है, आठ पहर चितवे नहीं पहुंचे, बुरा चितवत चितवत मरी है। निंदक प्रभु पुलाया, काल नेर आया, हर जन स्यो बाद उठरी है, नानकारा खाया प्रभ स्वामी, क्या मानस बपरे करी है। बिलावल महला पंजवा, ऐसे काहे पूल परे, करे करावे मुकर पावे, पेखत सुनत सदा संघरे। रहाओ काज बिहाजन कंचन छाडन, बैरी संग हेत साजन त्याग खरे, होवन कौरा अनहोवन मीठा, बिखिया मैं लपटाए जरे, अंधकूप मैं परे उपरानी, परम गुबार मोहे बंद परे, कहो नानक प्रभ हो दयारा, गुर पेट काडे बा फरे। बिलावल महला पंजवा, मंत्र रसना हर चीना, पय आनंदा मिट आंदे से, सर्व सुख मोको गुरदीना। रहाओ एआनप ते सब पई सियानप, प्रभ मेरा दाना बीना, हाथ दे रख अपने कहो, काहू ना करते कशखीना, बल जावो दर्शन साधु कै, जे प्रसाद हर नाम लीना, कहो नानक ठाकुर पारोसै, कहू ना मान्यो मन छीना। बिलावल महला पंजवा, गुरपुरै मेरी राख लई, अमृत नाम हृदय मैं दीनो, जन्म जन्म की मैल गई। रहाओ

सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल रख मन माही, ताकी शरण परयो नानक दास, जाते उपर को नाही। बिलावल महला पंजवा, सदा सदा जपिए प्रभ नाम, जरा मरा कहीं दुख न व्यापै, आगै दरगै पूर्ण काम रहाओ। आप त्याग परिय नित सरनी, गुर ते पाइय हो निदान, जन्म मरण की कटिया फांसी, साची दरगै का निशान। जो तुम करहो सोई पल मानो, मन ते छूटै सगल गुमान, कहो नानक ता की शरण आई, जाका किया सगल जहान। बिलावल महला पंजवा, मन तन अंतर प्रभ आही, हर गुण गावत पर उपकार नित, तिस रसना का मोल किश नाही रहाओ। कुल समूह उदरेखन पीतर, जन्म जन्म की मल लाही, सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, आनंद सेती बिखिया बन गाही। चरण प्रभु के बोहित पाए, पव सागर पार पराही, संत सेवक भगत हरता के, नानक मन लागा है ताही। बिलावल महला पंजवा, तीरव देख तुम्हारे रंगा, तू ही स्वामी अंतर जामी, तू ही वसै साध कै संगा रहाओ। खिन मैं थाप निवाजे ठाकर, नीच कीड़ते करह रजंगा, कबहू ना बिसरै हिये मोरे ते, नानक दास ही दान मंगा। बिलावल महला पंजवा, अचित पूजा जो गोपाल, मन तन अर्प रखो हर आगै, सर्ब जिया का है प्रतपाल रहाओ। शरण समर्थ अकथ सुखदाता, कृपा सिंध बड़ो दयाल, कंठ लाए राखे अपने को, तिसनो लगे न दाती बाल। दामोदर दयाल स्वामी, सर्बस संत जना तलमाल, नानक जाचक दर्श प्रभ मांगै, संत जना की मिलै रवाल। बिलावल महला पंजवा, सिमरत नाम कोट जतन पए, साध संग मिल हर गुण गाए, जम दूतन कौ त्रास है रहाओ। जेते पुनः चरण से कीने, मंतन प्रभ के चरण गहे, आवन जान परम पौ नाठा, जन्म जन्म के किल विख दहे। निरपौ होए पजो जगदीश, एहो पदार्थ वड भाग लहे, कर कृपा पूर्ण प्रभ दाते, निर्मल जस नानक दास कहे। बिलावल महला पंजवा, सुलही ते नारायण राख, सुलही का हाथ कहीं ना पहुंचे, सुलही होए मुआ ना पाक रहाओ। काड कुठार खसम सिर काटिया, खिन मैं होए गया है खाक, मंदा चितवत चितवत पचया, जिन रचिया तिंदी ना ताक। पुत्र मीत तन किछु ना रहयो, सो छोड़ गया सब पाई साक, कहो नानक तिस प्रभ लिहारी, जिन जन का कीनो पूर्ण वाक। बिलावल महला पंजवा, पूरे गुर की पूरी सेव, आपे आवर्तै स्वामी, कार्ज रास किया गुरुदेव रहाओ। आद मद प्रभ अंत स्वामी।

बिलावल महला पंजवा, दर्शन देखत दोख नसे, कबो न होवो दृष्टया गोचर, जी कै संग बसे रहाओ। प्रीतम प्राणे आधार स्वामी, पूर रहे प्रभ अंतर जामी, क्या गुण तेरे सार सुमारी, सास सास प्रभ तुझे चितारी। कृपा निध प्रभ दीन दयाला, जी जंत की करो प्रतपाला। आठ पहर तेरा नाम जन जापे, नानक प्रीत लाई प्रभ आपे। बिलावल महला पंजवा, तन तन योबन चलत गया, राम नाम का भजन ना कीनो, करत विकार निस्पोर पया रहाओ। अनक प्रकार भोजन नित खाते, मुख दंता कसखीन खया।

कह चेरा काकौ द्राओ कास्यो बल बंचा जय जय पेख तय तय नेरा साध मूर्त गुर भेट्यो नानक मिल सागर बूंद नहीं अनहेरा। बिलावल महला पंजवा तुम समर्था कारण करन टाकन टाक गोविंद गुर मेरे मोहे अपराधी सरन चरण। रहाओ जो जो कीनो सो तुम जानेओ पेख्यो ठौर नाही कछ टीठ मुकरन। बड़ प्रताप सुनियो प्रभ तुमरो कोट अग्गा तेरो नाम हरन। हमरो सहाओ सदा सद पूलन तुमरो बिरद पथ त्यो धरन। करना मैं कृपाल कृपा निध जीवन पद नानक हर दर्शन।

रहाओ। गुर को शब्द मेरा ही हरै बस है, हर नामा मन संग धरो, तस्कर पंच निवारो ठाकर, सगलो परमा होम जरो। जो तुम करो सोई पलमा न पावन दुबदा दूर टरो, नानक के प्रभु तुम ही दाते, संत संग ले मोहे उदरो। बिलावल महला पंजवा, ऐसी दीख्या जन स्यो मंगा, तुमरो ध्यान तुम्हारो रंगा, तुमरी सेवा तुम्हारे अंगा रहाओ। जन की टहल संपाखन जन स्यो, उठन बैठन जन कै संगा, जन चर राज मुख माथे लागी, आशा पूर्ण अंत तिरंगा। जन पार ब्रह्म जा की निर्मल महिमा, जन के चरण तीर्थ कोट गंगा, जन की तूर कियो मज्जन नानक, जन्म जन्म के हरे कलंगा। बिलावल महला पंजवा, ज्यो पावै त्यो मोहे प्रतपाल, पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु, हम पार्ग तुम पिता कृपाल रहाओ। मोहे निर्गुण गुण नाही कोई, पहुंच ना सको तुमरी काल, तुमरी गतमित तुम ही जानो, जियो पिंड सब तुमरो माल। अंतरजामी पुरख स्वामी, अन बोलत ही जानो हाल, तन मन शीतल होए हमारो, नानक प्रभ जियो नदर निहाल। बिलावल महला पंजवा, राग सदा प्रभ अपने साथ, तू हमरो प्रीतम मन मोहन, तुझ बिन जीवन सगलिया काथ रहाओ। रंक तेराओ करत खिन पीतर, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, जल तगन मैं जन आपो धारे, कर अपने दे राखे हाथ। शीतल सुख पायो मन तृपते, हर सिमरतो श्रम सगले लाथ, निर्दान नानक हर सेवा, अवर सियानप सगलिया काथ। बिलावल महला पंजवा, अपने सेवको कबो ना बिसारो, उरला गोस्वामी प्र मेरे, पूर्व प्रीत गोबिंद विचारो रहाओ। पतत पावन प्रभ बिर तुम्हारो, हमरे दुख हृदय मत तारो, जीवन प्राण हर तन सुख तुम ही, हम मैं पटल कृपा कर जा रहो। जल बिहून मीन कत जीवन, दूध बिना रहन कत बारो, जन नानक प्यास चरण कमलन की, पेख दर्श स्वामी सुख सारो। बिलावल महला पंजवा, आगे पाछे कुशल भया, गुरपुरे पूरी सब राखी, पार ब्रह्म प्रभ की नी माया रहाओ। मन तन रवर हया हर प्रीतम, दुख दर्द सगला मिट गया, सांत सहजया नंद गुण गाए, दूत दुष्ट सब होए खया। गुण अवगन प्रभ कछ ना बिचार्यो, कर कृपा अपना कर लया, अतुल बड़ाई अचुत बनासी, नानक उचरे हर की जया। बिलावल महला पंजवा, बिन पै भगती तरन कैसे, करो नगरो पतो धारनो, राग स्वामी आप भरोसे रहाओ। सिमरन नहीं आवत फिरत मद मावत, बिख्या राता स्वान जैसे, औद बिहावत अधिक मोहावत, पाप कमावत बुढ़े ऐसे। शरण दुख पंजन पुरख निरंजन, साधु संगत रमन जैसे, केशव कलेश नास अग खंडन, नानक जीवत दर्श दिसे। राग बिलावल महला पंजन।

तन तन कलातो सब देख अब महन्ना, बिन नावै किछ संग ना जाना रहाओ, कीचै रस भोग खुशियां मन केरी, तन लोका तन पसमै टेरी, खाकू खाक रलै सब फैल, बिन शब्द नहीं उतरै मैल, गीत राग कंताल से कूरे, त्रिगुण उपजे बिन से दूरे, दूजी दुरमत दर्द ना जाए, छूटै गुरमुख दारू गुण गाए, तोती उजल तिलक गल वाला, अंतर क्रोध पड़े नाटशाला, नाम विसार माया मद पिया, बिन गुर भगत नाही सुखथिया, सूकर स्वान गर्दप मंजारा, पशु मलेश नीचंडाला, गुर ते मोह फेरे तन जोन पवाईऐ, बंधन बांध्या आई जाइऐ, गुर सेवा ते लह पदार्थ, हृदय नाम सदा कृतार्थ, साची दरगह पूछना होए, माने हुक्म सीजै दरसोए, सतगुर मिलै तां तिसको जाणै, रहर जाई हुक्म पछाणै, हुक्म पछाण सच्चै दरवास, काल बिकाल शब्द पै नास, रह अतीत जाणै सब तिसका, तन मन अर्पै है ओ जिसका, ना ओ आवै ना ओ जाए, नानक साचे साच समाए, बिलावल महला तीजा, अष्टपदी कर दसवां एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, जग कौआ मुख चुंच ज्ञान, अंतर लोभ झूठे मान, बिन नामै पाज रह निदान, सतगुर सेव नाम वसै मन चीत, गुर भेटे हर नाम चितावै, बिन नामै होर झूठ प्रीत रहाओ, गुर कहे आसा कार कमावो, शब्द चीन सहज कर आवो, साचै नाए वडाई पावो, आप न बूझै लोक बुझावै, मन का अंधा अंध कमावै, दर घर महल ठौर कैसे पावै, हर जियो सेवियै अंतर जामी, घट घट अंतर जिसकी जोत समानी, तिस नाल क्या चलै पहनामी, साचा नाम साचा शब्द जानै, आपै आप मिलै चुकै अभिमानै, गुरमुख नाम सदा सदा वखानै, सतगुर सेवै दूजी दुरमत जाई, औगुण काट पापा मत खाई, कंचन काया ज्योति जो समाई, सतगुर मिलै वड्डी वड्याई, दो काटे हृदय नाम वसाई, नाम रते सदा सुख पाई, गुरमत मानिया करनी सार, गुरमत मान्या मोख द्वार, नानक गुरमत मान्या परवार साधार। बिलावल महला चौथा, अष्टपदियां घर ग्यारवां एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, आपै आप खाए हो मेटै, आन दिन हर रस गीत गवैया, गुरमुख परचै कंचन काया, निरपौ ज्योति ज्योत मिलैया, मैं हर हर नाम आधार रमैया, खिन पल रह न सको बिन नावै, गुरमुख हर हर पाठ पढ़ैया रहाओ, एक गिरौ दस द्वार हैं जाके, अहन सो तस्कर पंच चोर लगैया, धर्म अर्थ सब हिर ले जावै, मनमुख अंदले खबर ना पैया, कंचन कोट बहुमानक भरिया, जागे ज्ञान तत् लिव लैया, तस्कर हेरू आए लुकाने, गुर कै शब्द पकड़ बंद पैया, हर हर नाम पोत बोए था, खेवट शब्द गुरपार लंगैया, जमजा गाती नेण ना आवै, ना को तस्कर चोर लगैया, हर गुण गावै सदा दिन राती, मैं हर जस कहते अंत न लहिया, गुरमुख मनुआ इकत घर आवै, मिलो गोपाल निशान बजैया, नैनी देख दर्श मंत्र बतै, श्रवण बाणी गुर शब्द सुनैया, सुन सुन आत्म देव है पीने, रस रस राम गोपाल रवैया, त्रै गुण माया मोहे वे आपे, तुरिया गुण है गुरमुख लैया, एक दृष्ट सब सम कर जाणै, नदरी आवै सब ब्रह्म पसरैया, राम नाम है जोत सबाई,
ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਅਲਖ ਲਖਈਆ, ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਏ ਹੈ, ਭਗਤ ਪਾਏ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਈਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੀਤਲ ਜਲ ਧਿਆਵੋ, ਹਰ ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਸੁਗੰਧ ਗੰਦਈਆ। ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਹਿਰਡ ਪਲਾਸ ਸੰਗ ਹਰ ਬੁਹੀਆ। ਜਪ ਜਗਨਨਾਥ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਈਆ, ਸਰਨ ਪਰੇ ਸੇ ਜਨ ਉਬਰੇ, ਜਿਉ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਉਧਾਰ ਸਮਈਆ। ਰਹਾਓ ਪਾਰ ਅਠਾਰੈ ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਉਤਮ, ਚੰਦਨ ਨਿਕਟ ਸਭ ਚੰਦਨ ਹੋਈਆ। ਸਾਕਤ ਕੂੜੇ ਊਬ ਸੁੱਕ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਅਭਮਾਨ ਵਿਛੜ ਦੂਰ ਗਈਆ। ਹਰ ਗਤਮਿਤ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਜਾਣੈ, ਸਭਿਦ ਹਰ ਹਰ ਆਪ ਬਨਈਆ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਕੰਚਨ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮਿਟੈ ਨਾ ਮਿਟਈਆ। ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰਮਤ ਪਾਏ, ਸਾਗਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਖੁਲਈਆ। ਗੁਰਚਰਨੀ ਇੱਕ ਸਰਦਾ ਉਪਜੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਿਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਪਹੀਆ। ਪਰਮ ਬੈਰਾਗ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹਰ ਧਿਆਏ, ਮੈਂ ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਿਤੇ ਪਾਵਨੀ ਕਹੀਆ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਖਿਨ ਖਿਨ ਪਲ ਕਹੀਏ, ਹਰ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਵੈ ਪਰੈ ਪਰਈਆ। ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰੈ, ਧਰਮ ਕਰੋ ਖਟ ਕਰਮ ਦਰੜਈਆ। ਮਨਮੁਖ ਪਾਖੰਡ ਭਰਮ ਵਿਗੂਤੇ, ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਨਾਵ ਪਾਰ ਬੁਡਈਆ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮੇ ਗਤ ਪਾਵੋ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤਰ ਨਾਮ ਦਰੜਈਆ। ਹਉਮੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚੈ ਪਰਮ ਪਦ ਪਈਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਵਰਨ ਰੂਪ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਜਿਤਲਾ ਵੈਸੇ ਕਰਮ ਕਮਈਆ। ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਜਾਏ ਵਾਜੈ, ਜਿਤ ਭਾਵੈ ਤਿਤ ਰਾਹੇ ਚਲਈਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਅਗਮਿਆ ਗੋਚਰ ਧਿਆਇਆ, ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਪੁਰਖਈਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਵਸਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਰ ਨਾਮ ਸਮਈਆ। ਜਨ ਕੀ ਟੇਕ ਹਰ ਨਾਮ ਟਕਈਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਤਰ ਲਾਗਾ ਜਾਵਾ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਦਰ ਲਈਆ। ਰਹਾਉ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਕਰਮ ਕੀ ਧਰਤੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੱਥ ਮੱਥ ਤਤ ਕਢਈਆ। ਲਾਲ ਜੇ ਵੇਹਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਭਾਂਡੈ ਭਾਉ ਪਵੈ ਤਿਤਈਆ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦਾਸ ਹੋਏ ਰਹੀਐ, ਜੋ ਜਨ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਿਜ ਪਈਆ। ਮਨ ਬੁੱਧ ਅਰਪ ਧਰੋ ਗੁਰੇ ਆਗੈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮੈਂ ਕਥ ਕਥਈਆ। ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਵੇ ਆਪੇ, ਇਹੋ ਮਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲਤ ਦਿਖਈਆ। ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਪਾਇਆ, ਅਗਨ ਬੁਝੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਈਆ। ਇਹੋ ਮਨ ਨਾਚੈ ਸਤਿਗੁਰੇ ਆਗੈ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਤੁਨ ਤੂਰ ਵਜਈਆ। ਹਰ ਹਰ ਉਸਤ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਰਖ ਰਖ ਚਰਨ ਹਰ ਤਾਲ ਪੂਰਈਆ। ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ ਰਤਾ ਮਨ ਗਾਵੈ, ਰਸ ਰਸਾਲ ਰਸ ਸ਼ਬਦ ਰਵਈਆ। ਨਿਜ ਕਰ ਧਾਰ ਚੋ ਐਤ ਨਿਰਮਲ, ਜਿਨ ਪੀਆ ਤਿਨਹੀ ਸੁਖ ਲਈਆ। ਮਨ ਅਠ ਕਰਮ ਕਰੈ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਜਿਉ ਬਾਲਕ ਬਾਲੂ ਕਰ ਉਸਰਈਆ। ਆਵੈ ਲਹਿਰ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਕੀ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਟੈ ਪਈਆ। ਹਰ ਸਰ ਸਾਗਰ ਹਰ ਹੈ ਆਪੇ, ਇਹੋ ਜਗ ਹੈ ਸਭ ਖੇਲ ਖਿਲਈਆ। ਜਿਉ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜਲ ਜਲੈ ਸਮਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਪ ਰਮਈਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚੈ ਮਨ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਤਨ ਪਸਮ ਦਰੜਈਆ। ਅਮਰ ਪਿੰਡ ਭਏ ਸਾਧੂ ਸੰਗ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋ ਮਿਟ ਗਈਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਧਸੂਦਨ ਮਾਧੋ। ਮੈਂ ਖਿਨ ਖਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਪਖਈਆ। ਰਹਾਓ ਤਜੈ ਗ੍ਰਸਤ ਭਇਆ ਬਨਵਾਸੀ, ਇੱਕ ਖਿਨ ਮਨੁਆ ਟਿਕੈ ਨਾ ਟਕਈਆ। ਧਾਵਤ ਤਾਏ ਤਦੇ ਕਰ ਆਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਸਾਧੂ ਸਰਨ ਪਵਈਆ। ਤੀਆਂ ਪੂਤ ਛੋੜ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਆਸਾ ਆਸਮਨ ਬਹੁਤ ਕਰਈਆ। ਆਸਾ ਆਸ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਾਸ ਸੁਖ ਲਈਆ। ਉਪਜੀ ਤਰਕ ਦਿਗੰਬਰ ਹੋਵਾ, ਮਨ ਦੈ ਦਿਸ ਚਲ ਚਲ ਗਮਨ ਕਰਈਆ।
पर भवन करै बुझै नहीं तृष्णा मिल संग साध दया कर लहिया आसन सिद्ध सिखै बहु तेरे मन मांगै रिद सिद्ध चेटक चेटकैया तृप्त संतोख मन शांत ना आवै मिल साधु तृप्त हर नाम सिद्ध पैया अंडज जेरज सेतज उत्पुज सब वर्ण रूप जी जंतो पैया साधु शरण भरै सो उबरै खत्री ब्राह्मण सूद वैसो चंडाल चंडैया नामा जय देव कबीर त्रिलोचन औ जात रविदास चमयार चमैया जो जो मिले साधु जन संगत धन धन्ना जट सहन मिलया हरदैया संत जना की हर पैज रखाई भगत वछल अंगीकार करैया नानक शरण परे जग जीवन हर हर कृपा तार रखैया बिलावल महला चौथा अंतर प्यास उठी प्रभ केरी सुन गुर बचन मन तीर लगैया मन की बिरथा मन ही जाने अवर के जाने को पीर परैया राम गुर मोहन मोहे मन लैया हाँ आकल बिकल पई गुर देखे हाँ लोट पोट होए पैया रहाओ हाँ निरखत फिराओ सब दे दिसंतर मैं प्रभ देखन को बहुत मन चैया मन तन काट दे गुरे आगे जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाई कोई आन संदेशा दे प्रभ केरा हृदय अंतर मन तन मीठ लगैया मस्त काट दो चरणा तल जो हर प्रभ मेले मेल मिलैया चल चल सखी हम प्रभ प्रबोधै गुण कामन कर हर प्रभ लैया भगत वछल उवा को नाम कहियत है शरण प्रभु तिस पाछै पैया खिमा सिंगार करे प्रभ खुशियां मन दीपक गुर ज्ञान बलैया रस रस भोग करे प्रभ मेरा हम तिस आगे जियो कट कट पैया हर हर हार कंठ है बनया मन मोती चूर बड गहन गहनैया हर हर सरदा सेज विशाई प्रभ छोड़ ना सके बहुत मन पैया कह प्रभ अवर अवर किश की जय सब बाद सिंगार फोगट फोगटैया कियो सिंगार मिलन कह ताई प्रभ लियो सुहागन थूक मुख पैया हम चेरी तू अगम गुसाई क्या हम करै तेरे वस पैया दयाधीन करो रख ले वो नानक हर गुर शरण समैया बिलावल महला चौथा मैं मंतन प्रेम अगम ठाकर का खिन खिन सरदा मन बहुत उठैया गुर देखे सरदा मन पूरी जो चात्रक प्रयो प्रयो बूंद मुख पैया मिल मिल सखी हर कथा सुनैया सतगुर दया करे प्रभ मेले मैं तिस आगे सिर कट कट पैया रहाओ रोम रोम मंतन एक बेदन मैं प्रभ देखे बिन नींद ना पैया वैदिक नाटक देख भुलाने मैं हृदय मंतन प्रेम पीर लगैया हौ खिन पल रह ना सको बिन प्रीतम ज्यो बिन अमल अमली मर गैया जिन को प्यास होए प्रभ केरी तिने अवर ना पावै बिन हर को दुइया कोई आन आन मेरा प्रभु मिलावै हौ तिस विटो बल बल घूम गैया अनेक जन्म के विछड़े जन मेले जा सत सत सतगुर शरण पवैया सेज एक एको प्रभ ठाकर महल ना पावै मनमुख परमैया गुर गुर कर तो शरण जे आवै प्रभ आए मिले।

जन्मया पिता ताहे क्या नाम सदैया, पूर्व जन्म भगत कर आए। गुर हर हर हर हर भगत जमैया, भगत भगत करते हर पाया। जा हर हर हर हर नाम समैया, प्रभ आन आन मेहंदी पीसाई। आपे कोल कोल अंग लैया, जिनको ठाकर कृपा तारी। बहां पकड़ नानक कढ लैया। राग बिलावल महला पंजवा, अष्टपदी घर बारवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। उपमा जात ना कही मेरे प्रभ की, उपमा जात ना कही तज आन शरण गही रहाओ। प्रभ चरण कमलियाधार, हौ जाऊं सद बलिहार। मन प्रीत लागी ताहे, तज आन कत ना जाहे। हर नाम रसना कहन, मल पाप कल मल दहन। चढ़ नाव संत उधार, पैतरे सागर पार। मन डोर प्रेम प्रीत, ए संत निर्मल रीत। तज गए पाप बेकार, हर मिले प्रभ निरंकार। प्रभ पेखी है बिस्माद, चख आनंद पूर्ण साध। नह डोलिए इतियूत, प्रभ बसे हर हर चीत। ते नाहे नरक निवास, नित सिमर प्रभ गुणतास। ते जमना पेखे नैन, सुन मोहे अनहत बैन। हर शरण सूर गोपाल, प्रभ भगत वस दयाल। हर निगम लह ना पेव, नित करै मुन जन सेव। दुख दीन दर्द निवार, जा की महा बिखड़ी कार। ता की मित ना जाने कोए, जल थल महियल सोए। कर बंदना लख बार, थक परयो प्रभ दरबार। प्रभ करो साधु तूर, नानक मनसा पूर। बिलावल महला पंजवा, प्रभ जन्म मरण निवार। हार परयो द्वार, गह चरण साधु संग। मन मिष्ट हर हर रंग, कर दयाले हो लड़ लाए। नानका नाम ते आए, दीना नाह दयाल मेरे स्वामी। दीना नाह दयाल, जाचो संतरवाल रहाओ। संसार बिखिया कूप, तम अज्ञान मोहत कूप। गह पूजा प्रभ जी ले हो, हर नाम अपना दे हो। प्रभ तुझ बिना नहीं ठाओ, नानका बलबल जाओ। लोभ मोहे बांधी दे, बिन भजन होवत खे। जम दूत महापयान, चित गुप्त कर मैं जान। दिन रैन साख सुनाए, नानका हर शरणाए। पै पंजना मुरार, कर दया पत उदार। मेरे दोह गने ना जाहे, हर बिना कतै सुमाहे। गहे ओट चितवी नाथ, नानका दे रख हाथ। हर गुण दे गोपाल, सर्व कट प्रतपाल। मन प्रीत दर्शन प्यास, गोविंद पूर्ण आस। एक निमक रहन ना जाए, वड़ भाग नानक पाए। प्रभ तुझ बिना नहीं होर, मन प्रीत चंद चकोर। जो मीन जल सोहेत, अल कमल पहना पेत। ज्यो चकवी सूरज आस, नानक चरण प्यास। ज्यो तरन परत प्राण, ज्यो लोभिए धन दान। ज्यो दूध जलै संजोग, ज्यो महा खुदियारथ भोग। ज्यो मात पूतै हेत, हर सिमर नानक नेत। ज्यो दीप पतन पतंग, ज्यो चोर हिरत निसंग। मैंगलै का मैं बंद, ज्यो ग्रस्त बिखई तंद। ज्यो जुआर बिसन ना जाए, हर नानके हो मन लाए। कुरंक ना दैने हो, चात्रक चाहत में हो। जन जीवना सतसंग, गोविंद भजना रंग। रसना बखाने नाम, नानक दर्शन दान। गुण गाए सुन लिख दे, सो सर्व फल हर ले। कुल समूह कर तो दार, संसार उत्तर सपार। हर चरण बोस्तता है, मिल साध संग जस गाहे। हर पैज रखे मुरार,

पद एक में एक अंकार निराला, हमारा जोनी जात ना जाला, आगमा गोचर रूप ना रेखिया, खोइत खोइत कटकट देखिया, जो देख देखावे तिसको बल जाई, गुर प्रसाद परम पद पाई, क्या जब जापो बिन जगदीसै, गुर के शब्द महल कर दीसै रहाओ। दूजे पाए लगे पछताने, जम दर बांधे आवन जाने, क्या ले आवे क्या ले जाहे, सिर जम काल से चोटा खाहे, बिन गुर शब्द ना छूट सकोए, पाखंड कीने मुक्त ना होए, आपे सच किया कर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ विछोड़, धरत आकाश किए बैसन को थाओ, रात दिनंत किए पौ पहाओ, जिन किए कर वेखण हारा, अवर ना दूजा सिरजन हारा, तृतीया ब्रह्मा विष्णु महेशा, देवी देवो पाए वेसा, ज्योति जाति गणत ना आवै, जिन साजी सो कीमत पावै, कीमत पाए रहा भरपूर, किस नेड़े किस आखां दूर, चौथे उपाए चारे बेदा, खानी चारे बाणी भेदा, अष्ट दशा खड़की ने उपाए, सो बुझे जिस्या बुझाए, तीन समावै चौथे वासा, प्रणवत नानक हम ताके दासा, पंचमी पंच भूत बेताला, आपा गोचर पुरख निराला, एक ब्रह्म भूखे मोह प्यासे, एक रस चाख शब्द तृप्तासे, एक रंगराते एक मरतूर, एक दर कर सच देख दूर, झूठे को नाही पत नाओ, कबो न सूचा काला काओ, पिंजर पंखी बंदिया कोए, शेरी परमै मुक्त न होए, तव छूटे जा खसम छड़ाए, गुरमत मेले भगत रड़ाए, खष्टी खट दर्शन प्रभ साजे, अनहद शब्द निराला वाजे, जे प्रभ पावै ता महल बुलावै, शब्दे भेदे तव पद पावै, कर कर वेस खपै जल जावै, साचे साचे साज समावै, सप्तमी सत संतोख शरीर, सात समुंद भरे निर्मल नीर, मज्जन सील सचरद विचार, गुर कै शब्द पावै सब पार, मन साचा मुख साचो पाए, सचमी साने ठाक ना पाए, अष्टमी अष्ट सिद्ध बुद्ध साधै, सच नेह केवल कर्म आराधै, पौन पानी अग्नि बिसराओ, तही निरंजन साचो नाओ, तिसमें मनुआ रह लिवलाए, प्रणवत नानक काल ना खाए, नाओ नौमी नवे नाथ नव खंडा, घट घट नाथ महा बलवंडा, आई पूता एहो जग सारा, प्रभ आदेश याद रखवारा, आज जुगा दी है पी होग, ओह परंपर करण है जोग, दसवीं नामदान इशनान, अंदन मज्जन सच्चा गुण ज्ञान, सच मैल न लागे भ्रम पौ पागे, बिलम न टूट सका चैता गै, ज्यो तागा जग एवै जानो, अस्त्र चा अस्त्र जी साच रंग माणो, एकादशी करदै वसावै, हिंसा ममता मोह चुकावै, फल पावै ब्रत आत्म चीने, पाखंड राज तत् नहीं बीने, निर्मल निराहार नेह केवल, सूचे साचे ना लागे मल, जै देखो तहे को एका, होर जियो पाए वेको वेका, फलो हार किए फल जाए, रस कस खाए साध गवाए, कूड़े लालच लपटे लपटाए, छूटे गुरमुख साच कमाए, द्वादश मुंद्रा मन अवदूता, अहनस जागे कवे ना सूता, जागत जाग रह लिवलाए, गुर परचय तस खाल ना खाए, अतीत पहे मारे बैराई, प्रणवत नानक तैं लिवलाई, द्वादशी दया दान कर जाने, बाहर जातो पीतर आने, बरती बरत रह नेकाम, अजपा जाप जपै मुख नाम।
तीन भवन मैं एको जाना सब सुत संयम साच पछाण है। तेर सतर वर समुद्र किनार है अमृत मूल शिखर लिवतार है। डर डर मरे ना बूढ़े कोए निडर बूढ़ मरे पत खोए। डर मैं घर घर मैं डर जाना तख्त निवास सच मन पाण है। चौदस चौथे थावे लय पावे राजस तामस सतकाल समावे। ससियर कै कर सूर समावे जो जूत की कीमत पावे। चौदस पवन पताल समाए खंड ब्रह्मंड रहा लिवलाए। अमावस्या चंद गुप्त गहनार बुझो ज्ञानी शब्द विचार। ससियर गगन जोत हो लोई कर कर वेखै करता सोई। गुरते दिसै सो तिस ही माहे मनमुख पूले आवे जाए। घर दर थाप थिरथान सुहावे आप पछाणे जां सतगुर पावे। जह आसा तह बिनस बिनासा फूटै खप्पर दुबदा मनसा। ममता जाल ते रह उदासा प्रणवत नानक हमता के दासा। बिलावल महला तीजा वार सत कर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आदित वार आद पुरख है सोई आपे वरतै वरना कोई। ओत पोत जग रहा परोई आपे करता करे सो होई। नाम रते सदा सुख होई गुरमुख विरला बूझै कोई। हृदय जपनी जपो गुणतासा हर अगम्या गोचर परंपर स्वामी। जन पग लग त्यावो होए दासन दासा रहाओ। सोमवार सच रहा समाए तिसकी कीमत कही ना जाए। आख आख रहे सब लिवलाए जिस देवै तिस पल्लै पाए। अगमा गोचर लखिया ना जाए गुर कै सबधा रहा समाए। मंगल माया मोह उपाया आपे सिर सिर तंदे लाया। आप बुझाए सोई बूझे गुर कै शब्द दर कर सूझे। प्रेम भगत करे लिवलाए हम मैं ममता शब्द जलाए। बुधवार आपे बुध सार गुरमुख करनी शब्द विचार। नाम रते मन निर्मल होए हर गुण गावे हम मैं मल खोए। दर सच्चे सद सोभा पाए नाम रते गुर शब्द सुहाए। लाहा नाम पाए गुरुद्वार आपे देवै देवनहार। जो देवै तिसको बल जाइए गुर प्रसादी आप गवाइए। नानक नाम रखो और तार देवनहारे कौ जयकार। वीरवार वीर परम पुलाए प्रेत पूत सब दूजै लाए। आप उपाए कर वेखै वेका सबना करते तेरी टेका। जी जंत तेरी शरणाई सो मिले जिस लह मिलाई। शुक्रवार प्रवरया समाई आप यो पाए सब कीमत पाई। गुरमुख होवै सो करै विचार सच संयम करनी है कार। वर्त नेम निता प्रत पूजा बिन बूझे सब पाओ है दूजा। शनिश्चरवार सौन शास्त्र विचार हम मैं मेरा परमै संसार। मनमुख अंधा दूजे पाए जमदर बाधा चोटा खाए। गुर प्रसादी सदा सुख पाए सच करनी साच लिवलाए। सतगुर सेवै सेवड पागी हम मैं महार सच लिवलागी। तेरा रंगराते सह सुभाए तू सुखदाता लह मिलाए। एक स्ते दूजा नहीं कोए गुरमुख बूझै सो जी होए। पंद्रह थित्ती तैं सत वार महाती आवै वार वार। दिन सरैण तवै संसार आवा गौण किया करतार। निहचल साच रहया कल तार नानक गुरमुख बूझै को शब्द विचार। बिलावल महला तीजा आद पुरख आपे सिरठ साजे। जी जंत माया मोह पाजे दूजे पाए परपंच लागे। आवै जाए मरै आ भागे
सतगुर भेटे सो जी पाए, परपंच चूकै सच समाए। जा कै मस्तक लिखिया लेख, ता कै मन वसिया प्रभ एक रहाओ। सृष्टि उपाए आपे सब वेखै, कोई न मिटै तेरै लिखै। सिद्ध साधक जे को कह कहाए, परमे पूला आवै जाए। सतगुर सेवै सो जन बूजै, हौ मैं मारे तां दर सूजै। एक स्ते सब दूजा हुआ, एको वरतै अवर न बिया। दूजे ते जे एको जाणै, गुर कै शब्द हर दर निसाणै। सतगुर भेटे तां एको पाए, विचों दूजा ठाक रहाए। जिसदा साहिब डाढ़ा होए, तिसनों मार ना सकै कोए। साहिब की सेवक रह सरनाई, आपे बख्शे दे वड़ियाई। तिसते उपर नाही कोए, कौन डरे डर किसका होए। गुरमति सांत वसै शरीर, सब चीन फिर लगे ना पीर। आवै ना जाए ना दुख पाए, ना मेरा ते सहि समाए। नानक गुरमुख वेखै हदूर, मेरा प्रभ सद रहया भरपूर। एक सेवक एक भरम भुलाए, आपे करे हर आप कराए। एको वरतै अवर ना कोए, मन रोस कीजै जे दूजा होए। सतगुर सेवे करनी सारी, दर साचै साचे विचारी। थिती वार सब शब्द सुहाए, सतगुर सेवे तां फल पाए। थिती वार सब आवै जाहे, गुर शब्द निह चलो सदा सच समाहे। थिती वार तां जां सच राते, बिना मैं सब पर मैं काचे। मनमुख मरे मर बिगती जाहे, एक न चेतै दूजै लोभाहे। अचेत पिंडी अज्ञान।

ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिया एक एक वखाणिया आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जानिया आप करता आप पहुता आप कारण किया बिनवंत नानक से ही जाने जिन्नी हर रस पिया। बिलावल महला पंजवा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सखी आओ सखी वस आओ सखी असी फिरका मंगल गावे तजमान सखी माते अपने प्रीतम पावे तजमान मोह विका।

है। गृह बनै तीरै बर्त पूजा, बाट काटै जोहनी, नानक पयम पै दया तारो, मैं नाम अंदरे टोहनी। मोह नाथ प्रे नाथ, ज्यो जानो त्यों रखो, चतराई मोह नाए रिझावो कै मुखो। नह चतर सुगर सुजान बेती, मोहे निर्गुण गुण नहीं। नह रूप धूप ना नैण बंके, जय पावै तै रख तुही। जय जय जय अंपै सगल जाको, करना पात गत के ने लखो। नानक पयंपै सेव सेवक, ज्यो जानो त्यों मोहे रखो। मोहे मछली तुम नीर, तुझ बिन क्यों सरै। मोहे चात्रक तुम बूंद, तृप्तो मुख परै। मुख परै हरै प्यास मेरी, जी हिया प्राण पते। लाडले लाड लड़ाए सामे, मिल हमारी होए गते। चीत चितवो मिटांधारे, ज्यों आस चकवी दिन चरै। नानक पयंपै प्रे संग मेली, मछली नीर ना विसरै। तन तन हमारे भाग, कर आया फिर मेरा। सोहे बंक द्वार सगला बनहरा, हर हरा स्वामी सुखै गामी, अंत मंगल रसकणा। नवल नवतन नाहो बाला, कवन रसना गुणपणा। मेरी सेज सोही देख मोही, सगल सहसा दुखरा। नानक पयंपै मेरी आस पूरी, मिले स्वामी अपरंपरा। बिलावल महला पंजवा, शांत मंगल एक ओंकार। सतगुर प्रसाद सलोक सुंदर सांत, दयाल प्रभ सर्व सुखा निध पियो। सुख सागर प्रपेटे है।

एको ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद। राग गोंड चौप दे महला चौथा कर पहला। जे मन चित आस रखे हरि उपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई। हर जाने सब किश जो जिए वरतै प्रभ कालिया किसै का एक तिल ना गवाई। हर जिस की आस की जय मन मेरे जो सब मैं स्वामी रह समाई। मेरे मन आसा कर जगदीश गुसाई जो बिन हर आस अवर काहू की जय। साने फल आस सब बिरथी जाई रहाओ जो दिसे माया मोह कुटंब सब मत तिसकी आस लग जन्म गवाई। इनके किश हाथ नहीं कहां करे एह बपड़े इनका वाहया कश ना वसाई। मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की जो तुझ तारे तेरा कुटंब सब छड़ाई। जे किश आस अवर करह पर मित्री मत तू जाने तेरे कितै कम आई। एह आस पर मित्री पाओ दूजा है खिर मैं झूठ बिनस सब जाई। मेरे मन आसा कर हर प्रीतम साचे की जो तेरा कालिया सब थाए पाई। आसा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी जैसी तू आस करावे तैसी को आस कराई। किश किसी के हाथ नहीं मेरे स्वामी ऐसी मेरे सतगुरु बुझ बुझाई। जन नानकी आस तू जाने हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। गोंड महला चौथा। ऐसा हर सेवी है नित्याई है जो खिन मैं किले विखो सब करे बिनासा। जे हर त्याग अवर की आस की जय ता हर नेफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवो सुखदाता स्वामी जित सेव है सब भूख लहसा। मेरे मन हरि उपर की जय परवासा जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी। हरि अपनी पैज रखे जन दासा रहाओ। जे अपनी बिरथा कहो अवरा पहे ताया गए अपनी बिरथा बह बहुत कटासा। अपनी बिरथा कहो हरि अपने स्वामी पहे जो तुमरे दुख तत्काल कटासा। सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पह कहिए अवरा पह कहे मन लाज मरासा। जो संसार है के कुटंब मित्र भाई दिसे मन मेरे ते सब अपने स्वाय मिलासा। जे

ज्योतुत उपकरै दुख सुखासा, तिसका प्रवासा क्योंकि जय मन मेरे जोवंती अवसर रखना सुकासा। हर जप मंत गुरु उपदेश लै जापो, तन अंत छडाए जिन हर प्रीत चितासा। जन नानक अंदर नाम जपो हर संतो, एहो छूटन का साचा प्रवासा। गोंड महला चौथा, हर सिमरत सदा होए आनंद, सुख अंतर सांत शीतल मन अपना। जैसे सगत सूर बहु जलता, गुर सस देखे लह जाए सब तपना। मेरे माने अंदन त्याए नाम हर जपना, जहां कहां तुझ राखै सब ठाई। सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाओ, जा मैं सब निदान। सो हर जप मन मेरे गुरमुख खोज लो हर तना, जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी। तिनके चरण मलो हर दसना, शब्द पछाण राम रस पावो। ओ उत्तम संत भयो बड़ बड़ना, ते जन की वडियाई हर आ वधाई। ओ कटै ना किसै की कटाई, एक तिल तिल तिल ना। जिस ते सुख पावे मन मेरे, सो सदा त्याय नित कर जुरना। जन नानक हर दान एक दीजै, नित बसै हृदय हरि मोहि चरना। गुण महला चौथा, जितने साहा पातशाह उमराव, सिकदार चौधरी सब मिथिया झूठ पाव दूजा जान। हर अबनासी सदा थर नेह चलो, तिस मेरे मन भज परवान। मेरे मन नाम हरि पज सदा दीबान, जो हर महल पावै गुरबचनी, तिस जेवड अवर नाही किसै दातान। रहाओ जितने तनवंत कुलवंत मिलखवंत, दिसै मन मेरे सब बिनस जाहे, जो रंग कुसुंभ कचान। हर सत निरंजन सदा सेव मन मेरे, जित हर दरगै पावै तू मान। ब्राह्मण खत्री सूद वैस, चार वर्ण चार आश्रम है। जो हर त्यावै सो प्रधान, ज्यों चंदन निकट वसै हिरड बपड़ा। त्यों सत संगत

ओट, नाम जपत मिटै पाप कोट, रास दी हरे को नाम, मन का इष्ट गुर संग ध्यान रहाओ।

जन्म मरण की त्रास मिटाई, गुरपुरे की बेअंत वडाई, गुरप्रसाद ऊर्द कमल विगास, अंधकार मैं भया प्रगास, जिन किया सो गुर ते जानिया, गुर कृपा ते मुग्ध मन मानिया, गुर करता गुर करने जोग, गुर परमेश्वर है पी होग, कहो नानक प्रभ यह जनाई, बिन गुर मुक्त ना पाईए भाई, गोंड महला पंजवा, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर की टेक रहो दिन रात, जा की कोई न मिट है दात, गुर परमेश्वर एको जान, ज्योतिष पावे सो प्रवान, रहाओ गुर चरणी जा का मन लागे, दुख दर्द प्रमता का भागे, गुर की सेवा पाए मान, गुर ऊपर सदा कुर्बान, गुर का दर्शन देख निहाल, गुर के सेवक की पूर्ण काल, गुर के सेवक को दुख ना व्यापै, गुर का सेवक दह दे जापै, गुर की महिमा कथन ना जाए, पार ब्रह्म गुर आसमाए, कहो नानक जाके पूरे भाग, गुर चरणी ता का मन लाग, गोंड महला पंजवा, गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद, गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत, गुर मेरा देओ अलाखा पेओ, सर पूचरण गुर सेओ, गुर बिन अवर नाही मैं थाओ, अंधन जपो गुरु गुर नाओ, रहाओ गुर मेरा ज्ञान, गुर दै ध्यान, गुर गोपाल पुरख भगवान, गुर की शरण रहो कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर बोइथ तारे पवपार, गुर सेवा जमते छुटकार, अंधकार मैं गुरमंत्र उजारा, गुर कै संग सगल निस्तारा, गुर पूरा पाईए वडभागी, गुर की सेवा दुख ना लागी, गुर का शब्द ना मेटै कोए, गुर नानक नानक हर सोए, गोंड महला पंजवा, राम राम शंकर व्यवहार, राम राम राम प्राण आधार, राम राम राम कीर्तन गाए, रमत राम सबरे उसमाए, संत जना मिन बोलो राम, सब ते निर्मल पूर्ण काम, रहाओ राम राम तन संच पंडार, राम राम राम कार्याहार, राम राम विसर नहीं जाए, कर कृपा गुर दिया बताए, राम राम राम सदा सहाय, राम राम राम लिवलाए, राम राम जप निर्मल पै, जन्म जन्म के किल बिख गए, रमत राम जन्म मरण निवारे, उचरत राम पै पार उतारे, सब ते ऊच राम प्रगास, निस्बासर जप नानक दास, गोंड महला पंजवा, उनको खसम कीनी ठाक हारे, दास संगते मार बेदारे, गोविंद भगत का महल ना पाया, राम जना मिल मंगल गाया, सगल श्रेष्ठ के पंच सिकदार, राम भगत के पानी हार, रहाओ।

सा जना पग मल मल धोवे पंच पूत जने कमाए उत्पुज खेल कर जगत व्याए तीन गुणा कै संग रच रसे इनको छोड़ ऊपर जन बसे कर कृपा जन लिए छडाए जिसके से तिन रखे हटाए कहो नानक भगत प्रभ सार बिन भगती सब होए खुआर। गोंड महला पंजवा कल कलेस मिटे हर नाए दुख बिन से सुख की नो ठाओ जप जप अमृत नाम अगाए संत प्रसाद सगल फल पाए राम जपत जन पार परे जन्म जन्म के पाप हरे रहाओ गुर के चरण हृदय उतारे अग्न सागर ते उतरे पारे जन्म मरण सब मिटी उपाद प्रभसो लागी सह समाद थान थनंतरे को स्वामी सगल कटा का अंतर जामी कर कृपा जा कौ मत दे आठ पहर प्रभ का नाउ ले जाकै अंतर वसै प्रभ आप ताकै हृदय होए प्रगास भगत पाए हर कीर्तन करिए जप पार ब्रह्म नानक निस्तरिए। गोंड महला पंजवा गुर के चरण कमल नमस्कार काम क्रोध स्तंते मार होए रही है सगल की रीना काट काट रमैया सह मैं चीना इन बिद्रमहो गोपाल गोबिंद तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद रहाओ। आठ पैर हर के गुण गाओ जी प्राण को है सुहाओ ताजा मान जान प्रभ संग साध प्रसाद हर से मन रंग जिन तू किया तिसको जान आगे दरगे पावे मान मन तन निर्मल होए निहाल रसना नाम जपत गोपाल कर कृपा मेरे दीन दयाला साधु की मन मंगेर वाला हो दयाल देहो प्रभदान नानक जप जीवे प्रभ नाम। गोंड महला पंजवा धूप दीप सेवा गोपाल अनक बार बंदन करतार प्रभ की शरण गही सब त्याग गुर सो प्रसन्न पय वड़ भाग आठ पहर गाइए गोविंद तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद रहाओ। हर गुण रमत पय आनंद पार ब्रह्म पूर्ण बगसंद कर कृपा जन सेवा लाए जन्म मरण दुख मेट मिलाए कर्म धर्म हो तत् ज्ञान साध संग जपिए हर नाम। सागर तर बोथ प्रभ चरण अंतर जामी प्रभ कारण करण राख लिए अपनी कृपा तार पंच दूत भागे बिकराल जुवे जन्म न कबू हार नानक आयां किया करतार। गोंड महला पंजवा कर कृपा सुख अंत करे बालक राख लिए गुरदेव प्रभ कृपाल दयाल गोबिंद जी जंत सगले बख्शिंद तेरी शरण प्रभ दीन दयाल पार ब्रह्म जप सदा निहाल रहाओ। प्रभ दयाल दूसर कोई नाही घट घट अंतर सर्व समाही अपने दास का हलत पलत सवार है पतत पावन प्रभ बिर तुमार है औखद कोट सिमर गोविंद तंत मंत पजी है भगवंत रोग सोग मिटे प्रभ त्याए मन बांशत पूर्ण फल पाए करण कारण समरथ दयार सर्व निदान महा विचार नानक बख्श दिए प्रभ आप सदा सदा एको हर जाप। गोंड महला पंजवा हर हर नाम जपो मेरे मीत निर्मल होए तुम्हारा चीत मन तन की सब मिटे बिलाए दुख अंधेरा सगला जाए हर गुण गावत तरिए संसार वडभागी पाइए पुरख्या पार रहाओ। जो जन करे कीर्तन गोपाल तिसको पोहे ना सके जमकाल जग में आया सो प्रमाण गुरमुख अपना खसम पछाण हर गुण गावे संत प्रसाद काम क्रोध मिटे उन्माद सदा हजूर जान भगवंत पूरे गुर का पूर्ण मंत हर तन खाट किए पंडार मिल सतगुरु।

सिमरत शास्त्र वेद पुराण पार ब्रह्म का करै वख्याण। जोगी जति बैसनो रामदास मित नाही।

मोहे निर्गुण गुण किशु ना है, सर्व निधान तेरी दृष्टि माहे। नानक दीन जाचे तेरी सेव, कर कृपा दीजे गुरुदेव। गोंड महला।

नारायण सद सद बख्शेंद, नारायण कीने सुख आनंद, नारायण प्रगट कीनो प्रताप, नारायण संत को माई बाप, नारायण साध संग नारायण।

हाँ, जा कौ राख राखनहार, तिसका अंकर निरंकार। रहाओ मात गर्व में अगन्ना जो है, काम क्रोध लोमो नापो है। साध संग जप निरंकार, निंद कै मोह लागे शार। राम कवचो दास का सन्ना हो, दूत दुष्ट तिसको हत नाहे। जो जो गर्व करे सो जाए, गरीब दास की प्रभ शरणाए। जो जो शरण पया हर राय, सो दास रखिया अपने कंठ लाए। जे को बहुत करे अहंकार, ओ खिन मैं रुलता खाकू नाल। है पी साचा हो बनहार, उस दास दा जाई बलिहार। अपने दास रखे कृपा तार, नानके प्रभ प्राण आधार। गोंड महला पंजवा, आचर्य कथा महानूप। प्रात्मा पार ब्रह्म का रूप रहाओ। ना हो बूढ़ा ना हो बाला, ना इस दुख नहीं जमजाला। ना हो बिनसे ना हो जाए, आज गादी रहा सुमाए। ना इस पुसन नहीं है सीत, ना इस दुश्मन ना इस मीत। ना इस अर्ख नहीं है सोग, सब किश इसका यो करने जोग। ना इस बाप नहीं है समाया, यो परंपर होता आया। पाप उनका इसलिए अपना लाग गए, कटकट अंतर सद ही जग गए। तीन गुणा एक सकतो पाया, महामाया ता की है छाया। अशाला शेदा भेद दयाल, दीन दयाल सदा कृपाल। ता की गतमित कशु ना पाए, नानक ता कह बल बल जाए। गोंड महला पंजवा, संतन कह बलहार है जाओ। संतन कह संग राम गुण गाओ। संत प्रसाद किलवख सब गए, संत शरण वड पागी पए। राम जपत कछ विघ्न ना लागे, राम जपत कछ विघ्न ना व्यापै। गुर प्रसाद अपना प्रभ जापै रहाओ। पार ब्रह्म जब होए दयाल, साधु जन की करै लवाल। काम क्रोध इस तंते जाए, राम रतन वसै मन आए। सफल जन्म ताका प्रवाण, पार ब्रह्म निकट कर जान। पाए भगत प्रभ कीर्तन लागे, जन्म जन्म का सोया जागे। चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रहो सच व्यापार। दास जना की मनसा पूर, नानक सुख पावे जन तुहूर। राग

रे महावत तुझ दारो काट, इसे तुरावो कालो साट। हस्त ना तोरै तरह त्यान, वा कर दे बसै भगवान। क्या अपराध संत है कीना, बांध पोट कुंचर कौ दीना। कुंचर पोट लै लै नमस्कार, बूझी नहीं काजी अंधियार। तीन बार पतिया पर लीना, मन कठोर अजहू ना पतीना। कह कबीर हमरा गोबिंद, चौथे पद मैं जन की जिंद। गोंड नायो मानस नायो देओ, नायो जति कहा वैसे ओ। ना यो जोगी ना अवधूता, ना समाय ना काहू पूता। या मंदिर मैं कौन बसाई, ताका अंत ना को उपाई रहाओ। ना यो गृही ना यो दासी, ना यो राजना पीख मगासी। ना इस पिंड ना

देख इस मरते कहो जे कहो रोवे जो रोवे सोई पत खोवे गुर प्रसाद मैं डगरो पाया जीवन मरण दो मिटवाया कहो कबीर एहो राम की अंश जस कागत पर मिटे ना मंस गोंड टूटे तागे निखुटी पान द्वार ऊपर चिलकावे कान कूच बिचारे फूए फाल या मुंडिया सरचट बोकाल एहो मुंडिया सगलो दरब खोई आवत जात नागसर हो।

कहे वाकाय अंतर नहीं संतोख, बिन सोहागन लागे दोख। तन सोहागन महापवीत, तपेत पीसर डोले चीत। रहाओ सोहागन कृपन की पूती, सेवक ताज जगत से सूती। साधु कै ठांडी दरबार, शरण तेरी मोको निस्तार। सोहागन है अत सुंदरी, पग नेवर शनक शन हरी। जव लग प्राण तव लग संगे, नाहे ता चली बेग उठ नंगे। सोहागन पवन त्रै लिया, दस अठ पुराण तीर्थ रस किया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बेदे, बड़े भूपत राजे है शेदे। सोहागन उर्वार ना पार, पांच नारद कै संग बेदवार। पांच नारद के मिटवे फूटे, कहो कबीर गुर कृपा छूटे गोंड। जैसे मंदिर में बलहर ना ठहरै, ना बिना कैसे पार उतरै। कुंभ बिना जल ना टीकावै, साधु बिन ऐसे अवगत जावै। रहा जारो तिसे जो राम ना चेतै, तन मन रमत रह मैं खेतै। रहाओ जैसे हलहर बिना जिमी नहीं बोई है, सूत बिना कैसे मणि परोई है। कुंडी बिन क्या गंठ चढ़ाई है, साधु बिन तैसे अवगत जाई है। जैसे मात पिता बिन बाल ना होई, बिंब बिना कैसे कपड़े धोई। कोर बिना कैसे असवार, साधु बिन नाही दरबार। जैसे बाजे बिन नहीं लीजे फेरी, खसम दुहागन ताज ओहेरी। कह कबीर एक कह कर करना, गुरमुख होए बहुर नहीं मरना। गोंड कूटन सोए जो मन को कूटे, मन कूटे तो जमते छूटे। कुट कुट मन कसवटी लावे, सो कूटन मुक्त बहु पावे। कूटन किसे कहो संसार, सगल बोलन के माहे विचार। रहाओ नाचन सोए जो मन स्यो नाचे, झूठ ना पतिए पर चै साचे। इस मन आगे पूरे ताल, इस नाचन के मन रखवाल। बजारी सो जो बजार है सो दे, पांच पलीते को प्रबोद। नव नायक की भक्त पछाने, सो बाजारी हम गुरमाने। तस्कर सोए जे तात ना करे, इंद्री के जतन नाम उचरे। कहो कबीर हम ऐसे लखनो, धन गुरुदेव अतरूप बिचखनो। गोंड

नर ते सुर होए जात निमुख मैं सतगुर बुद्ध सिखलाई नर ते उपज सुरग कौ जीते ओ सो अवखद मैं पाई जहां जहां तू नारद टेकै नैकट काव मोहे तेरे नाम अवलंब बहुत जन उदरे नामे की निजमत एहे गोंड मोहे लागती ताला बेली बछरे बिन गाय अकेली पानिया बिन मीन तलफै ऐसे राम नामा बिन बापरो नामा रहाओ जैसे गाय का बाचा शूठला तन थन चोखता माखन कूटला नाम देव नारायण पाया गुर भेटता लख लखाया जैसे बिखै हेत पर नारी ऐसे नामे प्रीत मुरारी जैसे ताप ते निर्मल कामा तैसे राम नामा बिन बापरो नामा राग गोंड बाणी नाम देव जियो की कर दूजा एको अंकार सदगुर प्रसाद हर हर करत मिटे सब परमा हर को नाम लै उत्तम धर्मा हर हर करत जात कुल हरी सो हर अंधले की लकरी हर ए नमस्ते हर ए नमः हर हर कर तो नहीं दुख जमाए रहाओ हर हर नक्श हरे पर

कपटै परी सिमरन द्रौपद सुत उदरी गौतम सती सला निस्तरी केसी कंस मथन जिनकिया जी दान काली कौदिया प्रणवै नामा ऐसो हरी जास जपद पै अपदा तरी गोंड पैरो पूत सीतला तावै खर बाहन ओ शारो डावै हाँ तो एक

बर्द चढ़े डौरू टमकावे, महामाई की पूजा करै, नरसे नर होए अवतरै। तू कहत ही अद भवानी, मूत की बरिया कहां छपानी। गुरमत राम नाम गहो मीता, प्रणवै नामा यो कह गीता।

मारिया था। पांडे तुमरा रामचंद सो पियावत देखा था। रावण सेती सरबर होई कर की जो गवाई थी। हिंदू अन्ना तुर्कु काना दोहा ते ज्ञानी सियाना। हिंदू पूजे देहोरा मुसलमान मसीत नामे सोई सेव्या। जय देहोरा नाम सीत। रागोंड बाणी रविदास जियो की कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मुकंद मुकंद जपो संसार बिन मुकंद तन होए अवहार। सोई मुकंद मुक्त का दाता सोई मुकंद हमरा पित माता।

जप मुकंद मस्तक निशानं, सेव मुकंद करै बैरागी सोई मुकंद दुर्बल तन लादी, एक मुकंद करै उपकार हमरा कहां करै संसार। मेटी जात हुए दरबार तुही मुकंद जोग जुगतार, उपजो ज्ञान हुआ प्रगास कर कृपा लीने कीटदास। कहो रविदास अब तृष्णा चुकी, जप मुकंद सेवा ताहू की। गोंड जे हो 68 तीर्थ नावे, जे हो द्वादश शिला पूजावै, जे हो कूप तटा देवावै करै निंद सब बिरथा जावै। साध का निंद

करने दो कमने नहीं गुना। जे हो अनक प्रसाद करावे भूम दान शोभा मंडप पावे। अपना बिगार बिराना संड करै निंद बोजो नी हंड। निंदा कहाँ करो संसारा निंदक का प्रगट पहारा। निंदक सोध साध बिचारिया कहो रविदास पापी नरक सिधारिया। जोड़ राम कली।

काल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद। कोई पढ़ता सहसा करता कोई कड़े पड़े पुराना, कोई नाम जपे जप माली लागे तसै त्याना। अब ही कभी किशु ना जाना तेरा एको नाम पछाना। ना जाना हरे मेरी कवन गते, हम मूर्ख ज्ञान शरण प्रभ तेरी, कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाओ।

मरण लिखाए मंडल में आए जीवन साजै माई। एक चले हम देखे स्वामी पाहे बलंती आई। ना किसी का मीत ना किसी का भाई, ना किसे बाप ना माई। प्रणवत नानक जे तू देवे अंते हुए सखाई। राम कली महला पहला, सर्ब जोत तेरी पसर रही। जै जै देखा तै नरहरी, जीवन तलब निवार स्वामी। अंधकूप माया मन गाड़िया, क्यों कर उतरो पार स्वामी रहाओ। जह पीतर कट पीतर बसया, बाहर काहे नाही। तिन की सार करे नित साहेब, सदा चिंत मन माही। आपे नेड़ा आपे दूर, आपे सरबर भरपूर। सतगुर मिले अंधेरा जाए, जै देखा तै रया समाए। अंतर से सा बाहर माया, नैनी लग सबाणी। प्रणवत नानक दासन दासा, परता पैगा प्राणी। राम कली महला पहला, जित दर वसै कवन दर कहिया। दरा पीतर दर कवन लह, जिस दर कारण फिरा उदासी। सो दर कोई आए कह, किन बिद सागर तरिया। जीव त्याने मरिया रहाओ, दुख दरवाजा रोहो रखवाला। आसा अंदेसा दोए पट जड़े, माया जल खाई पानी कर बांधया। सत कह

करे, जब आशा अंदेशा तब ही क्यों कर एक कहे, आशा पितर रहे निराशा तव नानक एक मिले। इन विद सागर तरिये जीवत आयो मरिये, रहाओ दूजा राम कली महला पहला, सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी बाजे लोक सुने, पत चोली मंगण कै ताई पीखिया नाम पड़े, बाबा गोरख जागे गोरख सोजन गोए उठाली, करते बार ना लागे रहाओ। पानी प्राण पवन बंद राखे, चंद सूरज मुख दिए, मरण जीवन कौ धरती दीनी, एते गुण विसरे, सिद्ध साध क्यार योगी जंगम, पीर पुरस बहु तेरे, जेतन मिला ता कीर्त आखा ता मन सेव करे। कागद लून रह कृत संगे, पानी कमल रह ऐसे भगत मिले, जन नानक तिन जम क्या करे, राम कली महला पहला। सुन मा शिंदरा नानक बोले, वसगत पंच करे नहीं डोले, ऐसी जुगत जो कौ पाले, आप तरह सगले कुल तारे। सो अवधूत ऐसी मत पावे, अहनिस सुन समाज समावे रहाओ। भिखिया पाए भगत पै चले, होवे सो तृप्त संतोख अमुले। ध्यान रूप होए आसन पावे, सच नाम ताड़ी चितलावे, नानक बोले अमृत बाणी, सुन मा शिंदरा औदू निशानी। आसा महे निरास वलाए, निहचो नानक करते पाए, प्रणवत नानक अगमुख सुनाए, गुर चेले की संध मिलाए। दिखिया दारू भोजन खाए, छे दर्शन की सोजी पाए, राम कली महला पहला। हम डोलत बेड़ी पाप परी है, पवन लगे मत जाई, सनमुख सिद्ध पेटन को आए, निहचो दे वड़ियाई। गुरतार तारन हारिया, देह भगत पूर्ण अविनाशी, हाँ तुझको बलिहारिया रहाओ। सिद्ध साधक जोगी अर जंगम, एक सिद्ध जिनी त्याया, परसत पैर सिजते स्वामी, अखर जिनको आया। जप तप संजम कर्म ना जाना, नाम जपी प्रभ तेरा, गुर परमेसर नानक पेटे ओ, साचे शब्द नवेरा। राम कली महला पहला, सुरती सुरतर लाइए एत, तन कर तुल्हा लंगे जेत, अंतर पाहित से तू रख, एनस दीवा बल अथक।

पाए जिन किश किया सो किश करै अपनी कीमत आपे तरै गुरमुख प्रगट होवा हर राए ना को आवै ना को जाए लोक तिकार कहै मंग।

रामकली महला पहला, सागर में बूंद, बूंद में सागर, कवन बुझे बिद जाने, उत्पो चलते आप कर चीने, आपे तत् पछाणे, ऐसा ज्ञान विचारे कोई, तिस्ते मुक्त परम गत होई रहाओ, दिन में रहण रैन मैं दिनियर उसन सीत बिद सोई, ताकि गत मित यवर ना जाने, गुरबिन समझ ना होई, पुरख मैं नार, नार मैं पुरखा, बुझो ब्रह्म ज्ञानी, तुन मैं ध्यान, ध्यान मैं जानिया, गुरमुख अकथ कहानी, मन मैं जोत, जोत मैं मनुआ, पंच मिले गुर पाई, नानक तिन कै सत बलिहारी, जिन एक शब्द लिवलाई, राम कली महला।

सो हर जनो हर प्रभु भावै, अहनस भगत करे दिन राती, ला छोड़ हर के गुण गावै रहाओ। धुन वाजे अनहद कोरा, मन मान्या हर रस मोरा, गुर पूरे सच समाया, गुर आदि पुरख हर पाया, सब नाद वेद गुरबाणी, मन राता सारंग पाणी, तह तीर्थ वर्त तप सारे, गुर मिलिया हर निस्तारे, जय आप गया पौ भागा, गुरचरणी सेवक लागा, गुर सतगुर भरम चुकाया, कहो नानक शब्द मिलाया, आराम कली महला पहला, शादन भोजन मांगत पागै, खुदया दुष्ट जलै दुख आगै, गुरमत नहीं लीनी दुरमत पत खोई, गुरमत भगत पावै जन कोई, जोगी जुगत सहज कर वासै, एक दृष्ट एको कर देखिया, भीखिया पाए सब तृप्ता सह रहाओ। पंच बैल गड़िया देह तारी, राम कला निबह पत सारी, तर टूटी गाडो सिर पार, लकड़ी बिखर जरी मंज पार, गुर का शब्द विचार योगी, दुख सुख सम करना सोग बियोगी, भुगत नाम गुर शब्द विचारी, अस्त्र कंध जपै निरंकारी, सहज जगोटा बंधन ते छूटा, काम क्रोध गुर शब्दी लूटा, मन मैं मुंदरा हर गुर सरना, नानक राम भगत जन तरना। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राम कली महला तीजा, कर पहला सतयुग सच कह सब कोई, कर कर भगत गुरमुख होई, सतयुग धर्म पैर है चार, गुरमुख बूझै को बीचार, जुग चारे नाम वड्याई होई, जे नाम लागै सो मुक्त होवै, गुरबिन नाम ना पावै कोई रहाओ। त्रेता एक कलकीनी दूर, पाखंड वर्त्या हर जान दूर, गुरमुख बूझै सोजी होई, अंतर नाम वसै सुख होई, द्वापर दूजै दुबदा होए, परम भुलाने जाने दोए, द्वापर धर्म दोए पैर रखाए, गुरमुख होवै ता नाम दृढ़ाए, कल युग धर्म कला एक रहाए, एक पैर चलै माया मोह वधाए, माया मोह अत गुबार, सतगुर पेटै नाम उधार, सब युग मैं साचा एको सोई, सब मैं सच दूजा नहीं कोई, साची कीर्त सच सुख होई, गुरमुख नाम वखाणै कोई, सब युग मैं नाम उत्तम होई, गुरमुख विरला बूझै कोई, हर नाम ते आए भगत जन सोई, नानक युग युग नाम वड्याई होई, राम कली महला चौथा, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जे वडभाग होवै वडभागी, ता हर हर नाम ते आवै, नाम जपत नामे सुख पावै, हर नामे नाम समावै, गुरमुख भगत करो सद प्राणी, हृदय प्रगास होवै लिव लागै, गुरमत हर हर नाम समाणी रहाओ। हीरा रतन जवे हर माणक, बहु सागर भरपूर किया, जिस वड भाग होवै वड मस्तक, तिन गुरमत कड काढ लिया, रतन जवेहर लाल हर नामा, गुर काढ तली दिखलाया, भागहीन मनमुख नहीं लिया, तृण ओलै लाग छपाया, मस्तक भाग होवै तुर लिखिया, ता सतगुर सेवा लाए, नानक रतन जवेहर पावै, तन तन गुरमत हर पाए, राम कली महला चौथा, राम जना मिल पया आनंदा, हर निकी कथा सुनाए, दुरमत मैल गई सब निकल, सतसंगत मिल बुद्ध पाए, राम जान गुरमत राम बोलाए, जो जो सुने कह सो मुक्ता, राम जपत सोहाए रहाओ। जेवड़ भाग होवै मुख मस्तक, हर राम जना पेटाए, दर्शन संत देहो कर कृपा, सब दालत दुख लह जाए, हर के लोग राम जानी के, पागहीन ना सुखाए,
ज्यों ज्यों राम कहे जन उच्चे नरनिंदक डंस लगाए। त्रिग त्रिग नरनिंदक जिन जन नहीं पाए, हर के सखा सखाए से हर के चोर। वे मुख मुख काले जिन गुर की पैज ना पाए, दया दया कर राखो हर जियो हम दीन तेरी शरण आए। हम बारक तुम पिता प्रभ मेरे, जन नानक बख्श मिलाए। राम कली महला चौथा, हर के सखा साध जानी के तनी ऊपर हाथ बतावे। गुरमुख साध से प्रभ पाए, कर कृपा आप मिलावे। राम मोको हर जन मेल मन पावे, अम्यो अम्यो हर रस है मीठा। मिल संत जना मुख पावे रहाओ, हर के लोग राम जानी उत्तम। मिली उत्तम पदवी पावे, हम होवत चेरी दास दासन की। मेरा ठाकर खुशी करावे, सेवक जन सेवै सेवट।

मेरे एक खैन प्राण ना रहे बिन प्रीतम, बिन देखे मरे मेरी माया। तन तन वड भाग गुरसरणी आए, हर गुरमिल दर्शन पाया। मैं अवर न कोई सूझे बूझे, मन हर जप जपो जपाया। नामहीन फिर ऐसे नकटे, तन कस कस नक वड़ाया। मोको जग जीवन जीवा लै स्वामी, हृदय अंतर नाम वसाया। नानक गुरु गुरु है पूरा, मिल सतगुर नाम ते आया। आराम कली महला चौथा, सतगुर दाता वड्डा वड पुरख है। जित मिले हर उर तारे, जी दान गुर पूरे दिया। हर अमृत नाम समारे, राम गुर हर हर नाम कंठ तारे। गुरमुख कथा सुनी मन पाई, तन तन वड भाग हमारे रहाओ। कोट कोट ते तीस ते आवे, ताका अंत ना पावे पारे। हृदय काम काम नी मांगे, रिद मांगे हाथ पसारे। हर जस जप जप वड्डा वडेरा, गुरमुख रखो उर तारे। जे वड़ भाग होवे ता जपिए, हर पौजल पार उतारे। हर जन निकट निकट हर जन है, हर राख है कंठ जन तारे। नानक पिता माता है हर प्रभ, हम बारक हर प्रत पारे। राग राम कली महला पंजवा, कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद कृपा करहो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना बिचारो कोई। माटी का क्या तोपे स्वामी, मानस की गते ही। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, जो इच्छा हो सोई फल पावो। फिर दुख ना व्यापे कोई रहाओ। काचे पांडे साज निवाजे, अंतर ज्योत समाई। जैसा लिखत लिखिया तुर करता है, हम तैसी कृत कमाई। मन तन थाप किया सब अपना, ए हो आवन जाना। जिन दिया सोचित ना आवे, मोहे अंध लपटाना। जिन किया सोई प्रभ जाने, हर काम है लिया पारा। भगत करी हर के गुण गावा, नानक दास तुम्हारा। राम कली महला पंजवा, पवो चरना तल ऊपर आवो। ऐसी सेव कमावो, आपस ते ऊपर सब जानो। तौ दरगह सुख पावो, संतो ऐसी कथो कहानी। सुर पवित्र नरदेव पवित्रा, खिन बोलो गुरमुख बाणी रहाओ। परपंच छोड़ सहज कर बैसो, झूठा कहो ना कोई। सतगुर मिलो नवे निध पावो, इन बे तत् बिलोई। परम चुकावो गुरमुख लिव लावो, आत्म चीनो पाई। निकट कर जानो सदा प्रभ हाजर, किस्यो कहो बुराई। सतगुर मिले है मार्ग मुक्ता, सहजे मिले स्वामी। तन तन से जन जिन्नी कल मैं हर पाया, जन नानक सत कुरबानी। राम कली महला पंजवा, आवत हरखना जावत दुखा। नह व्यापै मन रोगनी, सदा आनंद गुर पूरा पाया। तो उतरी सगल बेयोगनी, एह बिद है मन जोगनी। मोह सोग रोग लोग ना व्यापै, तय हर हर हर रस भोगनी रहाओ। स्वर्ग पवित्रा मृत पवित्रा, पयाल पवित्र अलोगनी। आज्ञाकारी सदा सुख पुंचै, जतकत पेखो हर गुनी। नह शिव शक्ति जल नहीं पवना, तह आकार नहीं मेदनी। सतगुर जोग का तहा निवासा, जह अवगत नाथ अगम तनी। तन मन हर का, तन सब हर का। हर के गुण हो क्या गनी, कहो नानक हम तुम गुर खोई है। अंबे अंब मिलोगनी, राम कली महला पंजवा। त्रै गुण रहत रह निरारी, साधक सिद्ध ना जाने। रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण, सतगुर कै खजाने।
ਅਚਰ ਜਗਿਸ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਬਸਤਾ ਗੋਚਰ ਭਾਈ ਰਹਾਓ। ਮੋਲ ਨਾਹੀਂ ਕਛ ਕਰਨਾ ਜੋਗਾ, ਕਿਆ ਕੋ ਕਹਿ ਸੁਣਾਵੈ। ਕਥਨ ਕਹਿਣ ਕਉ ਸੋਝੀ ਨਾਹੀਂ, ਜੋ ਪੇਖੈ ਤਿਸ ਬਣ ਆਵੈ। ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਕਰਨੈ ਹਾਰਾ, ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਬੇਚਾਰਾ। ਆਪਣੀ ਗਤਮਿਤ ਆਪੇ ਜਾਣੈ, ਹਰ ਆਪੇ ਪੂਰ ਭੰਡਾਰਾ। ਐਸਾ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨ ਚਾਖਿਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆ ਗਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਆਸਾ ਪੂਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਨ ਆਈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੈ। ਬੈਰੀ ਸਗਲੇ ਸਾਧੇ, ਜਿਨ ਬੈਰੀ ਹੈ ਇਹ ਜਗ ਲੂਟਿਆ, ਤੇ ਬੈਰੀ ਲੈ ਬਾਧੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ, ਅਨਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਰਸ ਮਾਣੀ, ਨਾਉ ਜਪੀ ਪਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ ਰਹਾਓ। ਚੀਤਨਾ ਆਵਸ ਦੂਜੀ ਬਾਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਉਪਰ ਰਖਵਾਰਾ। ਬੇਪਰਵਾਹੋ ਰਹਿਤ ਹੈ ਸਵਾਮੀ, ਇਕ ਨਾਮ ਕੈ ਆਧਾਰਾ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਮਿਲਿਓ ਸੁਖਦਾਈ, ਊਨ ਨਾ ਕਾਈ ਬਾਤਾ। ਤਤ ਸਾਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਛੋੜ ਨਕਤ ਹੂੰ ਜਾਤਾ। ਵਰਨ

पंच बचित्र करे संतोखा सात सुरा लै चल बाजा मान तान ताई ताना पाओ न बिंगा कल फेरी फेर ना होवे कभी एक शब्द बंद पाले नारदी नरहर जान हदूरे कुंगर खड़ग त्याग विसूरे सहजानंद दिखावे पावे एहो नृत्यकारी जन्म ना आवे जे को अपने ठाकर पावे कोट मद एहो कीर्तन गावे साध संगत की जावो टेक कहो नानक तिस कीर्तन एक।

कोई कहे तुर्क, कोई कहे हिंदू, कोई बंश है पिस्त, कोई सुरग हिंदू। कहो नानक जन हुक्म पछाता, प्रभ साहेब का तन भेद जाता। राम कली महला पंजवा, पवन है मैं पवन।

अगली किश खबर ना पाई, रोवनहार पे उठ सिधाई, पर मोह के बांधे बंद, सुपन भया पखलाए अंध। एह तो रचन रचिया करतार, आवत जावत हुक्म अपार, नह को मुआ ना मरने जोग, नै बिनसै अविनाशी होग। जो एहो जानो सो एहो नाए, जानन हारे कौ बल जाओ। कहो नानक गुर भरम चुकाया, ना कोई मरै ना आवै जाया। राम कली।

आओ गहरी बिभूत लाए बैठा ताड़ी मेरी तेरी मुंद्रा तारी मांगे टूका तृप्त ना आवै नाथ छोड़ जाचे लाज ना आवै चल चित जोगी आसन तेरा सिंगी वाजे नित उदासेरा गुर गोरख की तै बूझ ना पाई फिर जोगी आवै जाई जिसनो होवा नाथ कृपाला रह रास हमारी गुर गोपाला ना मैं खिंथा ना मैं बस्तर जन नानक जोगी होवा अस्थिर इउं जपया नाथ दिन रहन आई हुण पाया गुर गोसाई रहो दूजा राम कली महला पंजवा करन करावन सोई आना दिसै कोई ठाकुर मेरा सूट सुजाना गुरमुख मिलिया रंग माना ऐसो रे हर रस मीठा गुरमुख किने विरलै डीठा रहाओ निर्मल ज्योत अमृत हर नाम पीवत अमर भय नेकाम तन मन शीतल अगन निवारी आनंद रूप प्रगटे संसारी क्या देवो जा सब किश तेरा सदबिहार जाओ लख बेरा तन मन जियो पिंड दे साजिया गुर कृपा ते नीच निवाजिया खोल किवारा महल बुलाया जैसा सा तैसा दिखलाया कहो नानक सब

राम कली महला पंजवां, पंच शब्द तह पूर्ण नाद, अनहद बाजे अचरज बिस्माद। तेल करै संत हर लोग, पार ब्रह्म पूर्ण निर्योग। सुख सहज आनंद पवन, साध संग बैस गुण गावै, तै रोग सोग नहीं जन्म मरण रहाओ। ऊहा सिमरै केवल नाम, बिरले पावै ओ विश्राम। भोजन पाओ कीर्तन आधार, निश्चल आसन बेसुमार। दिग ना डोलै कतहू ना तावै, गुर प्रसाद को।

जा कै अंतर हर हर स्वाद कहन न जाई नानक बिस्माद राम कली महला पंजवा भेटत संग पार ब्रह्म चित आया संगत करत संतोख मन पाया संतै चरण माथा मेरो पौत अनक बार संतै डंडौत एहो मन।

हमारी निर्मल रास, संत हमारा राखिया पड़दा, संत प्रसाद मोए कबू ना करदा, संत संग दिया कृपाल, संत सहाई पय दयाल, सुरत मत बुद्ध प्रगास, गहर गंभीर अपार गुणतास, जी जंत

सोधे शास्त्र सिमरत सगल, सो नाम जपै जिसे आप जपाए, सगल फला से सुख समाए, राखन हारे राखो आप, सगल सुखा प्रभ तुमरे हाथ, जित लावै तित लागै स्वामी, नानक साहेब अंतर जामी। राम कली महला पंजवां, जोकिश करै सोई सुख जाना, मन असमझ साध संग पतियाना, डोलन ते चूका ठहराया, सत माहे ले सत समाया, दुख गया सब रोग गया, प्रभ की आज्ञा मन मैं मानी, महापुरख का संग पया रहा, सगल पवित्र सर्व निर्मला, जो वरताए सोई भला, जह राखै सोई मुक्त थान, जो जपाए सोई नाम, अठसठ तीर्थ जय साध पग तरै, तह बैकुंठ जय नाम उचरै।

ताप कपट खुलाने प्रम नाठे दूरे नानक कौ गुर पेटे पूरे। राम कली महला पंजवा कोट जापता विश्राम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनक रूप रंग भोग रसै गुरमुख नाम निमख हृदय वसै हर के नाम की वडियाई कीमत कहन न जाई रहाओ। सूर बीर तीरज मत पूरा सहिस मातुन गहर गंभीरा सदा मुक्त ताके पूरे काम जा कर दे वसै हर नाम। सगल सुख आनंद रोग समदर्शी पूर्ण निर्जोग आए ना जाए डोले कत नाही जा कह नाम बसै मन माही। दीन दयाल गोपाल गोविंद गुरमुख जपिए उतरै चिंद नानक कौ गुरदिया नाम संत संतन की टहल संत का काम। राम कली महला पंजवा बीज मंत्र।

हर की कथा सुनत पवित जेवा भगत पाई गत मत सो प्रवान जिस हृदय वसाई नानक ते जानी उत्तम पाई राम कली महला पंजवां गहो कर।

रहाओ जब उसको कोई देवे मान, तब आपस ऊपर रखे गुमान। जब उसको कोई मन पर हरे, तब यो सेवक सेवा करे। मुख बेरावे अंत ठगावे, एक ठौर ओ कई ना समावे। उन मोहे बहुते ब्रह्मंड, राम जनी कीनी खंड खंड। जो मांगे सो भूखा रह, इस संग राचे सो कछु ना लह। ऐसे त्याग सत्संगत करे, वडभागी नानक हो तरह। राम कली महला पंजवां, आत्म राम सर्व मैं पेख। पूर्ण पूर रया प्रभ एक, रत्न मोल हृदय मैं जान। अपनी वस्तु पछान, पी अमृत संतन प्रसाद। वड़े भाग होवे तो पाईए, बिन जेवा क्या जाने स्वाद। रहाओ अठ दस वेद सुने कह डोरा, कोट प्रगास ना दिसे अंधेरा। पशु प्रीत का संग रचे, जिसने बुझावे सो कित बिद बुझे। जानन हार रहया प्रभ जान, ओत पोत भगतन संगान। बिगस बिगस अपना प्रभ गावे, नानक तिन जम नेण न आवे। राम कली महला पंजवा, दीनो नाम कियो पवित। हर तन रास निरास ए बित, काटी बंद हर सेवा लाए। हर हर भगत राम गुण गाए। बाजे अनहद बाजा, रसक रसक गुण गावे। हर जानो अपने गुरुदेव निवाजा। रहाओ

कट जाए कर कृपा पार ब्रह्म दयाल मानते कबो न विसर गोपाल तेरे दास की हो मातूर नानक की प्रभ सरदा पूर रामकली महल्ला पंजवा तेरी शरण पूरे गुरुदेव तुझ में दूजा नाही कोय तू समर्थ पूर्ण पार ब्रह्म सो त्याए पूरा जिस कर्म तरण तारण प्रभ तेरो नाओ एका शरण गही मन मेरा तुझ बिन दूजा नाही ठाओ रहाओ जप जप जीवा तेरा नाओ आगे दरगे पावो ठाओ दुख अंधेरा मन ते जाए दुर्मत बिनसै रचै हर नाए चरण कमल स्यों लागी प्रीत गुरपुरे की निर्मल रीत पहो भागा निरपव मन बसै अमृत नाम रसना नित जपै कोट जन्म के काटे फाहे पाया लाभ सच्चा तन लाहे तोट न आवै अखुट भंडार नानक भगत सोहै हर द्वार राम कली महला पंजवा रतन जिवेहर नाम सत संतोख ज्ञान सुख सहज दया का पोता हर भगता हवाले होता मेरे राम को भंडार खात खर्च कष्ट उठ न आवै अंत नहीं हर पारावार रहाओ कीर्तन निर्मोलक हीरा आनंद गुणी गहीरा अनहद बाणी पूंजी संतन हथ राखी कुंजी सुन समाध गुफा तय आसन केवल ब्रह्म पूर्ण तय बासन भगत भगत संग प्रभ गोष्ठ करत तय हरख ना सोग ना जन्म ना मरत कर कृपा जिस आप देवाया साध संग तिन हर तन पाया दयाल पुरख नानक अरदास हर मेरी वर्तन हर मेरी रास रामकली महला पंजवा मेहमा ना जाने बेद ब्रह्मे नहीं जाने भेद अवतार ना जाने अंत परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत अपनी गाते आप जाने सुन सुन अवर वखाने रहाओ संकरा नहीं जाने पेव खोज तहारे देव देविया नहीं जाने मर्म सभी ऊपर अलख पार ब्रह्म अपना रंग करता केल आप बिछोर आपे मेल एक परमे एक भक्ति लाए अपना किया आप जनाए संतन की सुन साची साखी सो बोले जो पेख आखी नहीं लेप तिस पुन्ना पाप नानका प्रभ आपे आप रामकली महला पंजवा किशु काजना कियो जान सुरत मत नाही किश ज्ञान जाप ताप सील नहीं धर्म किशु ना जानो कैसा कर्म ठाकुर प्रीतम प्रभ मेरे तुझ बिन दूजा अवर ना कोई भूले चूके प्रभ तेरे रहाओ रिद ना बुद्ध ना सिद्ध प्रगास बिखे ब्याद के गाव में बास करण हार मेरे प्रभ एक नाम तेरे की मन में टेक सुन सुन जीवो मन एहो विश्राम पाप खंडन प्रभ तेरो नाम तू अगंत जी का दाता जिसे जनाम है तिन तू जाता जो उपायो तिस तेरी आस सगला राधा है प्रभ गुणतास नानक दास तेरे कुर्बान बेअंत साहेब मेरा मेहरबान रामकली महला पंजवा रखन हर दयाल कोट पव खंडे निमख ख्याल सगल अराधय जंत मिलिया प्रभ गुर मिलमंत जियन को दाता मेरा प्रभ पूर्ण परमेश्वर स्वामी घट घट राता मेरा प्रभ रहाओ ताकि गही मन ओट बंधन ते होई छोट हृदय जप परमानंद मन माहे पय आनंद तारण तरण हर शरण जीवन रूप हर चरण संतन के प्राण आधार ऊचे ते ऊचे पार सुमत सार।

पाए, बूढ़त लोहो साध संग तरह, नानक छा प्राप्त करै। रामकली महला पंजवा, मन माहे जा भगवंत, गुरपुर एहो दीनो मंत, मिटे सगल पैतरास, पूर्ण होई आस, सफल सेवा गुरदेवा, कीमत किश कहण ना जाई, साचे साचा लाखा पेवा रहाओ। करन कराम ने आप, तिस को सदा मन जाप, तिसकी सेवा करनी तो सच सहि सुख पावे मीत। साहिब मेरा अत भारा, खिन मैं था प्यो था पनहारा, तिस बिन अवर ना कोई, जन का राखा सोई। कर कृपा अरदास सुनी जय, अपने सेवक को दर्शन दी जय, नानक जापी जब जाप, सब ते ऊजा का प्रताप। राम कली महला पंजवा, बिरथा प्रवासा लोक, ठाकर प्रभ तेरी टेक, अवर छूटी सब आस, अचिंत ठाकर भेटे गुणतास। एको नाम त्याय मन मेरे, कार्ज तेरा होवे पूरा, हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ। तुम ही कारण करण, चरण कमल हर शरण, मन तन हर ओही ते आया, आनंद हर रूप दिखाया। तिस ही की ओर सदीव, जाके कीने है जीव, सिमरत हर करत निदान, रखण हार निदान। सर्व की रेण हो बीजै, या मिटाए मलीजै, अंदिन त्याई नाम, सफल नानक हो काम। राम कली महला पंजवा, कारण करण करीम, सर्व प्रतपाल रहीम, अल्लै लाख्या पार, खुद खुदाए वड बेसुमार। ओ नमो भगवंत गुसाई, खालक रव रया सर्व ठाई रहाओ। जगनाथ जग जीवन माधो, पौ पंजन रिद माया राधो, रिखी केस गोपाल गोविंद, पूर्ण सर्वत्र मुकंद।

लो हर चरण कमलो सरनाए मना, राम नाम जब संग सहाई, गुरमुख पावे साई तना, रहाओ उन्ने काजन होवत पूरे, काम क्रोध मसद ही चूरे, करे बेकार जिया रे कह ताई, गाफल संग न तसुआ जाई, तरत तोह अनक शर जान, कौडी कौडी कौ खाक सिर शान, जिन दिया तसेरा चेतै मूल, मिथ्या लोभना उतरै सूल, पार ब्रह्म जब पहे दयाल, इहमन होवा सादरवाल, हस्त कमल लड़ लीनो लाए, नानक साचै सा समाए, राम कली महला पंजवा, राजा राम की सरनाए, निरपो पय गोविंद गुण गावत, सा संग दुख जाए रहाओ, जा कै राम बसे मन माही, सो जन दुत्तर पेखत नाही, सगले का इसवारे अपने, हर हर नाम रसन नित जपने, जिसके मस्तक हाथ गुर धरै, सो दासा देसा काहे करै, जन्म मरण की चूकी कान, पूरे गुरु उपर कुर्बान, गुर परमेसर भेट निहाल, सो दर्शन पाए जिस होए दयाल, पार ब्रह्म जिस कृपा करै, साध संग सो पवजल तरै, अमृत पीवाओ साध प्यारे, मुखी उजर साचै दरबारे, अंध करो तज सगल बेकार, नानक हर जप उतरो पार, राम कली महला पंजवा, ईंदन ते बै संतर भागै, माटी कौ जल दै दिस त्यागै, ऊपर चरण तलै आकाश, कटमै सिंध की ओ प्रगास, ऐसा समर्थ हर जियो आप, निमखना बिसरै जी, भगतन कै आठ पहर।

क्यों लागी निवरै प्रताप। गुर कै शब्द रचै मन पाए, भिख्या सहज विचारी खाए, भस्म चढ़ाए करै पाखंड, माया मोहे सहजम दंड। फूटै खापर पीख ना पाए, बंधन बांध्या आवै जाए, बिंदना राखै जती कहावै, माई मांग तो त्रै लोभ आवै। निर्दया नहीं जो तो जाला, बूढ़त बूढ़े सर्व जंजाला, पेख करै खिंथा बहु थटुआ, झूठो खेल खेलै बहु नटुआ। अंतर अगन चिंता बहु जारे, विणकर्मा कैसे उतर सपारे, मुंद्रा फटक बनाई कान, मुक्त नहीं विद्या विज्ञान। जेहवा इंद्री साध लोबाना, पशु पय नहीं मिटै निशाना। तिरबद लोगा तिरबद जोगा, शब्द विचारै चूक सोगा, उज्जल साच सो शब्द होए, जोगी जुगत विचारे सोए। तुझ पह नौ निद तू करना जोग, थापो थापे करे सोहोग। जत सत संजम सच सोचीत, नानक जोगी तिर पवन मीत, रामकली महला पहला। खट मट देही मन बैरागी, सुरत शब्द तुने अंतर जागी, वाजे अनहद मेरा मन लीना, गुरबचनी सचनाम पतीना। प्राणी राम पग सुख पाई है, गुरमुख हर हर मीठा लागै, हर हर नाम समाई है रहाओ। माया मोह विवर्ज समाए, सतगुर पेटै मिल मिलाए, नाम रतन निर्मोल कहीरा, तितराता मेरा मन तीरा। हम मैं ममता रोग न लागै, राम पग जम का पौ भागै, जम जम दार न लागै मोहे, निर्मल नाम हृदय हर सोहे। शब्द विचार पय निरंकारी, गुरमत जागे दुरमत परहारी, अंदर जाग रहे लिवलाई, जीवन मुक्त गति अंतर पाई। अलिप्त गुफा में रहे निरारे, तस्कर पंचो सब संगारे, पर कर जाए न मन डोलाए, सहज निरंतर रहो समाए। गुरमुख जाग रहे अवधूता, सतवै रोगी तत् परोता, जग सूता मरिया वह जाए, बिन गुर शब्द ना सोजी पाए। अनहद शब्द वजै दिन राती, अवगत की गत गुरमुख जाति, तौ जानी जा शब्द पछानी, एको रव रहा निर्वानी। सुन समाद सहज मन राता, तजहो लोभा एको जाता। गुर चेले अपना मन मानिया, नानक दूजा मेट समानिया, राम कली महला पहला। साहा गणे ना करे विचार, साहे उपर एक अंकार, जिस गुर मिले सो

गुर कै पाणे कर्म कमावे, नानक साचे साच समावे। आराम कली महला पहला, हठ निग्रह कर काया छीजे, वर्त तपन कर मन नहीं पीजे, राम नाम सर अवरना पूजे, गुर से मना हर जन संग कीजे, जम जन दार जोहे नहीं सके, सरपन डस ना सके, हर का रस पीजे, रहाओ वाद पड़े रागी जग पीजे, त्रैगुण बिखिया जन्म मरी जय, राम नाम बिन दुख सही जय, चारस पवन सिंहासन पीजे, न्योली कर्म खट कर्म करी जय, राम नाम बिन बिरथा सास ली जय, अंतर पंच अगन क्यों तीर जती जय, अंतर चोर क्यों साध रही जय, गुरमुख होए काया गड़ली जय, अंतर मैल तीर्थ पर मीजै, मन नहीं सूचा क्या सोच करी जय, किरत पया दोष का कौ दी जय, आना खाहे देही दुख दी जय, बिन गुर ज्ञान तृप्त नहीं थी जय, मनमुख जन्म जन्म मरी जय, सदगुर पूछ संगत जन की।

की जय। राम कली महला पहला, अंतर उत्पुज अवर ना कोई, जो कही ऐसो प्रभते होई, जुगे जुगंतर साहिब साहि सोई, उत्पुत परलो अवर ना कोई। ऐसा मेरा ठाकुर गहर गंभीर, जिन जपया तिन्ही सुख पाया, हर कै नाम ना लगे जंपीर। रहाओ नाम रतन हीरा निर्मोल, साचा साहेब अमरिया तोल, जेवा सूची साचा बोल, कर दर साचा नाही रोल, एक बन में बैसे डूगर स्थान, ना बिसार पचाय अवमान, नाम बिना क्या ज्ञान ध्यान, गुरमुख पावे दरगे मान, हठ हंकार करे नहीं पावे, पाठ पढ़े ले लोक सुनावे, तीर्थ परमस ब्याद ना जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे, जतन करे बिंद किवे ना रहाई, मनुआ डोले नर के पाई, जंपर बांधे लह सजाई, बिन नावे जियो जल बल जाई, सिद्ध साधक केते मुन देवा, हठ निग्रह ना तृप्तावे पेवा, शब्द विचार गह गुरसेवा, मन तन निर्मल अवमान्या पेवा, कर्म मिलै पावे सच नाम, तुम शरणागत रहो।

झूठ ना पावस पाखंड कीना, बिन गुर शब्द नहीं करबार, नानक गुरमुख तत विचार। आराम कली महला पहला, ज्यों आया त्यों जावे बौरे, ज्यों जन्मे त्यों मरण पया। ज्यों रस भोग किए तेता दुख लागे, नाम विसार पव जल पाया। तन तन देख तो गर्भ गया, कनक काम निसो हेत वधाए हे, की नाम विसार है परम गया रहाओ। जत सत संजम सील ना रखिया, प्रेत पिंजर में काष्ट पाया। पुन दान इस नान ना संयम, साध संगत बिन बाज जाया। लालच लागे नाम विसारियो, आवत जावत जन्म गया। जा जमत आए केस गहे मारे, सुरत नहीं मुख काल गया। अहनिस निंदा तात पराई, हृदय नाम ना सर्व दया। बिन गुर शब्द ना गद पत पावे, राम नाम बिन नरक गया। खिर मैं वेश करे नटुआ ज्यों, मोह पाप मैं गलत गया। एते उत माया देख पसारी, मोह माया कै मगन पया। करे बेकार विथार कनेरे, सुरत शब्द बिन परम पया। हम मैं रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वो रोग गया। सुख संपत को आवत देखे, सागत मानो अभिमान पाया। जिसका हो तानो तान सो फिर ले वै, अंतर सहसा दुख पाया। अंतकाल के साथ ना चल, जो दी सह सब तिसह मया। आद पुरख परंपर सो प्रभु, हर नाम हृदय लै पार पया। मुए को रोवे किसे सुनावे, पैसा गिर असराल पया। देख कुटुंब माया गृह मंदर, सागत जंजाल पराल पया। जाए आए ता तने पठाए, चाले तने बुलाए लया। जो किश करना सो कर रहया, बख्शन हारे बख्श लया। जिने हो चाखिया राम रसायण, तिन की संगत खोज पया। रिद्ध सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया, मुक्त पदार्थ शरण पया। दुख सुख गुरमुख सम कर जाना, हर सोग ते बिरगत पया। आप मार गुरमुख हर पाए, नानक सहज समाए लया। आराम कली दखणी महला पहला, जत सत संजम साज दृढ़ाया। साज शब्द रस लीना, मेरा गुरदयाल सदा रंग लीना। अहनस रह एक लिव लागी, साचे देख पतीना रहाओ। रह गगनपुर दृष्ट समय सुर, अनहद शब्द रंगीना। सत बंद कुपीन भरपुर लीना, जिहवा रंग रसीना। मिले गुर साचे जिन रच राचे, किरत विचार पतीना। एक मैं सर्व सर्व मैं एका, एह सतगुर देख दिखाई। जिन किए खंड मंडल ब्रह्मंडा, सो प्रभ लिखण ना जाई। दीपक ते दीपक परगासिया, त्रिपवन ज्योत दिखाई। सच्चे तखत सच महली बैठे, निरपव ताड़ी लाई। मोहे गया बैरागी जोगी, कट कट किंगरी वाई। नानक शरण प्रभु की छूटे, सतगुर सच सिखाई। राम कली महला पहला, औहट हस्त मड़ी कर छाया। तरन गगन कल तारी, गुरमुख केती शब्द उधारी। संतो रहाओ ममता मार, हो मैं सोख त्रिपवन जो तुम्हारी। मनसा मार मन मैं राख, सतगुर शब्द विचारी। सिंगी सुरत अनाहद वाजै, घट घट जो तुम्हारी। परपंच बेण तही मन राखिया, ब्रह्म अगर पर जारी। पंच तत् मिल अहनस दीपक, निर्मल ज्योत अपारी। रव सस लौके होतन किंगरी, वाजै शब्द निरारी। शिव नगरी मैं आसन अवधू, अलख गम्य पारी। काया नगरी यो मन राजा,
ਪੰਚ ਵਸੈ ਵਿਚਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਰਵੈ ਆਸਣ ਕਰ ਰਾਜਾ ਅਦਲ ਕਰੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਕਾਲ ਬਿਕਾਲ ਕਹੇ ਕਹੇ ਬਪਰੇ ਜੀਵਤ ਮੂਆ ਮਨ ਮਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੁ ਮਹੇਸ਼ ਇਕ ਮੂਰਤ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਾਰੀ ਕਾਇਆ ਸੋਧ ਤਰੈ ਪਵ ਸਾਗਰ ਆਤਮ ਤਤ ਵਿਚਾਰੀ ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇਹ ਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ

मनसा मार मन सहि समाना, बिन रसना उस्तत कराई, लोयन देख रहे बिस्मादी, चेता दिष्ट लगाई। अदिष्ट सदा रहे निरालम, ज्योति ज्योत मिलाई, हाँ गुरसा लाही सदा अपना, जिन साची बूझ बुझाई। नानक एक है बेनंती, नाम गत पत पाई, राम कली महला तीजा, हर की पूजा दुलंब है संतो, कहना कछु न जाई, संतो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई रहाओ। हर बिन सब किश मैला संतो, क्या हो पूज चढ़ाई, हर साचे पावे सा पूजा होवे, पाणा मन वसाई। पूजा करे सब लोग संतो, मन मुक्ताए ना पाई, शब्द मरे मन निर्मल संतो, एह पूजा थाए पाई। पवित्र पावन से जन साचे, एक शब्द लिवलाई, बिन नामे होर पूजना होवी, भरम भुली लोकाई। गुरमुख आप पिछाणे संतो, राम नाम लिवलाई, आपे निर्मल पूज कराए, गुर शब्दी थाए पाई। पूजा करे पर विद नहीं जाने, दूजे पाए मल लाई, गुरमुख होवे सो पूजा जाने, पाणा मन वसाई। पहाने ते सब सुख पावे संतो, अंते नाम सखाई, अपना आपना पछाणे संतो, कूड़ करे वड़ियाई, पाखंड कीने जम नहीं छोड़े, ले जासी पत गवाई। जिन अंतर शब्द आप पछाणे, गत में तो तिन ही पाई। एहो मनुआ सुन समाद लगावे, ज्योति ज्योत में लाई, सुन सुन गुरमुख नाम वखाणे, सत्संगत में लाई। गुरमुख गावे आप गवावे, दर सच्चे शोभा पाई, साची बाणी सच वखाणे, सच नाम लिवलाई। पह भंजन अत पाप निखंजन, मेरा प्रभ अंत सखाई। सब किश आपे आप वरतै, नानक नाम वड़ियाई, राम कली महला तीजा। हम कुचल कुचील अत अभिमानी, मिल शब्दे मैले उतारी, संतो गुरमुख नाम निस्तारी। सच्चा नाम वस्या कटे अंतर, करतै आप सवारी रहाओ। पारस परसे फिर पारस होए, हर जीव अपनी कृपा तारी। एक पेख करे फिर अभिमानी, तिन जुए बाजी हारी। एक आंदन भगत करे दिन राती, राम नाम उर तारी। आंदन राते सहजे माते, सहजे हों मैं मारी। पै बिन भगत ना होई कभी, पै पाए भगत सवारी, माया मोह शब्द।

कर्मचारी आपे आप कराए करता आपे बख्श पंडारी तिस क्या गुणा का अंत ना पाया हों गावा शब्द विचारी हर जियो जपी हर जियो सालाही विचों आप निवारी नाम पदार्थ गुरते पाया खुट सचे पंडारी अपने भगतां नू आपे तुठा अपनी किरपा कर कल तारी तिन साचे नाम की सदा भुख लागी गावन शब्द विचारी जियो पिंड सब किश है तिसका आखण बिखम विचारी शब्द लगे से जन निस्तरे भौजल पार उतारी बिन हर साचे को पार ना पावे बूझे को विचारी जो तुर लिखिया सोई पाया मिल हर शब्द सवारी काया कंचन शब्दे राती साचे नाए प्यारी काया अमृत रही पर पूरे पाये शब्द विचारी जो प्रभ खोजे से ही पावे होर फूट मोए हंकारी बादी बिन सह सेवक सेवै गुर कहित प्यारी सो जोगी तत् ज्ञान विचारे हम मैं तृष्णा मारी सतगुर दा

तो जीवत संत बिहावै हर रस पीवत जित को लाया तित ही लगाना ना को मूड नहीं को स्याना कर कृपा जिस देवै नाओ नानक ता कै बल बल जाओ। राम कली महला पंजवा दावा अग्न रहे हर बूट मात गर्भ संकट ते छूट जाका नाम सिमरत पौ जाए तैसे संत जना राखे हर राए ऐसे राखन हर दयाल जत का देखो तुम प्रतपाल रहाओ। जल पीवत ज्यो तिखा मिटंत तन बिकसै गृह आवत कंत लोभी का तन प्राण आधार त्यों हर जन हर हर नाम प्यार किरसानी ज्यो राखै रखवाला मात पिता दया ज्यो बाला प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए त्यों हर जन राखै कंठ लाए ज्यो अंदले पे

सगले उदार, ज्यों पावक संग सीत को नास, ऐसे प्राहित संत संग बिनास, ज्यों साबन कापर उज्जल होत, नाम जबत सब ब्रह्म पौखोत, ज्यों चकवी सूरज की आस, ज्यों चात्रक बूंद की प्यास, ज्यों कुरंक नाद कर्ण समाने, त्यों हर नाम हर जन मनै सुखाने, तुमरी कृपा ते लागी प्रीत, दयाल पै ताय आए चीत, दया तारी तिन तारण हार, बंधन ते होई छुटकार, सब थान

राम कली महला पंजवा जी जंत सब पेखिया प्रभ सगल तुम्हारी धारणा एहो मन हर के।

काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बिदारणा। नाम जपत मन निर्मल होवे सूखे सुख गुदारना। भगत सरण जो आवे प्राणी तिस इहां उहां ना हारना। सुख दुख इस मन की बिरथा तुम ही आगे सारना। तू दाता सबना जिया का अपन किया पालना। अनक बार कोट जन ऊपर नानक वन्ये वारना। राम कली महला पंजवा अष्टपदी एको ओंकार सतगुर प्रसाद। दर्शन पेटत पाप सब नासै हर स्यों दे मिलाई। मेरा गुर परमेसर सुखदाई पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए अंते होए सखाई। रहाओ सगल दुख का डेरा पन्ना संत तूर मुखलाई। पतत पुनीत की अखन पीतर अज्ञाना देर वंजाई। कारण कारण समरथ स्वामी नानक ते शरणाई। बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाए एक शब्द लिवलाई। अंधकूप बिखिया ते काढ़ियो सात शब्द बने आई। जन्म मरण का सहसा चूका बाहुड़ कतो ना ताई। नाम रसायन एहो मन राता अमृत पी तृपताई। संत संग मिल कीर्तन गाया निचल वसया जाई। पूरे गुर पूरी मत दीनी हर बिनयान ना पाई। नाम निधान पाया वड भागी नानक नरक ना जाई। काल सियाणप उकतना मेरी पूरे गुरु कमाई। जप तप संजम सोच है सोई आपे करे कराई। पुत्र कलत्र महा बिखिया मैं गुर सच लाए।

उत्सव विसारणा, अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना, सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा, करता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहेब क्या नाही कर तेरा, साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया, कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाईया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटा जिस दिया ये वडे आईया। कहे नानक सुनो संतो सब तरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित कर सपागै शब्द वाजे, कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंट कुमारिया,

साची लवै बिंदे निमाणी, देह निमाणी लवै बाजहो, क्या करे वेचारिया, तुद बाज समर्थ कोय नाही, कृपा कर बनवारिया, एस ना होर थाओ नाही, शब्द लाग सवारिया, कह नानक लवै बाजहो, क्या करे वेचारिया, आनंद आनंद सब को कह, आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुरते, कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किलवे कटे, ज्ञान अंजन सारिया, अंदरों जन का मुह त्रुटा, तिनका शब्द सच्चा सवारिया, कह नानक हो आनंद है, आनंद गुरते जानिया, बाबा जिस तू देहे सोई जन पावै, पावै ता सो जन देहे जिसनो, होर क्या करे विचारिया, एक भरम भूले फिरै दै दिस, एक नाम लाग सवारिया, गुर प्रसादी मन भया निर्मल, जिन्ना पाणा पावै, कहै नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावै, आवहो संत प्यारे हो, अकथ की करहै कहानी, करहै कहानी अकथ केरी, कित द्वारै पाईऐ, तन मन तन सब सौंप गुर को, हुक्म मन्ने पाईऐ, हुक्म मन्यो गुरु केरा, गावो सच्ची बाणी, कहे नानक सुनो संतो, कथ्यो कथ कहानी, ए मन चंचला चतराई किने ना पाया, चतराई ना

ना पाए। फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए। कहे नानक विचार देखाओ विण सतगुर मुक्त ना पाए। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी। बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी। जिन कहो नदर कर्म होवै हृदय तना समाणी। पीवहो अमृतो सदा रहो हर रंग जपियो सारिंग पाणी। कहे नानक सदा गावहो एह सच्ची बाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आख वखाणी। हर हर नित करै रसना कहया कछु ना जानी। चित जिनका हिर लया माया बोलन पै रवाणी। कहे नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ। शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ समाओ। शब्द सेती मन मिलिया सच्चै लाया पाओ। आपे हीरा रतन आपे जिसनो दे बुझाए। कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ। शिव सकत आपो पाए कह करता आपे हुकुम वरताए। हुकुम वरताए आप वेखै गुरमुख सै बुझाए। तोड़े बंधन होवै मुक्त शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनो आप करे सो होवै एक सो लिव लाए। कहे नानक आप करता आपे हुकुम बुझाए। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे ततै सार ना जानी। ततै सार ना जानी गुरु बाजौ ततै सार ना जानी। तिही गुणी संसार परम सुता सुत्या रहण विहानी। गुर कृपा ते सेजन जागे जिन्ना हर मन वसिया बोले अमृत बाणी। कहे नानक सो तत पाए जिसनो अंदन हर लिव लागै जागत रहण विहानी। माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारी है। मनो क्यों विसारी है ए वरदाता जे अग्न में आहार पहुंचावे ओसनो केहो पोहे ना सकी। जिसनो अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए। गुरमुख सदा संभाली है कह नानके वरदाता सो क्यों मनो विसारी है। जैसी अग्न उदर में तैसी बाहर माया। माया अग्न सब एको जेही करता खेलर चाया। जात पाणा ता जमया परिवार भला पाया। लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। ए माया जित हर विसरै मोह उपजै पाओ दूजा लाया। कह नानक गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी तिन्नी विचे माया पाया। हर आप अमुलक है मुल ना पाया जाए। मुल ना पाया जाए किसै विटौ रहे लोक मिल लाए। ऐसा सतगुर जे मिले तिसनो सिर सौपिए विचों आप जाए। जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसै मन आए। हर आपा मुलक है भागत ना के नानका जिन हर पल्लै पाए। हर रास मेरी मन वन जारा हर रास मेरी मन वन जारा सतगुर ते रास जानी। हर हर नित जपियो जियो लाहा खट्यो दिहाड़ी। एहो तन तिन्ना मिलिया जिन हर आपे पाणा। कहे नानक हर रास मेरी मन होवा वन जारा। ए रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास ना जाए। प्यास ना जाए होरत कितै जिचर हर रस पल्ले ना पाए। हर रस पाए पल्ले पीए हर रस बहुड़ ना तृष्णा लागे आए। एहो हर रस करमी पाईए सतगुर मिले जिस आए। कहे नानक होर अन रस विसरे जा हर वसै मन आए। ए शरीरा मेरिया हर तो मैं जोत रखी ता तू जग में आया। हर जोत रखी तुद विच ता तू जग में आया। हर आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जग दिखाया। गुर प्रसादी बुझिया ता चलत होवा चलत नदरी आया। कहे नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग में आया। मन चाओ भया प्रभागम सुनिया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया। हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापे। गुरचरण लागे दिन सुपागे अपना पिर जापे।
ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੋ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗੋ ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕਹਿ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ ਜਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨ ਵਸਾਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵਾ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰੇ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋ ਧਰੀ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਦਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ ਇਹੋ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖ ਦੇ ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ ਜਾਂ ਵੇਖਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ ਏ ਸ਼ਰਵਣੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮੰਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਵਾ ਰਸਨਾ ਰਸ ਸਮਾਣੀ ਸੱਚ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ਹਰ ਜਿਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੈ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਾਉਣ ਨੋ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ ਇਕ ਨਾ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਤਹ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਾਮ ਨਿਧੋ ਤਿਸਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਪਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰੈ ਜਿਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੈ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ ਇਹੋ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸੱਚ

राम कली सद एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगदाता सोए भगत वछलते होलोए जियो गुर शब्द समावे अवर ना जाने कोए जियो अवरो ना जाने शब्द गुर कै एक नाम ते आवे प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावे आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया जग अमरिया टालिया तोल ठाकर भगत ते हर पाया हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रपाह जियो सतगुर करे हर पह बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो पैज राखो हर जने केरी हर देहो नाम निरंजनो अंत चलदिया होए बेली जमदूत काल निखंजनो सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो हर तार कृपा सतगुर मिलाया तन तन कह साबाह जियो मेरे सिख सुनो पुत पाई हो मेरा हर पाणा आओ मैं पास जियो हर पाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ पाणा पावे आनंद अनहद वजह वाजे हर आप गल मिलावे तुसी पुत पाई परवार मेरा मन वेखो कर निर्जाह जियो तुर लिखिया प्रवाणा फिरे नाही गुर जाए हर प्रपाह जियो सतगुर पाणे अपने बह परवार सदाया मत मैं पिछे कोई रोब सी सो मैं मूल ना पाया मित पैजै मित बिगसै जिस मित की पैज पावे तुसी विचार देखो पुत पाई हर सतगुरु पैनावे सतगुरु परतख होंदै बहराज आप टिकाया सब सिख बंदप पुत पाई रामदास पैरी पाया अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करो निर्वाण जियो केसो गोपाल पंड सद्यो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबाण हर रंग गुर पावे पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल हर सर पावे हर पाया सतगुर बोलिया हर मिलिया पुरख सुजान जियो रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो सतगुर पुरख जे बोलिया गुर सिखा मन लई रजाए जियो मोहरी पुत सनमुख होया रामदास पैरी पाए जियो सब पवै पैरी सतगुरु केरी जिथे गुरु आप रखिया कोई कर बखीली निवै नाही फिर सतगुरु आण निवाया हर गुरह पाणा दी वड़ियाई तुर लिखिया लेख रजाए जियो कह सुंदर सुनो संतो सब जगत पैरी पाए जियो रामकली महला पंजवां शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोए अड़ा मेरा साजनड़ा जानी अड़ा हर जानी अड़ा नैन अलोए अड़ा हर जानी अड़ा नैन अलोया कटकट सोया अत अमृत प्रे गूड़ा नाल होवंदा लहना सकंदा स्वाओ न जाने मूड़ा माया मदमाता होची बाता मिलना जाई परम तड़ा कहो नानक गुरबिन नहीं सूजै हर साजन सब कै निकट खड़ा गोबिंदा मेरे गोबिंदा प्राण आधारा मेरे गोबिंदा कृपाला मेरे कृपाला दान दातारा मेरे कृपाला दान दातारा प्रापारा कट कट अंतर सोहनिया एक दासी तारी सबल पसारी जी जंत लै मोहनिया जिसनो राखै सो सच पाखै गुर का शब्द

प्रभ जानो स्वामी सुगुण सुजानो, सुगुण सुजाना सत परदाना अमृत हर का नामा, चाख्या गाने सारंग पाने जिनके पाग मथाना, तिन ही पाया तनै त्याया सगल तसै का मानो, कहो नानक थिर तख्त निवासी सच तसै दी बाणो। मंगला हर मंगला मेरे प्रभ कै सुनिए मंगला, सोहेलड़ा प्रभ सोहेलड़ा अनहद तुनिया सोहेलड़ा, अनहद वाजे सबद्या गाजे नित नित जिसै वधाई, सो प्रभ त्याई है सब किश पाई है मरै ना आवै जाई, चूकी प्यासा पूर्ण आसा गुरमुख मिल निर्गुनिया, कहो नानक घर प्रभ मेरे कै नित नित मंगल सुनिए, राम कली महला पंजवा हर हर त्याय मना खिन्ना विसारी है, राम रामा राम रमा कंठ उरतारी है, उरतार हर हर पुरख पूर्ण पार ब्रह्म निरंजनो, पै दूर करता पाप हरता दुसै दुख पव खंडनो, जगदीश ईस गोपाल माधो गुण गोविंद विचारी है, बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरैन चितारी है, चरण कमल आधार जन का आसरा माल मिलख पंडार नाम अनंत तरा, नाम नरहर निधान जिनकै रस भोग एक नारायणा, रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास्त आयना, किल विखहरना नाम पुनः चरना नाम जम की त्रास हरा, बिनवंत नानक रास जन की चरण कमल आसरा, गुण बेअंत स्वामी तेरे कोई ना जान नहीं, देख चलत दयाल सुन भगत वखान नहीं, जी जंत सब तो इतिहावै पुरख पत परमेसरा, सर्व जाचक एक दाता करना मैं जगदीसरा, साधु संत सुजान सोई जिसै प्रभ जी मान नहीं, बिनवंत नानक करो कृपा सोए तुझे पिछान नहीं, मोहे निर्गुण अनाथ सरनी आया बल बल बल गुरदेव जिन नाम दृढ़ाया, गुर नाम दिया कुशल थिया सर्व इच्छा पुनिया, जलने बुझाई सांत आई मिले चिरी विशुन्या, आनंद हर सह साचे महामंगल गुण गाया, बिनवंत नानक नाम प्रभ का गुरपूरे ते पाया, राम कली महला पंजवा रुण चुनो सबदा लाहद नित उठ गाई है संतन कै, केलविक सब दुख बिनासनो हर नाम जपिए गुरमंतन कै, हर नाम लीजै अम्यो पीजै रहन दिन सहारा दिया, जोग दाना नेक किरिया लग चरण कमल ऐसा दिया, पाओ भगत दयाल मोहन दुख सगले पर हरै, बिनवंत नानक तरै सागर त्याए स्वामी नर हरै, सुख सागर गोबिंद सिमरन भगत गावै गुण तेरे राम, आनंद मंगल गुरचरणी लागे पाए सुख कनेरे राम, सुख निदान मिलिया दुख हरिया कृपा कर प्रभ राखिया, हर चरण लागा प्रंपो पागा हर नाम रसना पाखिया, हर एक चितवै प्रभ एक गावै हर एक दृष्टि आया, बिनवंत नानक प्रभ करी कृपा पूरा सतगुर पाया, मिल रही है प्रभ साध जना मिल हर कीर्तन सुनिए राम, दयाल प्रभु दा मोदर माधो अंत न पाइए गुनिए राम, दयाल दुख हर शरण दाता सगल दुख निवारणो, मोह सोग विकार बिखड़े जपत नाम उदाहरणो, सब जी तेरे प्रभु मेरे कर कृपा सब रेण थीवा, बिनवंत नानक प्रभ मया कीजै नाम तेरा जप जीवा, राख लिए प्रभ भगत जना अपनी चरनी लाए राम, आठ पहरे अपना प्रभ सिमरै एको नाम त्याए राम, त्याए सो प्रभ तरे पव जल रहे आवन जाना, सदा सुख कल्याण कीर्तन प्रभ लगा मीठा पाणा, सब इच्छ पुन्नी आस पूरी मिले सतगुर पूरिया, बिनवंत नानक प्रभ आप मेले फिर नाही दुख विसूरिया, राम कली महला पंजवा शंत सलोक चरण कमल शरणागति आनंद मंगल गुणगाम, नानक प्रभ आराधी है विपत निवारण राम, शंत प्रभ विपत निवारण तिस बने अवरना कोय जियो, सदा सदा हर सिमरी है जल थल मैयल सोए जियो,
ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਰ ਪੂਰ ਰਹਿਆ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਗੁਰਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ, ਸਰਬ ਗੁਣ ਜਗਦੀਸਰੈ, ਕਰ ਸੇਵ ਸੇਵਕ ਦਿਨ ਸਰੈਣੀ, ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਏ ਜੀਓ, ਬਲ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੁਖੈ ਦਾਤੇ, ਪ੍ਰਗਾਸ ਮੰਤਨ ਹੋਏ ਜੀਓ। ਸਲੋਕ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਮਨ ਤਨ ਸੁਖੀ, ਬਿਨਸੀ ਦੁਤੀਆ ਸੋਚ, ਨਾਨਕ ਟੇਕ ਗੋਪਾਲ ਕੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਕਟ ਮੋਚ। ਸ਼ੰਤ ਪੈ ਸੰਕਟ ਕਾਟੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦਇਆਲ ਜੀਓ, ਹਰ ਗੁਣ ਆਨੰਦ ਗਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਜੀਓ, ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਅਚਿਤ ਪੁਰਖ ਏਕੋ, ਤਿਸੈ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਗਾ, ਕਰ ਚਰਨ ਮਸਤਕ ਮਿਲ ਲੀਨੇ, ਸਦਾ ਅੰਦਨ ਜਾਗਾ ਜੀਓ, ਪਿੰਡ ਗ੍ਰਹਿ ਥਾਨ ਤਿਸਕਾ, ਤਨ ਜੋਬਨ ਤਨਮਾਲ ਜੀਓ, ਸਦ ਸਦਾ ਬਲ ਜਾਏ ਨਾਨਕ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਜੀਓ। ਸਲੋਕ ਰਸਨਾ ਉਚਰੈ ਹਰ ਹਰੇ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਵਖਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਪਕੜੀ ਟੇਕ ਏਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੱਖੈ ਨਿਦਾਨ। ਸ਼ੰਤ ਸੋ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਭ ਰੱਖ ਕੋ, ਅੰਚਲ ਤਾਂ ਕੈ ਲਾਗ ਜੀਓ, ਭਜ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਦਇਆਲ ਦੇਵ, ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਓਟ ਕੀ ਜੈ ਜੀਓ ਦੀ ਜੈ, ਆਸ ਇੱਕ ਧਰਨੀ ਧਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਹਰ ਨਾਮ ਰੰਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਸਭ ਤਰੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਬੇਕਾਰ ਛੂਟੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਲਾਗੈ ਦਾਗ ਜੀਓ, ਬਲ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ, ਥਿਰ ਜਾਂ ਕਾ ਸੁਹਾਗ ਜੀਓ। ਸਲੋਕ ਧਰਮ ਅਰਥ ਅਰ ਕਾਮ ਮੋਖ, ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਨਾਥ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਮਾਥ। ਸ਼ੰਤ ਸਗਲ ਇੱਛ ਮੇਰੀ ਪੁੰਨੀਆ, ਮਿਲਿਆ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਏ ਜੀਓ, ਅੰਧ ਭਇਆ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ, ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਪ੍ਰਵਿਆਏ ਜੀਓ, ਗ੍ਰਹਿ ਲਾਲ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕਮਾਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਪਮਾ ਕਿਆ ਗਣਾ, ਬੇਅੰਤ ਪੂਰਨ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਦਾਤਾ, ਕਵਨ ਰਸਨਾ ਗੁਣਪਣਾ, ਆਪੇ ਮਿਲਾਏ ਗਹਿ ਕੰਠ ਲਾਏ, ਤਿਸ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਜੀਓ, ਬਲ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਕਰਤੇ, ਸਮੈ ਰਿਆ ਸਮਾਏ ਜੀਓ। ਰਾਗ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਰਣ ਝੁੰਝਣੜਾ ਗਾਓ ਸਖੀ, ਹਰ ਏਕ ਧਿਆਵੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮ ਸੇਵ ਸਖੀ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆੜਾ ਫਲ ਪਾਵੋ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰੁੱਤੀ, ਸਲੋਕ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰ ਬੰਦਨ, ਪ੍ਰਭ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਾਛਉ, ਸਾਧੈ ਤੂਰ ਆਪ ਨਿਵਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਭਜਉ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਭਰਪੂਰ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਾਟਣ ਪੈ ਹਰਣ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਹਰ ਰਾਏ, ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਦੁਖ ਪੰਜਨੋ।

मरत हावे महागर्भ मुठिया जलबाज मछली तड़फड़ावे संग माया रुठिया कर पाप जोनी पै पीत होई दे सासन जाम जियो बिनवंत नानक ओट तेरी राख पूर्ण काम जियो सलोक सरदा लागी संग प्रीत मैं एक तिल रहन ना जाए मन तन अंतर रव रहे नानक सह सुभाए कर गैलीनी सजन जन्म जन्म के मीत चरण दासी कर लई नानक प्रभित चीत शंत रुत बरस सुहेलिया सावन पादवे आनंद जियो कण उनम बुठे जल थल पूरिया मकरंद जियो प्रभ पूर रहया सर्ब ठाई हर नाम नवनित गृह परे सिमर स्वामी अंतर जामी कुल समूहा सब तरे प्रेरंग जागे ने शिदर लागे किरपाल सद बख्शेंद जियो बिनवंत नानक हर कंत पाया सदा मन पावंद जियो सलोक आस प्यासी मैं फिराओ कब पेखा गोपाल है कोई साजन संत जानो नानक प्रभ मिलनहार बिन मिल बे सांत ना उपजै तिल पल रहन ना जाए हर साधे शरणागति नानक आस पुजाए शंत रुत सरद अडंबरो असू कतके हर प्यास जियो खोजंती दर्शन फिरत कब मिलिए गुणताह जियो बिनकंत प्यारे ने सूग सारे हार कंगन त्रिग बना सुंदर सुजान चतर बेती सास बिन जैसे तना ईत ओत दह दिस्या लोकन मन मिलन की प्रभ प्यास जियो बिनवंत नानक तार कृपा मिलो प्रभ गुणताह जियो सलोक जलन बुझी शीतल पए मन तन उपजी सांत नानक प्रभ पूर्ण मिले दुतिया बिनसी प्रांत साध पठाए आप हार हम तुम ते नाही दूर नानक भ्रम पै मिट गए रमन राम भरपूर शंत रुत सिसियर शीतल हर प्रगटे मंगर पोहे जियो जलन बुझी दर्श पाया बिनसे माया त्रोह जियो सब काम पूरे मिल हजूरे हर चरण सेवक सेवया हार डोर सिंगार सब रस गुण गाओ लाखा पेवया पाओ भगत गोविंद बांशत जमना साकै जोहे जियो बिनवंत नानक प्रभ्याप मेली तहना प्रेम बिश हो जियो सलोक हर तन पाया सोहागणी डोलत नाही कीत संत संजोगी नानका गृह प्रगटे प्रभ मीत नाद बिनोद आनंद कोड प्रे प्रीतम संग बने मन बाइथ फल पाया हर नानक नाम पने शंत हिम कर रुत मन पावती माघ फगन गुणवंत जियो सखी सहेली गौ मंगलो गृह आए हर कंत जियो गृह लाल आए मंत आए से सुंदर सोहिया वन त्रैण त्रिपवन पय हरिया देख दर्शन मोहिया मिले स्वामी इच पुन्नी मन जपया निर्मल मंत जियो बिनवंत नानक नित करो रलिया हर मिले श्री तरकंत जियो सलोक संत सहाई जी के पव जल तारनहार सब ते उचे जानिए नानक नाम प्यार जिन जानिया सही तरे से सूरे से बीर नानक तिन बलिहार ने हर जप उतरे तीर शंत चरण विराजत सब ऊपरे मिटिया सगल क्लेश जियो आवन जावन दुख हरे हर भगत किया प्रवेश जियो हर रंग राते सहज माते तिल ना मनते बिसरै तज आप सरणी परे चरणी सर्ब गुण जगदीश्वरै गोविंद गुण निद श्री रंग स्वामी आद कौवा देह जियो बिनवंत नानक मया तारो जुग जुगो एक वेश जियो राम कली महला पहला दखनी ओ अंकार एक ओंकार सतगुर प्रसाद ओ अंकार ब्रह्मा उत्पत ओ अंकार किया जनचित ओ अंकार सैल जुग पय ओ अंकार वेद निर्मय ओ अंकार शब्द उदरे ओ अंकार गुरमुख तरे
ਓ ਨਮ ਅੱਖਰ ਸੁਣੋ ਵਿਚਾਰ, ਓ ਨਮ ਅੱਖਰ ਉਤਰ ਪਵਨ ਸਾਰ, ਸੁਣ ਪਾਂਡੇ ਕਿਆ ਲਿਖੋ ਜੰਜਾਲਾ, ਲਿਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਗੋਪਾਲਾ, ਰਹਾਓ ਸੱਸੈ ਸਭ ਜਗ ਸਹਿਜ ਉਪਾਇਆ, ਤੀਰ ਪਵਨ ਇਕ ਜੋਤੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੈ, ਚੁਣ ਲੈ ਮਾਨਕ ਮੋਤੀ, ਸਮਝੈ ਸੂਝੈ ਪੜ ਪੜ ਬੂਝੈ, ਅੰਤ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਚਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਖੈ ਸਾ ਸਮਾਲੇ, ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਜਗ ਕਾਚਾ, ਤਦੈ ਧਰਮ ਧਰੇ ਧਰਮਾ ਪੁਰ, ਗੁਣਕਾਰੀ ਮਨ ਤੀਰਾ, ਤਦੈ ਧੂਲ ਪੜੈ ਮੁਖ ਮਸਤਕ, ਕੰਚਨ ਭਏ ਮਨੂਰਾ, ਧਨ ਧਰਣੀ ਧਰ ਆਪ ਆਜੋਨੀ, ਤੋਲ ਬੋਲ ਸਚ ਪੂਰਾ, ਕਰਤੇ

चेतन नित नीत चिंतत ही दिशा सब कोए, चेता एक तही सुखोए, चित वसै राचे हर नाए, मुक्त भया पत स्यों कर जाए। छीजे देह खुले एक गंड, छे अन देखो जगहंड, तूप शाव जे समकर जाने, बंधन काट मुक्त कर आने। छाया छूछी जगत पुलाना, लिखिया किरत तुरे परवाना, छीजे जोबन जरुआ सिरकाल, काया छीजे पही सिवाल। जापै आप प्रभु त्यो लोए, जुग जुग दाता अवर ना कोए। ज्यो पावै त्यों राखै राख, जस जाचौ देवै पत साख। जागत जागरा तुद पावा, जा तू मेलै ता तुजै समावा। जय जयकार जपो जगदीश, गुरमत मिलिए बीसा कीस। चख बोलन क्या जग स्यों वाद, चूर मरै देखै प्रमाद। जन्म मुए नहीं जीवन आसा, आए चले पहे आस निरासा। चोर चोर चख माटी रल जाए, काल न चांपै हर गुण गाए। पाई नमन दहर कै नाए, आपे देवै सहे सुभाए। ज्ञानो बोलै आपे बूझै, आपे समझै आपे सूझै। गुर का कहया अंक समावै, निर्मल सूचे साचो पावै। गुर सागर रतनी नहीं तोट, लाल पदार्थ साचा खोट। गुर कहया साकार कमावो, गुर की करनी काहे तावो। नानक गुरमत साच समावो। टूटे ने हो के बोले सही, टूटे बांध हूं दिस गही। टूट प्रीत गई बुरबोल, दुरमत पर हर छाडी टोल। टूटे गंठ पड़े विचार, गुरसबदी कर कार्ज सार। लाहा साच ना आवै तोटा, त्रिपवन ठाकर प्रीत मोटा। ठाको मनुआ रखो ठाए, ठहक मुई अवगन पछताए। ठाकर एक सुबह

अभ्यागत है ना आखिया न जे पर कर भोजन करे न उदर कारण अपने बहले पे करे न अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौण करे न पाल लहन सौ अपना निज कर रहन करे न पौड़ी अंबर तरत विछोड़िया न विच सच्चा असराओ कर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ सब सच्चा हुक्म वरतदा गुरमुख सच समाओ सच्चा आप तख्त सच्चा बह सच्चा करे न्याओ सब सचो सच वरतदा गुरमुख लख लखाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक महला।

रैन आयर मह सब किश है, करमी पल्ले पाए, नानक नौ निद पाई है, जे चले तसैर जाए। महला तीजा, सहजे सतगुर ना सेवियो, विच होमै जन्म विनाश, रसना हरस।

ज्यों भावै तिव हर गुणतास पौड़ी छति जुग वारसा आपे गणत कीनी आपे सिरट सब साजिया नो आप मत दीनी सिमरत शास्त्र साजिया नो पापुन गणत गणीनी जिस बजाए सो बुझसी सच्चे शब्द पतीनी सब आपे आप वरतदा आपे बख्श मिलाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक महला।

जोगी गिर ही जटा बिपूत, आगे पाछै रोवै पूत। जोग न पाया जुगत गवाई, कित कारण सरशाई पाई। नानक काल का एहो प्रवान, आपे आखण आपे जान। महला पहला, हिंदू कह कर हिंदू आवै। सूत जनेऊ पड़ गल पावै, सूत पाए करे बुरियाई। नाता तोता थाए न पाई, मुसलमान करे वड्याई। विण गुर पीरै को थाए न पाई, राहो दसा।

पाई मुंद्रा पाए फिरे संसार जिथे किथे सृजनहार जेते जीते ते वाटाऊ चीरी आई ढिल ना काऊ एथे जाने सो जाय सियाने होर फकर होर फकर हिंदू मुसलमान सबना का दर लेखा होए करनी बाजो तरे ना कोए सचो सच वखाने कोए नानक अगे पुछ ना होए पौड़ी हर का मंदिर आखिए काया कोटगढ़ अंदर लाल जवेहरी गुरमुख हर नाम पढ़ हर का मंदिर शरीर अत सोहना हर हर नाम दिड़ मन मुखे आप खोवायन माया मोह नित कड़ सबना साहब एक है पूरे भाग पाया जाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई सलोक महला पहला ना सत दुखिया ना सत सुखिया ना सत पानी जंत फिरै ना सत मुंड मुंडाई केसी ना सत पड़िया देश फिरै ना सत रुखी बिरखी पत्थर आप तशावै दुख सहै ना सत हस्ती बदे संगल ना सत गाई काओ चरै जिस हथ सिद्ध देवै जे सोई जिसनो दे तस्याए मिलै नानक ताको मिलै वडाई जिस कट पीतर शब्द रवै सब कट मेरे हौ सब ना अंदर जिसै खुवाई तिस कौन कहै जिसै दिखाला वाटड़ी तिसै भुलावै कौन जिसै भुलाई पंध से।

अहन से अंतर रहते आनो ते बैरागी सत समान। बोले परथर सत स्वरूप परम तंत में रेख न रूप। महला पहला। क्यों मरे मंदा क्यों जीवे जुगत। कन पड़ाए क्या खाजे भुगत। आस्त नास्त एको नाओ कौन सो अखर जित रह आओ। धूप छाव जे सम कर रह ता नानक आखे गुर को कह। छे वरतारे वरतै पूत ना संसारी ना ओ दूत। निरंकार जो रह समाए काहे पीखिया मंगण जाए। पौड़ी हर मंदिर सोई आखिया जिथों हर जाता। मानस देह गुर बचनी पाया सब आत्म राम पछाता। बाहर मूल ना खोजी है कर्म है विधाता। मन मुख हर मंदिर की सार ना जाननी तिन्नी जन्म गवाता। सब मैं एक वर्तदा गुर शब्दी पाया जाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा मूर्ख होवे सो सुने। मूर्ख का कहना मूर्ख के क्या लखन है क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओहो जे मुग्ध है अहंकारे मरना। एतक माने सदा दुख दुखी मैं रहना। अत प्यारा पवे खूहे क्यों संयम करना। गुरमुख होए सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना। हर नाम जपे आप उदरे ओस पिछे डुबदे पी तरना। नानक जो तिस पावे सो करे जो दे सो सहना। महला पहला। नानक आखैरे मना सुनिए सिख सही। लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही। तलबा पवसने आकिया बाकी जना रही। अजराइल फरेस्ता होसी आए तई। आवन जान न सुजई पीड़ी गली फही। कूड़ ने खुट्टे नानका ओड़क सच रही। पौड़ी हर का सब शरीर है हर रवर या सब आपै। हर की कीमत ना पवै किश कहन ना जापै। गुर प्रसादी सालाही है हर भक्ति रापै। सब मंतन हरिया होया अहंकार गवापै। सब किश हर का खेल है गुरमुख किसे बुझाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला। सहंसर दान दे इंद्र रोवाया परशुराम रोवे घर आया। अजय सो रोवे पीखिया खाए ऐसी दरगह मिले सजाए। रोवे राम निकाला पया सीता लखमण विछड़ गया। रोवे दैसर लंक गवाए जिन सीता आंदी डौरू वाए। रोवे पांडव पय मजूर जिनकै स्वामी रहत है दूर। रोवे जन्मे जा खोए गया एकी कारण पापी पया। रोवे शेख मसाइक पीर अंतकाल मत लागे पीड़। रोवे राजे कन पड़ाए कर कर मांगे पीखिया जाए। रोवे किरपन संचय तन जाए पंडित रोवे ज्ञान गवाए। बाली रोवे नाहे पतार नानक दुखिया सब संसार। मन्ने नाओ सोई जन जाए औरी कर्म ना लेखे लाए। महला दूजा। जप तप सब किश मन्ने अवरकारा सब बाद। नानक मन्या मन्या बुझिए गुर प्रसाद। पौड़ी काया हंस तुर मेल करते लिख पाया। सब मैं गुप्त वर्तदा गुरमुख प्रगटाया। गुण गावे गुण उच्चरे गुण महे समाया। सच्ची बाणी सच है सच मेल मिलाया। सब किश

रामकली की वार महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला पंजवा जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ। हर नामो मंत्र दरड़ाएंदा कटे हों मैं रोग नानक सतगुर तिना मिलाया जिन्ना तुरे पया संजोग। महला पंजवा एक सज्जन सब सज्जना एक वैरी सब वाद गुरपुर देख लिया विणना मैं सब बाद। साकत दुर्जन परमिया जो लगे दूजे साध जन नानक है प्रभु जिया गुर सतगुर कै प्रसाद। पौड़ी थटन हारे थाट आपे ही थटिया आपे पूरा साहो आपे ही खटिया आपे करपा सार आपे रंग रटिया कुदरत कीमना पाए अलख ब्रह्मटिया। अगम अथाह बेअंत परे प्रटिया आपे वड पात साहो आप वजीर टिया। कोई न जाने कीम केवड मटिया सच्चा साहब आप गुरमुख प्रगटिया। सलोक महला पंजवा सुन सज्जन प्रीतम मेरे आ मैं सतगुर देहो देखाल हों तिस देवा मन अपना नित हृदय रखा समाल। एकस सतगुर बाहरा त्रिक जीवन संसार जन नानक सतगुर तिना मिलायोन जिन सदही वरतै नाल। महला पंजवा मेरा अंतर लोचा मिलन की क्यों पावा प्रभ तोहे। कोई ऐसा सज्जन लोड़ लहो जो मिले प्रीतम मोहे गुरपुरै मिलाया जत देखा तत सोए जन नानक सो प्रभ सेवया तिस जेवड़िया वर ना कोए। पौड़ी देवन हार दा तार कित मुख सालाही है जिस रखे कृपा तार रिजक समाही है। कोय न किस ही वस सब ना एक तार पाले बालक वांग देके आप कर करदा अनंत विनोद किशु ना जानी है। सर्व तार समरथ हों तिस कुर्बानी है। गाइए रात दिनंत गावन जोगया जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस भोगया। सलोक महला पंजवा भीड़ो मोकलाई की तियान सब रखे कुटुंब नाल कार्ज आप सवारियान सो प्रभ सदा संभाल। प्रभ मात पिता कंठ लाएंदा लहुड़े बालक पाल दयाल होए सब जी जंतर हर नानक नदर निहाल। महला पंजवा विण तुद होर जे मंगना सिर दुखा कै दुख देह नाम संतोखिया उतरै मन की भुख। गुरवण तिण हरिया कीतिया नानक क्या मनुख। पौड़ी सो ऐसा दातार मनो ना विसरै कड़ी ना मोहत चसा तिस बिन ना सरै। अंतर बाहर संग क्या को लुक करै जिस पत रखै आप सो भव जल तरै। भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै सो पूरा प्रधान जिसनो बल धरै। जिसै जराए आप सोई अजर जरै तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमंत्रै। सलोक महला पंजवा तन सो राग सुरंगड़े अलापत सब तिख जाए तन सो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जपदे नाउ। जिन्नी एक मन एक आराध्या तिन सदबलिहारै जाओ तिन की धूड़ हम बांश दे करमी पल्ले पाए। जो रत्ते रंग गोविंद कै हौ सदबलिहार।

जन नानक पाया अगम रूप अंत ना काहूं जाए महला पंजवा तन सो वेला कड़ी तन तन मूरत पलसार तन सो दिन सो संजोगड़ा जित डिठा गुरदरसार मन किया इच्छा पूरिया हर पाया अगमा पार हमें टुटा मोहड़ा एक सच नाम आधार जन नानक लगा सेवार उदरिया सगल संसार पौड़ी सिफत सलाहन भगत विरले दितियां सौपे जिस भंडार फिर पुछ ना लीतियां जिसनों लगा रंग सो रंग रत्या ओना एको नाम आधार इका उन पत्या ओना पिछे जग पुंचे पो गई ओना प्यारा रब ओना हां जो गई जिस मिलिया गुरे आए तिन प्रभ जानिया हम बलिहारी तेनू जे खसमै पाणिया सलोक महला पंजवा हर एक सह नाल मैं दोस्ती हर एक सह नाल मैं रंग हर एक को मेरा सज्जनो हर एक सह नाल मैं संग हर एक सह नाल मैं गोष्टे मुह मैला करे ना भंग जाने बिरथा जी की कदे ना मुड़े रंग हर एको मेरा मसलती पन्नन कण समरथ हर एको मेरा दातार है सिर दातिया जगहत हर एक सह दी मैं टेक है जो सिर सबना समरथ सतगुर संत मिलाया मस्तक तर कै हथ वड्डा साहिब गुरु मिलाया जिन तारिया सगल जगत मन किया इच्छा पूरियां पाया तुर संजोग नानक पाया सच नाम सदी भोगे भोग महला पंजवां।

व्यापया दुर्मत कबुद कमूड़ा मन लागा तस्मोहा ठगै सेती ठगरा ले आया साथ पे इको जेहा। सतगुर सराफ नदरी विख दो कड़ै ता उगड़े आया लोहा बहु तेरी थाई रलाए रलाए दिता उगड़िया पड़दा अगे आए खलोहा सतगुर की जे सरणी आवै फिर मनूरो कंचन होहा। सतगुर निर्वैर पुत्र सत्र समाने औगण कटे करे सुध देहा नानक जिस तुर मस्तक होवै लिखिया ते सतगुर नाल सनेहा अमृत बाणी सतगुर पूरे की जिस कृपाल होवै तिस हृदय वसेहा आवन जाना तिसका कटी है सदा सदा सुख होहा पौड़ी जो तुद पाणा जंत सो तुद बुझई जो तुद पाणा जंत सो दर गै सिजई जिसनो तेरी नदर हम मैं तिस गई जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई जिसकै स्वामी वल निरपव सो पई जिसनो तू कृपाल सच्चा सोथई जिसनो तेरी माया ना पोहै अगनई तिसनो सदा दयाल जिन गुर ते मत लई श्लोक महला पंजवा कर कृपा कृपाल आपे बख्श लै सदा सदा।

68 तीर्थ गुरु दिखाए कठि पितर नाओगो, पंच सहाई जन की शोभा, पलो पलो ना कहावोगो, नामा कह चित हर स्यो राता, सुन समाध समाओगो। माय न होती बाप न होता, कर्म न होती काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कवन कहां ते आया।

पानी पवन में लाया, शास्त्र ना होता वेद ना होता कर्म कहां ते आया। खेचर पूचर तुलसी माला गुर प्रसादी पाया, नामा प्रणवै परम तत है सतगुरु होए लिखाया। आराम कली कर दूजा बनारसी तप करे, उल्ट तीर्थ मरे अग्न दह काया कल्प की जय। असमेध जग की जय सोना गर्भ दान दी जय। राम नाम सर तउ न पूजय छोड़ छोड़ रे पाखंडी, मन कपट न की जय हर का नाम नित नित ली जय। रहाओ गंगा जाओ गोदावर जाइय, कुंभ जाओ केदार नहाइय, गोमती सहस गौ दान की जय। कोट जाओ तीर्थ करे तन जाओ हिवाले गारे, राम नाम सर तउ न पूजय। अस दान गज दान सहजा नारी भूम दान, ऐसो दान नित नित की जय। आत्म जाओ निर्म

निर्मल निर्वाण पद चीन लीजै। जथ रथ राय नंद राजा मेरा राम चंद, प्रणवै नामा तत रस अमृत पीजै। राम कली बाणी रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनपौ पाओ न दर्श। लोहा कंचन हिरन होए कैसे, जौ पारसै नाम परसै। देव संसय गांठ ना छूटे, काम क्रोध माया मद मत्सर। इन पंचों मिल लूटे रहाओ, हम बड कब कुलीन हम पंडित। हम जोगी सन्यासी ज्ञानी गुनी सूर हम दाते। एह बुद्ध कबै ना नासी, कहो रविदास समय सबै नहीं समझस। भूल परे जैसे बौरे, मोहे आधार नाम नारायण। जीवन प्राण तन मोरे, राम कली बाणी बेणी जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एड़ा पिंगलाए और सुख मना, तीन बसाए कठाई। बेणी संगम तह पिराग, मन मज्जन करे तिथाई। संतो तहां निरंजन राम है, गुरगम चीने बिरला कोए। तहां निरंजन रमैया होए रहाओ, देव स्थान क्या निशानी। तह बाजे सबदा नाहद बाणी, तह चांदना सूरज पौन ना पानी। साखी जागी गुरमुख जानी, उपजै ज्ञान दुरमत शीजै। अमृत रस गगन अंतर पीजै, एस कला जो जाने पेओ। पेटे तास परम गुरदेओ, दसम द्वारा अगम अपारा। परम पुरख की घाटी, ऊपर हाट हाट पर आला। आले पीतर थाती, जागत रह सो कवो ना सोवै। तीन तलोक समाद पलोवै, बीज मंत्र लै हिरदय रह। मनुआ उल्ट सुन महंग है, जागत रह न अलिया पख। पांचों इंद्री बस कर रख, गुर की साखी राख चीत। मन तन अर्पै कृष्ण प्रीत, कर पल्लव साखा बिचारे। अपना जन्म न जुए हारे, असर नदी का बंद है मूल। पच्छम फेर चढ़ावे सूर, अजर जर है सो निजर चर। जगन्नाथ्यो गोष्ठ करे, चौमुख दीवा जो द्वार। पलुवंत मूल बिचकार, सर्व कलाले आपे रह। मन मान करत नाम है गुह, मस्तक पद्म द्वाले मणि। माहे निरंजन त्रिपवन धनी, पंचे शब्द निर्मायल बाजे। टुलके चवर शंख कान गाजे, दल मल दैतो गुरमुख ज्ञान। बेणी जाचे तेरा नाम, राग नट नारायण।

किल विख दोख गए सब निकर ज्यो पानी मैल हरे। खिन खिन नर नारायण गावै मुख बोलै नर नर हरे। पंच दोख असाध नगर मैं एक खिन पल दूर करे। वडभागी हर नाम ते आवै हर के भगत हरे। तिनकी संगत देह प्रभ जाचौ मैं मूड मुग्ध निस्तरे। किरपा किरपा धार जग जीवन रख ले वो शरण परे। नानक जन तुमरी शरण आई हर राखो लाज हरे। नट महला चौथा राम जप जन रामे नाम रले। राम नाम जप्यो गुर बचनी हर तारी हर कृपले। रहाओ हर हर अगमया गोचर स्वामी जन जप मिल सलल सलले। हर के संत मिल राम रस पाया हम जन के बल बलले। परखोत्म हर नाम जन गायो सब दालद दुख दलले। विच देही दोख असाध पंच तातु हर किए खिन परले। हर के संत मन प्रीत लगाई जो देखे सस कमले। उनवै कहन कहन कहन हर गर जय मन बिकसै मोर मुरले। हमरे स्वामी लोच हम लाई हम जीवे देख हर मिले। जन नानक हर अमल हर लाए हर मेलो अंध भले। नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम सखे। गुर प्रसादी हर नाम ते आयो हम सतगुर चरण पखे। रहाओ उत्तम जगन्नाथ जगदीशरो हम पापी शरण रखे। तुम वड पुरख दीन दुख भंजनो हर दियो नाम मुखे। हर गुण ऊच नीच हम गाए गुर सतगुर संग सखे। जो चंदन संग बसे निम बिरखा गुण चंदन के बसखे। हमरे अवगन बिखिया बिखै के बहु बार बार निमखे। अवगन आरे पाथर पारे हर तारे संग जनखे। जिनको तुम्हार रखो स्वामी सब तिनके पाप करखे। जन नानक के दयाल प्रभ स्वामी तुम दुष्ट तारे हरणखे। नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर राम रंगे। हर हर कृपा करी जगदीशर हर त्यायो जन पग लगे। रहाओ जन्म जन्म के भूल चूक हम अब आए प्रभ शरणगे। तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी हम राखो वड पापगे। तुमरी संगत हर को ना उधरे हो प्रभ किए पतत पवगे। गुण गावत शिपा दुष्टारे हो प्रभ राखी पैज जनगे। जो तुमरे गुण गावे स्वामी हाँ बल बल बल तिनगे। पवन पवन पवित्र सब किए जह तूर परी जन पगे। तुमरे गुण प्रभ कह ना सके हम तुम वड वड पुरख वडगे। जन नानक कहो दया प्रभ धारो हम सेवै तुम जन पगे। नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम मने। जगन्नाथ कृपा प्रभ धारी मत गुरमत नाम बने। रहाओ हर जन हर जस हर हर गायो उपदेश गुरु गुर सुने। किल विख नाम किल विख पाप नाम हर काटे जब खेत किरसान लुने। तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानो हम कह ना सके हर गुने। जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही गुण जानो प्रभ अपने। माया फास बंद बहु बंदे हर जप्यो खुल खुलने। ज्यों जल कुंचर तंदुए बंदो हर चेत्यो मोख मुखने। स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो जुग जुगने। तुमरी था पाई नहीं पावे जन नानके प्रभ वडने। नट महला चौथा मेरे मानो कल कीर्त हर प्रवणे। हर हर दयाल दया प्रभ धारी लग सतगुर हर जपने। रहाओ हर तुम वड अगम गोचर स्वामी सब त्यावै हर रुमने। जिनको तुमरे वड कटाख है ते गुरमुख हर सिमरने। इहो पर पंच किया प्रभ स्वामी सब जग जीवन जुगने। ज्यो सलल सलल उठे बो लहरी मिल सलल सलल समणे।
जो प्रभु किया सो तुम ही जाना, हम न जाही हर गहने, हम बारक कौर दुस्त धारो, हम करे प्रभु सिमरणे। तुम जल निधार मान सरोवर, जो सेवै सब फलने, जन नानक हर हर हर हर बांचे, हर देवो कर कृपणे। नट नारायण महला चौथा पड़ताल, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे मन सेव सफल हर काल, ले गुर पगरे नरवाल, सब दाल दुपाई दुख दाल, हर हो नदर निहाल। रहाओ हर का गृहो रे आप सवारो, हर रंग रंग महल बेअंत, लाल लाल हर लाल। हरे अपनी कृपा करी आप गृह आयो, हम हर की गुर की है बसीठी, हम हर देखे पई निहाल निहाल निहाल।

नारी पुरख पुरख सब नारी सब एको पुरख मुरारे संत जना की रेन मन पाई मिल हर जन हर निस्तारे ग्राम ग्राम नगर सब फिरया हृदय अंतर हर जन पारे सरदा सरदा उपाय मिलाए मोको हर गुर गुर निस्तारे पवन सूत सब नीका करया सतगुर शब्द विचारे निज कर जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारे तौ गुण ईस वर्ण नहीं सको तुम मंदर हम निक कीरे नानक कृपा।

थोर कही हर अगम अगम अगाध तुही ऊच मूचो बहवा पार सिमरत नानक तरे सार माली गौड़ा महला पंजवा इही हमारा सफल काज अपने दास को लेहो निवाज रहाओ चरण संतै माथ मोर नैन दर्स पेखो निस्पोर हस्त हमरे संत टहलो प्राण मन तन संत बहलो संत संग मेरे मन की प्रीत संत गुण बसै मेरा चीत संत आज्ञा मन है मीठ मेरा कमल बिकसै संत डीठ संत संग मेरा होए निवास संतन की मोह बहुत प्यास संत बचन मेरे मन है मंत संत प्रसाद मेरे बिखै हंत मुकत जुगत एहा निधान प्रभ दयाल मोहे देवो दान नानक कहो।

गया सो जो बनो धन पछताणी, तू दाना साहिब सिर मेरा, खिजमत करी जन बंदा तेरा, भणत नानक अंदेसा यही, बिन दर्शन कैसे रवो स्नेही। मारू महला पहला, मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाव सुपागा, गुर की बचनी हट बेकाना, जित लाया तित लागा, तेरे लाले क्या चतराई, साहिब का हुक्म ना करना जाई रहाओ। मां लाली प्यो लाला मेरा, हाँ लाले का जाया, लाली नाचे लाला गावे, भगत करो तेरी राया, पिया।

तौ दीवाना जानिए जा एकाकार कमाए, हुक्म पछाणे खसम का दूजी अवर सियाण पकाए। तौ दीवाना जानिए जा साहिब तरे प्यार, मंदा जाने आप कहो अवर भला संसार। मारू महला पहला, एहो तन सरबरया भरपूर, मनुख फिर से जाने दूर। सो तन वखर ना वरदै हमारा, जिस तू देहे।

हेत के बंधन तोड़ ना साके ता जम करे खुवारी जियो। ना हो करता ना मैं किया अमृत नाम सतगुर दिया। जिस तू देह तसै क्या चारा नानक शरण तुम्हारी जियो। मारू महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जह बैसाल तै बैसा स्वामी जय भेजै तै जावा। सब नगरी मैं एको राजा सबे पवित है थावा। बाबा देह वसा सच गावा जाते सहजे सही समावा रहाओ। बुरा भला किश आपस ते जानिया ए ही सगल विकारा। एहो फरमाया खसम का होवा वरतै ओ संसारा। इंद्री तात सबल कहियत है इंद्री किस्ते होई। आपे खेल करे सब करता ऐसा बुझे कोई। गुरप्रसादी एक लिव लागी दुबदा तदे बिनासी। ज्योतिष पाणा सो सतकर्मा नया काटी जमकी फासी। पणत नानक लेखा मांगे कवना जा चूका मन अभमाना। तास तास धर्म राय जपत है पै सच्चे की सरना। मारू महला तीजा आवन जाना ना थी निज करवासा होए। सच खजाना बख्शिया आपे जाने सोए। ए मन हर जियो चेत तू मनो तज विकार। गुर कै शब्द ते आए तू ता सच लगी प्यार रहाओ। ऐथै नावो भुलिया फिर हथ कथाऊ ना पाए। जोनी सब पवाईयन बिष्टा माए समाए। वडभागी गुर पाया पूर्व लिखिया माए। अंदर सच्ची भगत कर सच्चा ले मिलाए। आपे सृष्ट सब साजियां नू आपे नजर करे। नानक नाम वड़ियाईयां जय भावें तैं दे।

हर पाया हलत पलत पत राख रहाओ हर हर नाम ते आई है हर कीर्त गुरमुख चाख तन धरती हर बीजी है विच संगत हर प्रभ राख अमृत हर हर नाम है गुरपूरे हर अस चाख मन मुख तृष्णा भर रहे मन आसा दह दस बहु लाख बिन नाम है त्रिग जीव दे विच विष्टा मन मुख राख होए आवै जाए पवाई है बहु जोनी दुर्गंध पाख त्राहे त्राहे सरणागति हर दया तार प्रभ राख संत संगत में लाभ कर हर नाम मिले पत साख हर हर नाम तन पाया जन नानक गुरमत पाख मारू महला चौथा कर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर भगत भरे भंडारा गुरमुख राम करे निस्तारा जिसनों कृपा करे मेरा स्वामी सो हर के गुण गावे जियो

जप हर हर नाम छिड़ावे जियो रहाओ सुख सागर अमृत हर नाओ मंगत जन जाचे हर देहो पसाओ हर सत सत सदा हर सत मेरे मन भावे जियो नवे छिद्र स्रवै अपवित्रा बोल हर नाम पवित्र सब किता जे हर सो प्रसन्न होवे मेरा स्वामी हर सिमरत मन लै जावे जियो माया मोह

तू सर्वत्र तेरा सब कोई, जो तू करे सोई प्रभ होई। जन नानक गुण गावे बेचारा, हर पावे हर थाए पावे जियो। मारू महला चौथा, हर हर नाम जपो मन मेरे, सब किल विख कट है हर तेरे। हर तन राखो हर तन संचो, हर चलद्या नाल सिखाई जियो। जिसनों कृपा करे सो त्यावै, नित हर जप जापै जप हर सुख पावै। गुर प्रसादी हर रस आवै, जप हर हर पार लंघाई जियो। रहाओ निरपो निरंकार सतनाम, जग में सृष्टि उत्तम काम। दुश्मन दूत जमकाल ठेह मारो, हर सेवक नेड़ न जाई जियो। जिस उपर हर का मन मानिया, सो सेवक चहो जुग चहो कुंट जानिया।

पाती किया दिन सो सब राती, वन त्रैण त्र भवन पानी, चार बेद चारे खानी, खंड दीप सब लोवा, एक वावे ते सब होवा। करण हारा बूजो रे सतगुर मिले तासु जै रे रहाओ, त्रै गुण किया पसारा नरक सुरग अवतारा, हों मैं आवै जाई मन टिकन ना पावै राई, वाजगुरु गोबारा मिल सतगुर निस्तारा, हां हों कर्म कुमाने ते ते बंद गलाने, मेरी मेरी तारी ओहा पैर लोहारी, सो गुर मिल एक पछाण है जिस होवै पाग मथाण है, सो मिलिया जे हर मन पाया, सो पूला जे प्रभु पुलाया, नै आपो मूर्ख ज्ञानी जे करावे सो नाम वखानी, तेरा अंत ना पारा वारा, जन नानक सद बलिहारा।

पूर्ण अत्र त्याग आए सहज समाध सुभाए हर भंडार हाथ आया नानक गुरते पाया। मारू महला पंजवां कर छेवां दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद छोड़ सगल सियाण पा मिलसा त्याग गुमान अवर सब किश मिथिया रसना राम राम वखान मेरे मन करन सुन हर नाम मिटह अग तेरे जन्म जन्म के कवन बपरो जाम रहाओ दुख दीन ना पाओ ब्यापै मिले सुख विश्राम गुर प्रसाद नानक बखान हर भजन तत् ज्ञान। मारू महला पंजवा जिन्नी नाम विसारिया से होत देखे खेह पुत्र मित्र बिलास बनता टूटते ए नेह मेरे मन नाम नित नित लेह जलत नाही अग्न सागर सूख मंतन देह रहाओ बिरख छाया जैसे बिनसत पवन झूलत में हर भगत दृढ़ मिल साध नानक तेरा काम आवत एह। मारू महला पंजवा पुरख पूर्ण सुखै दाता संग बस्तो नीत मरे ना आवे ना जाए बिनसै व्यापत उसन ना सीत मेरे मन नाम स्यों कर प्रीत चेत मन में हर हर निदाना एह निर्मल दीत रहाओ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै ते सीद नवल नवतन चतर सुंदर मन नानक ते संग बीद। मारू महला पंजवा चलत बैस्त सोवत जागत गुरमंत्र हृदय चितार चरण सरन पज संग साधु भव सागर उतरै पार मेरे मन नाम हृदय तार कर प्रीत मन तन लाए हर स्यों अवर सगल विसार रहाओ जियो मन तन प्राण प्रभ के तू अपने आप निवार गोविंद भज सब स्वार्थ पूरे नानक कबो ना हार। मारू महला पंजवा तज आप बिनसी ताप रेण साधु थियो तिसै प्राप्त नाम तेरा कर कृपा जिस दियो मेरे मन नाम अमृत पियो आन साध विसार होचे अमर जुग जुग जियो रहाओ नाम एक रस रंग नामा नाम लागी लियो मीत साजन सखा बंदपो हर एक नानक कियो। मारू महला पंजवा प्रतपाल माता उदर राख लगन देत ना सेक सोई स्वामी इहां राख बूध बूझ बुद्ध बबेक मेरे मन नाम की कर टेक तिसे बूझ जिंतु किया प्रभ करण करने एक रहाओ चेत मन में तज सियाणप छोड़ सगले पेख सिमर हर हर सदा नानक तरे कई अनेक। मारू महला पंजवा पतत पावन

साध संगत गुण उचारण हर नाम अमृत पाथ करो कृपा मुरार माधव सुन नानक जी वै गाथ मारू अंजलि महला पंजवां कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद संजोग विजोग तुरो ही हुआ पंच तात कर पुतला किया साहे कै फुरमायड़ जी देही विच जियो आए पया जिथे अगन पखे पड़हारे ऊर्द मुख मह गोबारे सास सास माले सोई उथे खसम छड़ाए लया विचों गर्भ निकल आया खसम सार दुनी चितलाया आवै जाए पवाई है जोनी रहना किथि थाए पया मेहरवान रख लयन आपे जी जंत सब तिसके थापे जन्म पदार्थ जिन चलिया नानक आया सो परवान थिया मारू महला पंजवा वैदो ना वाई भैनो ना पाई एको सहाई राम हे कीता जिसो होवै पापा मलो धोवै सो सिमरो प्रधान हे घट घटे वासी सर्व निवासी अस्थिर जाका थान है आवै ना जावै संगे समावै पूर्ण जाका काम है भगत जना कौ राखण हारा संत जीवै जब प्राण आधारा करण कारण समरथ स्वामी नानक तिस कुर्बान है एक ओवंकार सतगुर प्रसाद मारू महला नावा हर को नाम सदा सुखदाई जा कहो सिमर अजा मल उदरियो गन का हूं गत पाई रहाओ पंचाली कौ राज सभा मैं राम नाम सुदयाई ताको दुख हरियो करना मैं अपनी पैज बढ़ाई जेह नर जस कृपा निध गायो ताको पयो सहाई कहो नानक मैं ही परोसै गई आन सरनाई मारू महला नावा अब मैं कहां करो री माई सगल जन्म बिख्यन स्यों खोया सिमरियो नाहे कनाई रहाओ काल फास जब घर मैं मिली तेह सुध सब बिसराई राम नाम बिन या संकट मैं को अब होत सहाई जो संपत अपनी करमानी छन मैं पई पराई कहो नानक यह सोच रही मन हर जस कबहू ना गाई मारू महला नावा माई मैं मन को मान ना त्याग्यो माया के मद जन्म सिरायो राम भजन नहीं लाग्यो रहाओ जम को डंड परयो सिर उपर तब सोभ तै जाग्यो कहां हो तो अब कै पछताए छूटत नाहन भाग्यो एह चिंता उपजी घट मैं जब गुर चरणन अनुराग्यो सफल जन्म नानक तब हुआ जाओ प्रभ जस

सतगुरु है बोहे था शब्द लंगावन हार, तिथे पवना पाप को ना जल ना आकार, तिथे सच्चा सच नाए पव जल तारन हार, गुरमुख लंगे से पार पए सच्चे सुलिव ला।

बोली माया तारी, कर कर मांगे जग प्रभु दय मन अंधे पतहारी, परम भुलाना शब्द ना चीने जुए बाजी हारी। अंतर अगना गुर बिन बूझे बाहर पुअर तापे, गुर सेवा बिन भगत ना होवी क्यों कर चीन से आपे। निंदा कर कर नरक निवासी अंतर आत्म जापे, आठ साठ तीर्थ परम विगूचे क्यों मल तोपे पापे। शानी खाक विपूत चढ़ाई माया का मग जो है, अंतर बाहर एक न जाने साच कहे ते शो है। पाठ पढ़े मुख झूठो बोले निगुरे की मत यो है, नाम न जपई क्यों सुख पावे बिन नावे क्यों सो है। मूंड मुडाए जटा सिख बांधी मोन रहे अभमाना, मनवा डोले दे दस्तावे बिन रत आत्म ज्ञाना। अमृत छोड़ महा बिख पीवे माया का देवाना, कीर्तना मिटई हुक्म न बूझे पशुआ माहे समाना। हाथ कमंडल कापड़िया मंत्र सना उपजी पारी, स्त्री तज कर काम व्यापिया चित लाया पर नारी। सिख करे कर शब्द ना चीने लंपट है बाजारी, अंतर बिख बाहर ने प्राती ताजम करे खुवारी। सो सन्यासी जो सतगुर सेवै विचों आप गवाए, शादन भोजन की आस न करे अचिंत मिले सो पाए। बकै न बोले खिमा तन संग्रह तामस नाम जलाए, तन गिरी सन्यासी जोगी जे हर चरणी चित लाए। आस निरास रह सन्यासी एक सो लिव लाए, हर रस पीवै ता सांत आवै नि कर ताड़ी लाए। मनुआ न डोले गुरमुख बूझै तावत वर्ज रहाए, गृह शरीर गुरमती खोजे नाम पदार्थ पाए। ब्रह्मा विष्णु महेश श्रेष्ठ नावरते विचारी, खानी बाणी गगन पताली जनता जोत तुम्हारी। सब सुख मुक्त नाम तुन बाणी सच नाम उतारी, नाम बिना ने छूट स्नानक साची तर तू तारी। मारू महला पहला मात पिता संजोग पाए, रखत बिंद मिल पिंड करे। अंतर गर्भ उर्द लिव लागी सो प्रभ सारे दात करे। संसार भवजल क्यों तरे गुरमुख नाम निरंजन पाईए, अफरियो पार अफार टरे रहाओ। ते गुण विसर गए अपराधी मैं बौरा क्या करो हरे, तू दाता दयाल सवै सिर अहनिस दात समार करे। चार पदार्थ लै जग जन्मया शिव शक्ति करवास धरे, लागी भूख माया मग जो है। मुक्त पदार्थ मोहे खरे करन पलाव करे नहीं पावे, इत्ते उत ढूंढत थाक परे। काम क्रोध अहंकार व्यापे कूड़ कडंब स्यो प्रीत करे। खावे भोगे सुन सुन देखे पहर दिखावे काल करे, बिन गुर शब्द ना आप पछाणे बिन हर नाम ना काल टरे। जेता मोह हमे कर भूले मेरी मेरी करते शीन खरे, तन तन बिन सह सहसा सहसा फिर पछतावे मुख तूर परे। बिरद भया जोबन तन खिसिया कफ कंठ बिरुदो नैनो नीर टरे। चरण रहे कर कंपन लागे सागत राम नारदय हरे। सुरत गई काली हूं तौले किसे ना पावे रखे ओ करे। बिसरत नाम ऐसे दोख लागे जब मार समारे नरक खरे। पूर्व जन्म को लेख ना मिटई जन्म मरे का को दोष धरे। बिन गुर बाद जीवन होर मरना बिन गुर शब्द जन्म जरे। खुशी खुआर पय रस भोगण फोकट कर्म विकार करे। नाम विसार लोभ मूल खोयो सिर धर्म राय का दंड परे। गुरमुख राम नाम गुण गावे जाको हर प्रभ नदर करे। ते निर्मल पुरख परंपर पूरे ते जग में गुर गोविंद हरे। हर सिमरो गुर बचन समारो संगत हर जन पाओ करे। हर जन गुर प्रधान दुआर नानक तिन जन की रेण हरे। एको अंकार सतगुर प्रसाद मारू काफी महला पहला, कर दूजा आवो वंजो डुमनी किती मित्र करे। ओ सातन टोई नाल है वाडी क्यों तीरे ओ।
ਮੈਂਡਾ ਮਨ ਰਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿਰ ਨਾਲ ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੁਮਾਈ ਖੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਭੋਰੀ ਨਜ਼ਰ।

ना जाना सियाणा सदा साहेब कै रंगे राता अंधन नाम वखाणा। बाबा मूर्ख हां नावे बल जाओ तू करता तू दाना बीना तेरा नाम तराओ रहाओ। मूर्ख सियाणा एक है एक जो दोए नाओ मूर्खा सिर मूर्ख है जे मने नाही नाओ। गुरुद्वारे नाउ पाईए बिन सतगुर पल्लै ना पाए सतगुर कै भाणै मन वसै ता अहनस।

सोई सोहेला पालिया ग्रह राज में नरको दास करोदा बहुविध वेद पाठ सब सोदा देही मैं जो रह अलिपता तिस जन की पूर्ण कहली है जागत सूता परम विगुता बिन गुर मुक्त ना होइए मीता साध संग टुटै हो बंधन एको एक निहाली है कर्म करै ता बंदा नह करै ता निंदा मोह मगन मन व्याप्या चिंदा गुर प्रसाद सुख दुख समझाने घट घट राम हाली है संसार में सहसा व्यापै अकथ कथा गोचर नहीं जापै जिसे बुझाए सोई बुझै ओ बालक वांगी पाली है छोड़ बह तौ छूटै नाही जौ सिंचै तौ पौ मन माही इस ही मह जिसकी पत राखै तिस साधु चौर टाली है जो सूरा तिस ही होए मरना जो भागै तिस जोनी फिरना जो वरताए सोई पल मानै बुझ हुक्मै दुरमत जाली है जित जित लावै तित तित लगना कर कर वेखै अपने जचना नानके पूर्ण सुखदा ते तू देहता नाम समाली है मारू महला पंजवा बिरखै हेठ सब जंत इकट्ठे एक तत्ते एक बोलन मिठे अस्त्या दोत भया उठ चले ज्यो ज्यो औध विहानिया पाप करेंदड़ सर पर मुठे अजरा ईल फड़े फड़ कुठे दोजग पाए सृजनहार लेखा मंगै बाणिया संग न कोई भैया बेबा माल जोबन धन छोड़ वंजेसा करण करीम ना जातो करता तिल पीड़े जो कहानिया खुश खुश लैंदा वस्त पराई वेखै सुने तेरे नाल खुदाई दुनिया लभ पया खात अंदर अगली गल ना जानिया जम जम मरै मरै फिर जम्मै बहुत सजाए।

आपे पौन पानी बेसंतर आपे मेल मिलाई है, आपे सस सूरा पूरो पूरा आपे ज्ञान त्यान गुरसूरा, काल जाल जम जो है ना सकै साचे सुन लिवलाई है, आपे पुरख आपे ही नारी आपे पासा आपे सारी, आपे पेड़ बांधी जा खेल आपे कीमत पाई है, आपे पवर फुल फल तारवर आपे जल थल सागर सरवर, आपे मशकश करनी कर तेरा रूप ना लखना जाई है, आपे दिन सो आपे ही रहनी आप तीजै गुर की बैनी, आद जुगाद अनाहद अंधनो कट कट शब्द रजाई है, आपे रतना नूपा मोलो आपे परखे पूरा तोलो, आपे किस ही कस बख्से आपे दे लै पाई है, आपे तनख आपे सरबाणा आपे सुगण स्वरूप सियाणा, कहता बगता सुनता सोई आपे बणत बनाई है, पौन गुरु पाणी पित जाता उधर संजोगी धरती माता, रैन दिन सदोए दाई दाया जाखे लैखे लाई है, आपे मछली आपे जाला आपे गऊ आपे रखवाला, सर्ब जिया जग जो तुम्हारी जैसी प्रभ फरमाई है, आपे जोगी आपे भोगी आपे रसिया परम संजोगी, आपे वे बाणी निरंकारी निरपव ताड़ी लाई है, खाणी बाणी तुझै समाणी जो दिसै सब आवन जानी, सही साह सचे व्यापारी सदगुर बूझ बुझाई है, शब्द बुझाए सदगुर पूरा सर्व कला साचे परपूरा, अफरियो वे प्रवाहो सदा तू ना तिस दिल ना तुमाई है, काल बिकाल पहे देवाने शब्द सहज रस अंतर माने, आपे मुक्त तृप्त वरदाता भगत पाए मन पाई है, आप निरालम गुरगम ज्ञाना जो दिसै तुझ माहे समाना, नानक नी

साजे गुण प्रगासन जति सती संतोखी आपे आपे कार कमाई है जिस करना सो कर कर वेख कोई न मिटे साचे लेख आपे करे कराए आपे आपे देवड़े आई है पंच चोर चंचल चित चल पर कर जो है कर नहीं पल काया नगर टह टह टेरी बिन शब्द पत जाई है गुरते बूझै त्रिपवन सूझै मनसा मार मन स्यों लूझै जो तुद सेवै से तुद ही जेहे निरपो बाल सिखाई है आपे सुरग मछ पयाला आपे जो सुरूपी बाला जटा बिकट बिकराल सुरूपी रूप ना रेख्या काई है बेदक ते भी भेद ना जाता ना तिस मात पिता सुत प्राता सगले सैल्यो पाए समाए अलखना लखना जाई है कर कर था की मीत कनेरे कोई ना काटे अब गुण मेरे सुर नर नाथ साहेब सब ना सिर पाए मिले पौ जाई है भूले चूके मार्ग पावे या भुलाए तू है समझावे बिना

द्वारा गंगा सागर बेणी संगम 68 अंक समाई है। आपे सिद्ध साधक विचारी, आपे राजन पंचाकारी, तख्त बह अदली प्रव आपे, परम भेद पौ जाई है। आपे काजी आपे मुल्ला, आपे अभुल ना कबहू भुला, आपे मेहर दया पदाता, ना किसे को बैराई है। जिस बख्से तिस दे वडियाई, सब सह दाता तिल ना तुमाई, भरपुर धार रहा ने केवल, गुप्त प्रगट सब ठाई है। क्या साला ही अगमया पार, साचे सृजन हार मुरार, जिसनो नदर करे तिस मेले, मेल मिले मेल आई है। ब्रह्मा विष्णु महेश द्वार, उबे सेवै लख्या पार, होर केती दर दिसे बिल लांदी, मैं गणतना आवे काई है। साची कीर्त साची बाणी, होर ना दिसे बेद पुराणी, पूंजी साच सच्चे गुण गावा, मैं तर होर ना काई है। जुग जुग साचा है पी होसी, कौन न मुआ कौन न मरसी, नानक नीच कह बेनंती, दर देखो लिवलाई है। मारू महला पहला, दूजी दुरमत अन्नी बोली, काम क्रोध की कच्ची चोली, कारवार सहज न जाने शोहर, बिन पर नींद न पाई है। अंतर अगन जलै पड़क हारे, मनमुख तके कुंडा चारे, बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाई है, साचे हाथ वडाई है। काम क्रोध अहंकार निवारे, तस्कर पंच शब्द संघारे, ज्ञान खड़गलै मन स्यों लूजै, मनसा मन समाई है। मां की रकत पिता बिंद तारा, मूर्त सूरत कर पारा, जोत दात जेती सब तेरी, तू करता सब ठाई है। तुझ ही किया जमन मरना, गुरते समझ पड़ी क्या डरना, तू दयाल दया कर देख, दुख दर्द शरीर हो जाई है। निज कर बैस रहे पौ खाया, तावत राखे ठाक रहाया, कमल विगास हरे सर सुबर, आत्म राम सिखाई है। मरण लिखाए मंडल में आए, क्यों रही है चलना परथाए, सच्चा अमर सच्चे अमरापुर, सो सच मिले वडाई है। आपो पाया जगत सबाया, जिन सिर आत तंदे लाया, सच्चे ऊपर अवरना दिसे, साचे कीमत पाई है। एथे गोयलड़ा दिन चारे, खेल तमाशा तंदूकारे, बाजी खेल गए बाजी गार, जो निस सुपने पखलाई है। तिन कौ तख्त मिली वडियाई, निरपो मन वसिया लिवलाई, खंडी ब्रह्मंडी पाताली पुरी, त्रिपवन ताड़ी लाई है। साची नगरी तख्त सचावा, गुरमुख साच मिलै सुख पावा, साचे साचे तख्त वडाई, हो मैं गणत गवाई है। गणत गणीय सह साजी है, क्यों सुख पावे दूवे तीय, निर्मल एक निरंजन दाता, गुरपुरे ते पत पाई है। जुग जुग विरली गुरमुख जाता, साचा रव रहा मन राता, तिसकी ओट कही सुख पाया, मन तन मैल न काई है। जीव रसायन साचे राती, हर प्रभ संगी पौ ना प्राती, श्रवण स्रोत रजे गुरबाणी, ज्योति ज्योत मिलाई है। रख रख पैर तरे पौ तरना, जत कत देखो तेरी सरना, दुख सुख देहे तू है मन पावे, तुझ ही स्यो बने आई है। अंत काल को बेली नाही, गुरमुख जाता तू सालाही, नानक नाम रते बैरागी, निज कर ताड़ी लाई है। मारू महला पहला, आज जुगादी अपर अपार है, आद निरंजन खसम हमार है, साचे जो जुगत विचारी, साचे ताड़ी लाई है। केतड़िया जुग तंदूकार है, ताड़ी लाई सृजनहार है, सच नाम सची वड्याई, साचे तख्त वडाई है। सत जुग सत संतोख शरीरा, सत सत वरत गहर गंभीरा, सच्चा साहिब सच परख है, साचा हुक्म चलाई है। सत संतोखी सतगुर पूरा, गुर का शब्द मने सो सूरा, साची दरगह साच निवासा, मन हुक्म रजाई है।
ਸਤਿਯੁਗ ਸੱਚ ਕਹੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਸੋਈ। ਮਨਮੁਖ ਸਾਚ ਪਰਮ ਪਉ ਭੰਜਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਤ੍ਰੇਤੈ ਧਰਮ ਕਲਾ ਇੱਕ ਚੁੱਕੀ, ਤੀਨ ਚਰਨ ਇੱਕ ਦੁਬਦਾ ਸੂਕੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਸੱਚ ਵਖਾਣੈ, ਮਨਮੁਖ ਬਚੈ ਅਵਾਈ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਕਦੇ ਨਾ ਦਰਗੈ ਸੀਜੈ, ਬਿਨ ਸਬਦੈ ਕਿਉ ਅੰਤਰ ਰੀਜੈ। ਬਾਂਧੇ ਆਵੈ ਬਾਂਧੇ ਜਾਵੈ, ਸੋਜੀ ਬੂਝਣਾ ਕਾਈ ਹੈ। ਦਇਆ ਦੁਆਪਰ ਅੱਧੀ ਹੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ ਚੀਨੈ ਕੋਈ। ਦੋਏ ਪੱਗ ਧਰਮ ਧਰੇ ਧਰਨੀ ਧਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਤਿਥਾਈ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਧਰਮ ਕਰੈ ਪਰਥਾਏ, ਆਸਾ ਬੰਦੇ ਦਾਨ ਕਰਾਏ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਥਾਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰ ਮੁਕਤ ਮੰਗਾਹੀ, ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੀ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰਮਾਈ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਛੋਡੀ ਨਾ ਜਾਈ, ਸੇ ਛੂਟੇ ਸਚਕਾਰ ਕਮਾਈ। ਅਹਿਨਿਸ ਭਗਤਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਠਾਕਰ ਸਿਉ ਬਣਿਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਕਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ, ਜਿਉ ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਤਵੈ ਚਲਾਵੈ। ਹੱਠ ਨਿਗਰੈ ਅਪਤੀਜ ਨਾ ਭੀਜੈ, ਬਿਨ ਹਰ ਗੁਰ ਕਿਨ ਪਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਲੀ ਕਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲ ਰਾਖੀ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਿਨੈ ਨਾ ਭਾਖੀ। ਮਨਮੁਖ ਕੂੜ ਵਰਤੈ ਵਰਤਾਰਾ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮ ਨਾ ਜਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹੋ ਸਿਰੰਦਾ, ਨਾ ਜਮ ਕਾਣ ਨਾ ਛੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਜੋ ਤਿਸ ਸੇਵੇ ਸੋ ਅਬਨਾਸੀ, ਨਾ ਤਿਸ ਕਾਲ ਸੰਤਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੈ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰਤਾਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟਾ ਸੰਖ ਉਧਾਰੇ। ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ, ਨਿਰਭਉ ਮੈਲ ਨਾ ਕਾਈ ਹੈ। ਸਗਲੇ ਜਾਚੈ ਗੁਰ ਭੰਡਾਰੀ, ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਅਲਾਖਿਆ ਪਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਕਹੈ ਪ੍ਰਭ ਜਾਚੈ, ਮੈਂ ਦੀਜੈ ਸਾਚ ਰਜਾਈ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸਾਚੇ ਮੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਸਹਿ ਸਮਾਏ। ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਜੋ ਧਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਵਰਨਾ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਜਿਸਕੇ ਚਾਕਰ ਤਿਸਕੀ ਸੇਵਾ, ਸਬਦ ਪਤੀਜੈ ਅਲਾਖਿਆ ਭੇਵਾ। ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਬਖਸ ਲਏ ਵਡਿਆਈ ਹੈ।

कमावै। अंधले सोजी बूझना काई, लोभ बुरा अहंकारा है। पेर बिन क्या तिस धन सिंगारा, पर पर राती खसम सारा। जो बेसवा पूत बाप को कही है, त्यों फोकट कार विकारा है। प्रेत पिंजर में दुख कनेरे, नरक पचै अज्ञाना देरे। धर्म राय की बाकी लीजै, जिन हर का नाम विसारा है। सूरज तपै अग्न बिखचाला, आपत पशु मन मुख बेताला। आसा मनसा कूट कमावै, रोग बुरा बुरियारा है। मस्तक भार कलर सिर पारा, क्यों कर भव जल लंघस पारा। सतगुर बोथे आज उगादी, राम नाम निस्तारा है। पुत्र कलत्र जग हित प्यारा, माया मोह पसरिया पासारा। जम के फाहे सतगुर तोड़े, गुरमुख तत् बिचारा है। कूड़ मुठी चाले बौराही, मनमुख दाजे पड़ पड़ पाही। अमृत नाम गुरु वरदाना, नाम जपो सुख सारा है। सतगुर तुठा सच दृढ़ाए, सब दुख मेटे मार्ग पाए। कंडा पाए न गड्डी मूले, जे सतगुर रखन हारा है। खेहू खेहे रले तन छीजै, मनमुख पाथर सैल न पीजै। करण पलाव करे बहुतेरे, नरक सुरग अवतारा है। माया बिख पोए अंगम नाले, इन दुबदा कर बहुते गाले। सतगुर बाजो प्रीत न उपजै, भगत रते पतियारा है। साकत माया कौ बहुतावै, नाम विसार कहां सुख पावै। त्रिगुण अंतर खपै खपावै, ना ही पार उतारा है। कूकर सूकर कहिए कूड़ियारा, पौ कुमरै पौ पौ पौहारा। मंतन झूठे कूड़ कमावै, दुर्मत दर गै हारा है। सतगुर मिलै ता मनुआ टेकै, राम नाम दे सरन परेकै। हर तन नाम अमोलक देवै, हर जस दर गै प्यारा है। राम नाम साधु सरनाई, सतगुर बचनी गत मित पाई। नानक हर जप हर मन मेरे, हर मेले मेल नहारा है। मारू महला पहला, कर रहो रे मन मुगदयाने। राम जपो अंतर गत ध्याने, लालच छोड़ चो अपरंपर, इउं पावो मुगत द्वारा है। जिस बिसरिया जम जोहण लागै, सब सब सुख जाहे दिखा फुनिया गै। राम नाम जप गुरमुख जियड़े, एहो परम तत् विचारा है। हर हर नाम जपो रस मीठा, गुरमुख हर रस अंतर डीठा। अहनस राम रहो रंग राते, एहो जप तप संयम सारा है। राम नाम गुरबचनी बोलो, संत सभा में एहो रस टोलो। गुरमत खोज लहो घर अपना, बहुना घर मजारा है। सच तीर्थ नावो हर गुण गावो, तत् विचारो हर लिव लावो। अंत काल जम जोहे ना साकै, हर बोलो राम प्यारा है। सतगुर पुरख दाता वरदाना, जिस अंतर साच सो शब्द समाणा। जिसको सतगुर वेर मिलाए, ते चूका जम पै पारा है। पंच तत् मिल काया कीनी, तिसमें राम रतन लै चीनी। आत्म राम राम है आत्म, हर पाइय शब्द विचारा है। सत संतोख रहो जन पाई, खिमा गहो सतगुर सरनाई। आत्म चीन प्रात्म चीनो, गुर संगत ओ निस्तारा है। साकत कूड़ कपट मैं टेका, अहनस निंदा करै अनेका। बिन सिमरन आवै फुन जावै, गर्भ जोनी नरक मजारा है। साकत जम की कान ना चूकै, जम का डंड ना कब हूं मूकै। बाकी धर्म राय की लीजै, सिर अफरियो पार अफारा है। बिन गुर साकत कहो को तरिया, हम मैं करता पवजल परिया। बिन गुर पार ना पावै कोई, हर जपिया पार उतारा है। गुर की दात ना मिटै कोई, जिस बख्शे तिस तारे सोई।
ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਨੇਣ ਨਾ ਆਵੇ, ਮਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਅਪਰਿਆ ਪਾਰਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਤੇ ਪੂਲੇ ਆਵੋ ਜਾਵੋ, ਜਨਮ ਮਰੋ ਫਨ ਪਾਪ ਕਮਾਵੋ, ਸਾਗਤ ਮੂੜਾ ਚੇਤਨਾ ਚੇਤਾ, ਦੁਖ ਲਾਗੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਪੁਕਾਰਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਪੁਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਕੀਏ, ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਿੰਦਾ ਤੈ ਦੀਏ, ਕਿਸ ਕੋ ਦੋਸ ਦੇਹ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਸਹੁ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਰਾਰਾ ਹੈ। ਹਉ ਮੈਂ ਮਮਤਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਦ ਚਲਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤ ਕਿਆ ਲੈ ਚਾਲੇ, ਬਿਖਲਾ ਦੇ ਸ਼ਾਰ ਬੇਕਾਰਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਜਨ ਭਾਈ, ਅਕਥ ਕਥੋ ਮਨ ਮਨੈ ਸਮਾਈ, ਉਠ ਚਲਤਾ ਠਾਕ ਰੱਖੋ ਘਰੇ ਆਪਣੇ।

जो जन्मै ते सर परमरना किरत पया सिर साहा हे। संजोग विजोग मेरा प्रभ की है, सृष्टि उपाए दुखा सुख दिए। दुख सुख ही ते पै निराले, गुरमुख सीर सनाहा हे। नीके साचे केवा पारी, ससव दाले गुर विचारी। सच्चा वखर जिस तन पल्ले, सब सच्चै ओ महा हे। काची समी तोटा आवै, गुरमुख वणज करे प्रभावै। पूंजी साबत रास सलामत, चूका जमका फाहा हे। सबको बोलै अपन भाणै, मनमुख दूजे बोल न जाणै। अंदले कीमत अंदली बोली आए गए।

सुन कलाय परंपर धारी आप निरालम अपरे अपारी आपे कुदरत कर कर देख सुनो सुन उपाएंदा पौन पानी सुनै ते साजे सृष्टि उपाए काया गणराजे अग्न पानी जियो जो तुम्हारी सुन्ने कला रहाएंदा सुनो ब्रह्मा विष्णु हे सियो पाए सुन्ने वरते जुग सबाए इस पद विचारे सो जन पूरा तिसमलिए परम चुकाएंदा सुनो सप्त सरोवर थापे जिन साजे विचारे आपे तित सतसर मनुआ गुरमुख नावै फिर बाहुड़ जो न पाएंदा सुनो चंद सूरज गैनारे तिसकी जोत त्रिपमन सारे सुन्ने अलख अपार निरालम सुन्ने ताड़ी लाएंदा सुनो धरत आकाश उपाए बिन थम्मा राखे सच कल पाए त्रिपवन साज मेखली माया आपो पाए पाएंदा सुनो खाणी सुनो बाणी सुनो उपजी सुन समाणी उत पुज चलत की आसर करतै बिस्मा सब देखाएंदा सुनो रात दिन सदुए किए ओपत खपत सुखा दुख दिए सुख दुख ही ते अमरा तीता गुरमुख नि कर पाएंदा साम वेद रिग जुजर अथर बन ब्रह्मे मुख माया है त्रैगुण ता की कीमत कह ना सकै को त्यों बोले ज्यो बोलाएंदा सुनो सबत पता लियो पाए सुनो पवन रखे लिवलाए आपे कारण किया अपरंपर सब तेरो किया कमाएंदा रज तम सतकल तेरी छाया जन्म मरण हम मैं दुख पाया जिसनों कृपा करे हर गुरमुख गुण चौथे मुक्त कराएंदा सुनो उपजे दस अवतारा सृष्टि उपाय की आपा सारा देव दानव गण गंधर्व साजे सब लिखिया कर्म कमाएंदा गुरमुख समझै रोग ना होई ए गुर की पौड़ी जान जन कोई जुगै जुगंतर मुक्त परायण सो मुक्त भया पत पाएंदा पंच तत् सुनो परगासा देहा संजोगी कर्माभ्यासा बुरा भला दोई मस्तक लिखे पाप पुन भी जाएंदा उत्तम सतगुर पुरख निराले शब्द रते हर रसमत वाले रिद बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाई पूरे पाग मिलाएंदा इस मन माया को नेहो कनेरा कोई बुझो ज्ञानी करो नवेरा आसा मनसा हो मैं सहसा नर लोभी कूड़ कमाएंदा सतगुर ते पाए विचारा सुन समाद सच्चे घर बारा नानक निर्मल नाद सब तुहनु सच रामै नाम समाएंदा मारू महला पहला जै देखा तै दीन दयाला आए न जाई प्रभ कृपाला जिया अंदर जुगत समाई रहो निराल मराया जग तिसकी छाया जिस बाप ना माया ना तिस भैन ना भराओ कमाया ना तिस ओपत खपत कुल जाती ओह अजरा वरमन पाया तू अकाल पुरख नाही सरकाला तू पुरख अलेख अगम निराला सत संतोख शब्द अत सीतलो सहज पाए लिवलाया त्रै वरताए चौथे करवासा काल विकाल किए एक ग्रासा निर्मल ज्योत सर्व जग जीवन गुर अनहद शब्द दिखाया उत्तम जन संत भले हर प्यारे हर असमाते पार उतारे नानक रेण संत जन संगत हर गुर प्रसादी पाया तू अंतर जामी जी सब तेरे तू दाता हम सेवक तेरे अमृत नाम कृपा कर दी जय गुर ज्ञान रतन दी पाया पंच तत् मिले हो तन किया आत्म राम पाए सुख थिया कर्म करतूत अमृत फल लागा हर नाम रतन मन पाया ना तिस भूख प्यास मन मानिया सर्ब निरंजन कट कट जानिया अमृत रस राता केवल बैरागी गुरमत पाए सुभाया
अध्यात्म कर्म करे दिन राती, निर्मल ज्योत निरंतर जाती, शब्द रसाल रसन रस रसना, बेन रसाल वजाया, बेन रसाल वजावै सोई, जां की तर पवन सो जी होई, नानक बूजो एह बिद गुरमत, हर राम नाम लिव लाया, ऐसे जन विरले संसारे, गुर शब्द विचारै रहै निरारे, आप तरै संगत कुल तारै, तन सफल जन्म जग आया, घर दर मंदिर जाणै सोई, जिस पूरे गुरते सोजी होई, काया गढ़ महल महली प्रभ साचा, सच साचा तख्त रचाया, चतर दस हाट दीवे दोए साखी, सेवक पंच नाही बिखचाकी, अंतर वस्त अनूप निरोलम, गुर मिलिया हर तन पाया, अंतर वस्त अनूप निर्मोलक, गुर मिलिया हर तन पाया, तख्त बह तख्त की लायक, पंच समाए गुरमत पायक, आद जुगादी है पी होसी, सहसा परम चुकाया, तख्त सलाम होवै दिन राती, एहो सच वडाई गुरमत लिव जाती, नानक राम जपो तरतारी, हर अंत सिखाई पाया, मारू महला पहला, हर तन संचौ रे जन पाई, सतगुर सेव रहो सरनाई, तस्कर चोर ना लागे ताको, तुन उपजै शब्द जगाया, तू एकमका तू एकंकार निराल मराजा, तू आप सवार है जन के काजा, अमर अडोलिया पारिया मोलक, हर अस्तर थान सुहाया, देही नगरी उत्तम थाना, पंच लोक वसै प्रदाना, ऊपर एकंकार निरालम सुन समाद लगाया, देही नगरी नौ दरवाजे, सिरसर करने हार ऐसा जे, दसवें पुरख अतीत निराला, आपे लख लखाया, पुरख अलेख सच्चे दीवाना, हुक्म चलाए सच निशाना, नानक खोज लहो करे अपना, हर आत्म राम नाम पाया, सर्ब निरंजन पुरख सुजाना, अदल करे गुर ज्ञान समाना, काम क्रोध लै गर्दन मारे, हम मैं लोभ चुकाया, सच्चै थान वसै निरंकारा, या पछाणै शब्द विचारा, सच्चै महल निवास निरंतर, आवन जान चुकाया, ना मन चलै ना पौन उड़ावै, जोगी शब्द अनाह दवावै, पंच शब्द चुनकार निरालम, प्रभ आपे वाय सुनाया, पाओ बैरागा सह समाता, हमें त्यागी अनहद राता, अंजन सार निरंजन जाने, सर्ब निरंजन राया, दुख पै पंजन प्रभ अबनासी, रो कटे काटी जम फासी, नानक हर प्रभ सो पहु पंजन, गुर मिलिया हर प्रभ पाया, काले कवल निरंजन जाने, बूझे कर्म सो शब्द पछाणे, आपे जाने आप पछाणे, सब तिसका चोज सबाया, आपे सहो आपे वणजारा, आपे परखे परखणहारा, आपे कसव कसवटी लाए, आपे कीमत पाया, आप दयाल दया प्रवतारी, घट घट रव रहा बनवारी, पुरख अतीत वसै नेह केवल, गुरपुरख पुरख मिलाया, प्रभदाना बीना गर्भ गवाए, दूजा मेटा एक दिखाए, आसा माहे निराल मजोनी, अकुल निरंजन गाया, हाउ मैं मेट शब्द सुख होई, आ विचारे ज्ञानी सोई, नानक हर जसो हर गुण लाहा, सत संगत सच फल पाया, मारू महला पहला, सच कहो सच्चै कर रहना, जीवत मरो पवजल जग तरना, गुर बोयथ गुर बेड़ी तुलहा, मन हर जा पार लंगाया, हम मैं ममता लोभ विनाशन, नाव दर मुक्ते दसवें आसन, ऊपर परै परै परंपर, जिने आपे आप पाया, गुरमत लेवो हर लिव तरिये, अकल गाए जमते क्या डरिये, जात जात देखो ताता तुम ही, अवरना दुतिया गाया, सच हर नाम सच है सरना, सच गुर शब्द जितै लग तरना, अकथ कथै देखै परंपर, फुन गर्भ न जो नी जाया,
ਸੱਚ ਬਿਨ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਆਵੈ ਜਾਵੈ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਾਇਣ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਸੱਚ ਬਿਨ ਭਵਜਲ ਜਾਏ ਨਾ ਤਰਿਆ, ਇਹੋ ਸਮੁੰਦ ਅਥਾਹੋ ਮਹਾਂਬਿਖ ਭਰਿਆ। ਰਹਿਆ ਤੀਤ ਗੁਰਮਤ ਲੇ ਉੱਪਰ, ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਕੈ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਝੂਠੀ ਜਗ ਹਿਤ ਕੀ ਚਤਰਾਈ, ਬਿਲਮ ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਵੈ ਜਾਈ। ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਚਲੈ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਉਪਜੈ ਬਿਨ ਸਿਖ ਪਾਇਆ। ਉਪਜੈ ਬਿਨ ਸਹਿ ਬੰਧਨ ਬੰਦੇ, ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਕੇ ਗਲਫੰਦੇ। ਜਿਸ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾਹੀ ਮਤ ਗੁਰਮਤ, ਸੋ ਜੰਪੁਰ ਬੰਦ ਚਲਾਇਆ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਧਿਆਈ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਲੇਹੋ ਤਰੋ ਭਵ ਦੁੱਤਰ, ਮੁਕਤ ਭਏ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਵਰਧਨ ਧਾਰੇ, ਗੁਰਮਤ ਸਾਇਰ ਪਾਹਣ ਤਾਰੇ। ਗੁਰਮੁਕਤ ਲੇਹੋ ਪਰਮਪਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਰਮ ਚੁਕਾਇਆ। ਗੁਰਮਤ ਲੇਹੋ ਤਰੋ ਸਚ ਤਾਰੀ, ਆਤਮ ਚੀਨੋ ਹਿਰਦੈ ਮੁਰਾਰੀ। ਜਮਕੇ ਫਾਹੇ ਕੱਟ ਹਰ ਜਪ, ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮਤ ਪੰਚ ਸਖੇ ਗੁਰ ਭਾਈ, ਗੁਰਮਤ ਅਗਨਿਵਾਰ ਸਮਾਈ। ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਹਿਰਦੇ ਅੰਤਰ ਲਖ ਲਖਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਸ਼ਬਦ ਪਤੀਜੈ, ਉਸ ਨਿੰਦਾ ਕਿਸ ਕੀ ਕੀਜੈ। ਚੀਨੋ ਆਪ ਜਪੋ ਜਗਦੀਸ਼ਰ, ਹਰ ਜਗਨਨਾਥ ਮਨ ਵਹਾਇਆ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੰਡ ਸੋ ਜਾਣੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੋ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੋ। ਘੜ ਘੜ ਪੋਗੇ ਪੁਗਣ ਹਾਰਾ, ਰਹਿਆ ਤੀਸ ਸਵਾਇਆ। ਗੁਰਮਤ ਬੋਲੋ ਹਰ ਜਸ ਸੂਚਾ, ਗੁਰਮਤ ਆਖੀ ਦੇਖ ਉੱਚਾ। ਸ਼੍ਰਵਣੀ ਨਾਮ ਸੁਣੈ ਹਰ ਬਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗਾਇਆ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਪਰ ਹਰ ਪਰ ਨਿੰਦਾ। ਲਭ ਲੋਭ ਤਜ ਹੋ ਨਿਚਿੰਦਾ, ਭ੍ਰਮ ਕਾ ਸੰਗਲ ਤੋੜ ਨਿਰਾਲਾ। ਹਰ ਅੰਤਰ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਨਿਸ ਦਾਮਨ ਜਿਉ ਚਮਕ ਚੰਦਾਇਣ ਦੇਖੈ। ਅਹਿਨਸ ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰ ਪੇਖੈ, ਆਨਾ

बिन नावै डूब मोए बिन नीरा। साचा पूरे सतगुर बूझ बुझाई, नामे राता पवित्र शरीरा। बिन नावै डूब मोए बिन नीरा, आवै जावै नाम नहीं बूझै। एक ना गुरमुख शब्द पछाता है, पूरे सतगुर बूझ बुझाई। बिन नावै मुक्त के नै ना पाई, नामे नाम मिले वड्याई। सहज रह रंग राता है, काया नगर टह टह टेरी। बिन शब्द चूके नहीं फेरी, साच सलाहे साच समावै। जिन गुरमुख एको जाता है, जिसनो नजर करे सो पाए। साचा शब्द वसै मन आए, नानक नाम रते निरंकारी। दर साचे साच पछाता है, मारू सोल है।

छोड़े नाही, गुर कै शब्द सदा सालाही। सबना सिर तू एको साहेब, सबदे नाम सलाहा हे। बिन शब्द तुदनों कोई ना जानी, तुद आपे कथी अकथ कहानी। आपे शब्द सदा गुरदाता, हर नाम जप संबाहा हे। तू आपे करता सिरजनहारा, तेरा लिखिया कोई ना मिटनहारा। गुरमुख नाम देवै तू आपे, सहसा गणत ना ताहा हे। भगत सच्चै तेरे दरबारै, सबदे सेवन पाए प्यारे। नानक नाम रते बैरागी, नामे कारज सोहा हे। मारू महला तीजा, मेरा प्रभ साचै इक खेल रचाया, कोई न किसी जेहा उपाया। आपे फर्क करे वेख विकसै, सब रस देही महा हे। वाजै पौन तै आप वजाए, शिव शक्ति देही मैं पाए। गुर प्रसादी उल्टो होवै, ज्ञान रतन शब्द ताहा हे। अंधेरा चानण आपे किया, एको वरतै अवर न बिया। गुर प्रसादी आप पछाणै, कमल बिकसै बुद्ध ताहा हे। अपनी गहन गत आपे जाणै, होर लोग सुन सुन आख वखाणै। ज्ञानी होवै सो गुरमुख बूझै, साची सिफत सलाहा हे। देही अंदर वसदिया पारा, आपे कपट खुला मनहारा। गुरमुख सहजे अमृत पीवै, तृष्णा यगन बुझाहा हे। सब रस देही अंदर पाए, विरले कहो गुर शब्द बुझाए। अंदर खोजे शब्द सलाहे, बाहर काहे जाहा हे। विण चाखे साध किसै ना आया, गुर कै शब्द अमृत पी आया। अमृत पी अमरा पद होए, गुर कै शब्द रस्ता हे। आप पछाण सो सब गुण जाने, गुर कै शब्द हर नाम वखाण। आन दिन नाम रता दिन राती, माया मोह चुकाहा हे। गुर सेवा ते सब किश पाए, हमें मेरा आप गवाए। आपे कृपा करे सुखदाता, गुर कै शब्दे सुहा हे। गुर का शब्द अमृत है बाणी, अंदन हर का नाम वखाणी। हर हर सच्चा वसै कट अंतर, सो कट निर्मलता हे। सेवक सेवै शब्द सलाहै, सदा रंग राते हर गुण गावै। आपे बख्शे शब्द मिलाए, परमल वास मनता हे। शब्द अकथ कथ

किस ही जोर दीवान माया का, मैं हर बिन टेक तारे अवर ना काई, तू करते राख मैं निमाणी है। निमाणे मान करै तुद पावै, होर केती चख चख आवै जावै, जिनका पख करै तू स्वामी, तिनकी ऊपर गल तुद्याणी है। हर हर नाम जिन्नी सदा ते आया, तिन्नी गुरप्रसाद परम पद पाया, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, बिन सेवा पछो ताणी है। तू सब मैं वरतै हर जगन्नाथ, सो हर जपै जिस गुर मस्तक हाथ, हर की शरण पया हर जापी, जन नानक दा दसाणी है। मारू सोल है महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कला उपाय धरी जिन तरना, गगन रहाया हुक्मे चरना, अग्नि उपाय इंद्र में बाधी, सो प्रभ राखै पाई है। जी जंत कौर जिक संबाहे, करण कारण समराथ्या पाहे, खिन मैं थापो थापन हारा, सोई तेरा सहाई है। मात गर्व मैं जिन प्रतपालिया, सास ग्रास हुए संग संभालिया, सदा सदा जपिया सो प्रीतम, वड्डी जिस वडे आई है। सुल्तान खान करे खिन कीरे, गरीब निवाज करे प्रभ मीरे, गर्भ निवारण सर्व सुधारण, किस कीमत कही न जाई है। सो पतवंता सो तनवंता, जिस मन वसिया हर भगवंता, मात पिता सुत बंध पाई, जिन ए सृष्टि उपाई है। प्रभ आए सरना पव नहीं करना, साध संगत नीचो है तरना, मन बच करम्या राधे करता, तिस नाही कदे सजाई है। गुण निदान मंत्र में रव्या, जन्म मरण की जोन न पवे।

खंड ब्रह्मांडे उदाहरणहारा ऊंच अथाहो अगम अपारा जिसनों कृपा करे प्रभु अपनी सो जंत सहत आई है। बंधन तोड़ लिए प्रभु मोले कर कृपा कीने कर गोले अनहद ऋण चुनकार सहज तुन साची कार कमाई है। मन पर तीत बनी प्रभु तेरी बिनस गई हम मैं मत मेरी अंगीकार किया प्रभ अपने जग में शोभ सुहाई है। जय जय कार जपो जगदीश बल बल जाई प्रभ अपने ईस तिस्बिन दूजा अवरना दिस एका जगत सबाई है। सत सत सत प्रभ जाता गुर प्रसाद सदा मन दाता सिमर सिमर जीवै जन तेरे एक अंकार समाई है। भक्त जना का प्रीतम प्यारा सब उदाहरण खसम हमारा सिमर नाम पुनी सब इच्छा जन नानक पैज रखाई है। मारू सोल है महला पंजवा एको अंकार सतगुर प्रसाद संगी जोगी नार लपटाणी उर्ज रही रंग रसमाणी किरत संजोगी पे एकत्रा करते भोग बिलासा है। जो पिर करै सो तन तत् मन पिर तनै सिंगार रखै संगान मिल एकत्र वसै दिन राती प्रयो दे तनै दिलासा है। धन मांगै प्रयो बोबे तावै जो पावै सो आन दिखावै एक वस्त को पहुँच ना साकै तन रहती भूख प्यासा है। तन करै बिनो दो कर जोरै प्रे परदेस ना जाहो वसो कर मोरै ऐसा बणज करो गृह पीतर जित उतरै भूख प्यासा है। सगले कर्म धर्म जुग साधा बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा पही कृपा नानक सतसंगे तौ धन पिर आनंद उलासा है। तन अंधी पिर चपरसियाना पंच तत्कार चन रचाना जिस वखर को तुम आए हो सो पायो सतगुर पासा है। तन कह तू वस मैं नाले प्रे सुखवासी बाल गोपाले तुझे बिना हो कित ही ना लेख वचन देहे छोड़ ना जासा है। फिर कहया हो हुक्मी बंदा ओह पारो ठाकरो जिस कारण ना शंदा जिचर रख है तिचर तुम संग रहना जा सदे ता ऊट सिदासा है। जाओ प्रे बचन कह तन साचे तन कछु ना समझे चंचल काचे बहुर बहुर पिर ही संग मांगे ओ बात जाने कर हासा है। आई आ गया पिरों बुलाया ना तन पुछी ना मता पकाया ऊट सिधायो छूटर माटी देख नानक मिथन मुहासा है। रे मन लोभी सुन मन मेरे सतगुर सेव दिन रात सदेरे बिन सतगुर पचबुए साकत निगुरे गल जम फासा है। मन मुख आवै मन मुख जावै मन मुख फिर चोटा खावै जितने नरक से मन मुख भोगै गुरमुख लेप ना मासा है। गुरमुख सोए जे हर जियो पाया तिस कौन मिटावै जे प्रभ पैराया सदा आनंद करे आनंदी जिस सिर पाओ पया गल खासा है। हाँ बलिहारी सतगुर पूरे शरण के दाते बचन के सूरे ऐसा प्रभ मिलिया सुखदाता विछड़ ना कत ही जासा है। गुण निदान किश कीम ना पाई घट घट पूर रहे हो सब ठाई नानक शरण दीन दुख पंजन हौरेण तेरे जो दासा है। मारू सोल है महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद करै आनंद आनंदी मेरा घट घट पूर्ण सिर सिरै नबेरा सिर साहा कै सच्चा साहेब अवर नाही को दूजा है। हरखवंत अनंत दयाला प्रगट रहे हो प्रभ सर्व्यो।

पौड़ी। पाणै हुक्म नायोन पाणै सुख पाया, पाणै सतगुर मेलेओन पाणै सच ते आया। पाणै जेवड होर दात नाही, सच आख सुनाया। जिनको पूर्व लिखिया तिन सच कमाया, नानक ते शरणागति जिन जग त्यो पाया। श्लोक महला तीजा। जिनको अंदर ज्ञान नहीं, पैकी नाही बिंद, नानक मोया का

मैं बोलत ही बड़लाज। राम जे पाया राम ते पवन बार बार रहाओ, झूठा जग डहके कना दिन दुए बर्तन की आस। राम उदक जेह जन पिया ते बौर न पई प्यास, गुर प्रसाद जे बूझे आया सा ते भया निरास। सब सच नदरी आया जो आत्म भया उदास, राम नाम रस चाखिया हर नामा हर तार। कहो कबीर कंचन पया प्रम गया समुन्द्र है पार, उदक समुन्द सलल की साखिया नदी तरंग समावेंगे। सुन्ने सुन मिलिया समदर्शी पवन रूप होए जावेंगे। बहुर हम काहे आवेंगे आमन जाना हुक्म तिसा का, हुक्मे बुझ समावेंगे रहाओ। जब चुके पंच तात की रचना ऐसे परम चुकावेंगे, दर्शन छोड़ पे समदर्शी एको नाम ते आवेंगे। जित हम लाए तिथि लागे तैसे कर्म कमावेंगे, हर जी कृपा करे जाओ अपनी तो गुर के शब्द समावेंगे। जीवत मरो मरो फिर जीवो, जीवत मरो मरो फुन जीवो, पुनरप जन्म ना होई। कहो कबीर जो नाम समाने सुन रहा लिख सोई। जाओ तुम को दूर करत हो तो तुम मुक्त बतावो, एक अनेक हो रहो सगल में अब कैसे परमावो। राम मोको तार कहां ले जई है, सो दो मुक्त कहां देव कैसी, कर प्रसाद मोहे पाई है रहाओ। तारन तरन तवे लग कही है जब लग तत न जानिया, अब तो बिमल भय कट ही मैं कह कबीर मन मानिया। जिन गढ़ कोट किए कंचन के छोड़ गया सो रावन, काहे की जित है मन पावन। जब जब आए केस ते पकड़ तै हर को नाम छावन रहाओ। काल अकाल खसम का कीना एहो परपंच बधावन, कहे कबीर ते अंते मुक्ते जिन हृदय राम रसायन। देही गावा जियो तर महतो बसे पंच किरसाना, नैनू नगटू श्रवनु रसपत इंद्री कया नमाना। बाबा अब ना बसो ए गाओ, करी करी का लेखा मांगे काहित चेतु नाओ रहाओ। धर्म राय जब लेखा मांगे बाकी निकसी पारी, पंच किरसान वा पाग गए ले बांधे ओ जियो दरबारी। कह कबीर सुनो रे संतो खेत ही करो नबेरा, अब की बार बख्श बंदे को बहोर ना पाओ जल फेरा। राग मारू बाणी कबीर जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अनपव किने ना देखिया बैरागी अड़े, बिन पै अनपव होए वना हम्बे। सहो हदूर देखे ता पव पवे बैरागी अड़े, हुक्मे बूझे ता निरपव होए वना हम्बे। हर पाखंड ना की जाई बैरागी अड़े, पाखंड रता सब लोक वना हम्बे। तृष्णा पासना छोड़ई बैरागी अड़े, ममता जालिया पिंड वना हम्बे। चिंता जालतन जालिया बैरागी अड़े, जे मन मृतक होए वना हम्बे। सतगुर बिन बैराग ना होवई बैरागी अड़े, जे लोचे सब कोए वना हम्बे। कर्म होवे सतगुर मिले बैरागी अड़े, सहजे पावे सोए वना हम्बे। कहो कबीर एक बेनती बैरागी अड़े, मोको पौजल पार उतार वना हम्बे। राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो पाओ बिदर को देखियो, ओ गरीब मोहे पावे रहाओ। हस्ती देख परम ते पूला श्री भगवान ना जानिया, तुमरो दूध बिदर को पानो अमृत कर मैं मानिया। खीर समान साग मैं पाया गुण गावत रैन बिहानी, कबीर को ठाकर अंध बिनोदी जातना काहू की मानी। सलोक कबीर गगन मामा बाजेओ परयो निशा न काओ, खेत जो मांड्यो सूरमा अब जूजन को दाओ। सूरा सो पहचानिया जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबहू ना छड़े खेत। कबीर का शब्द राग मारू बाणी नाम देओ जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद।
ਚਾਰ ਮੁਕਤ ਵਿਚਾਰੈ ਸਿੱਧ ਮਿਲ ਕੇ ਦੂਲੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨ ਪਰਿਓ ਮੁਕਤ ਭਇਓ ਚਹੂੰ ਜੁਗ ਜਾਣਿਓ ਜਸ ਕੀਰਤ ਮਾਥੈ ਸ਼ਤਰ ਤਰਿਓ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਜਪਤ ਕੋ ਨਾ ਤਰਿਓ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਧ ਕੀ ਸੰਗਤ ਭਗਤ ਭਗਤਾਂ ਕੋ ਨਾਮ ਪਰਿਓ ਰਹਾਓ ਸੰਖ ਚੱਕਰ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਬਿਰਾਇਤ ਦੇਖ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਮ ਡਰਿਓ ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਰਾਮ ਬਲ ਗਰਜਤ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸੰਤਾਪ ਹਿਰਿਓ ਅਮਰੀਕੋ ਦਿਓ ਅਭੈ ਪਦ ਰਾਜ ਭੀਖਣ ਅਧਿਕ ਕਰਿਓ ਨਾਉ ਨਿਧ ਠਾਕਰ ਦਈ ਸੁਦਾਮੈ ਧਰੂ ਅਟਲ ਅਜਹੂ ਨਾ ਟਰਿਓ ਭਗਤ ਹੇਤ ਮਾਰਿਓ ਹਰਨਾਕਸ ਨਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਹੋਏ ਦੇਹ ਧਰਿਓ ਨਾਮਾ ਕਹੈ ਭਗਤ ਬਸ ਕੇਸਵ ਅਜਹੂ ਬਲਕੇ ਦੁਆਰ ਖਰੋ ਮਾਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਦੀਨ ਵਿਸਾਰਿਓ ਰੇ ਦੀਵਾਨੇ ਦੀਨ ਵਿਸਾਰਿਓ ਰੇ ਪੇਟ ਭਰਿਓ ਪਸੂਆ ਜਿਉਂ ਸੋਇਓ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਹੈ ਹਾਰਿਓ ਰਹਾਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਬਹੂ ਨਹੀਂ ਕੀਨੀ ਰਚਿਓ ਤੰਦੈ ਝੂਠ ਸਵਾਨ ਸੂਕਰ ਬਾਏ ਸਜਵੈ ਭਟਕਤ ਚਾਲਿਓ ਊਠ ਆਪਸ ਕਉ ਦੀਰਘ ਕਰ ਜਾਨੈ ਔਰਨ ਕਉ ਲਗ ਮਾਤ ਮਨਸਾ ਬਾਚਾ ਕਰਮ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਦੁਜਗ ਜਾਤ ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਚਾਤਰੀ ਬਾਜੀ ਗਰਬੇ ਕਾਮ ਨਿੰਦਾ ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਸਿਰਾਨੋ ਕਬਹੂ ਨਾ ਸਿਮਰਿਓ ਰਾਮ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਚੇਤੈ ਨਹੀਂ ਮੂਰਖ ਮੁਕਤ ਗਵਾਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਾਣਿਓ ਨਹੀਂ ਕੈਸੇ ਉੱਤਰ ਸਪਾਰ ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਜੈ ਦਿਓ ਜੀਓ ਕੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੰਦ ਸਤ ਭੇਦਿਆ ਨਾਦ ਸਤ ਪੂਰਿਆ ਸੂਰ ਸਤ ਖੋੜਸਾ ਦੱਤ ਕੀਆ ਅਬਲ ਬਲ ਤੋੜਿਆ ਅਚਲ ਚਲ ਥਪਿਆ ਅਘੜ ਘੜਿਆ ਤਹਾਂ ਅਪਿਓ ਪੀਆ ਮਨ ਆਦ ਗੁਣ ਆਦ ਵਖਾਣਿਆ ਤੇਰੀ ਦੁਬਦਾ ਦ੍ਰਿਠ ਸਮਾਨਿਆ ਰਹਾਓ ਅਰਧ ਕਉ ਅਰਧਿਆ ਸਰਧ ਕਉ ਸਰਧਿਆ ਸਲਲ ਕਉ ਸਲਲ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਬਦਤ ਜੈ ਦੇਉ ਜੈ ਦੇਵ ਕਉ ਰਮਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਵਾਣ ਲਿਵਲੀਣ ਪਾਇਆ ਕਬੀਰ ਮਾਰੂ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਪਛਤਾਹੇਗਾ ਮਨ ਪਾਪੀ ਜੀਆਰਾ ਲੋਭ ਕਰਤ ਹੈ ਆਜ ਕਾਲ ਉੱਠ ਜਾਹੇਗਾ ਰਹਾਓ ਲਾਲਚ ਲਾਗੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਾਇਆ ਪਰਮ ਪੁਲਾਹੇਗਾ ਧਨ ਜੋਬਨ ਕਾ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੈ ਕਾਗਦ ਜਿਉ ਗਲ ਜਾਹੇਗਾ ਜੋ ਜਮ ਆਏ ਕੇਸ ਗਹਿ ਪਟਕੈ ਤਾਂ ਦਿਨ ਕਿਛ ਨਾ ਬਸਾਹੇਗਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ

नदर करे सतगुरु मिलाए, नानक हिरदय नाम वसाए, पहरो महला तीजा। नामे उदरे सब जितने लो, गुरमुख जिन्ना प्राप्त होए। हर जियो अपनी कृपा करे, गुरमुख नाम वड्याई दे रहाओ। राम नाम जिन प्रीत प्यार, आप उदरे सब कुल उधार नहार। बिन नावे मनमुख।

संत संग ले चढ़ियो शिकार, मृग पकड़े बिन घोर हथियार। रहाओ अखेर बिरत बाहरे आयो ताए, अहेरा पायो कर के गाए। मृग पकड़े कर आने हाट, चुख चुख ले गए बांडे बाट। एहो अहेरा कीनो दान, नानक कह कर केवल नाम। पैरो महला पंजवा, जे सौ लोच लोच खावाया, सागत हर हर चीत ना आया। संत जना की लेहो मते, साध संग पावो परम गते। रहाओ पाथर को बहु नीर पवाया, नह पीगे अधिक सुकाया। खट शास्त्र मूर्ख है सुनाया, जैसे दैदस पवन चुलाया। बिन कण खलहान जैसे गहना पाया, त्यों साकत ते को ना बरासाया। तित ही लागा जित को लाया, कहो नानक प्रबणत बनाया। पैरो महला पंजवा, जियो प्राण जिन रचियो शरीर, जिनै उपाए तिसको पीर। गुर गोबिंद जी कै काम, हलत पलत जाकी सद शाम। रहाओ प्रभ आराधन निर्मल दीत, साध संग बिनसी विपरीत। मीत हीत तन नह पारना, तन तन मेरे नारायणा। नानक बोलै अमृत बाणी, एक बिना दूजा नहीं जानी। पैरो महला पंजवा, आगे दै पाछै नारायण। मध पाग हर प्रेम रसायण, प्रभु हमारे शास्त्र साउण। सुख सहजानंद ग्रह पाउण। रहाओ रसना नाम करन सुन जीवे, प्रभ सिमर सिमर अमर थिर थीवे। जन्म जन्म के दुख निवारे, अनहद शब्द बजे दरबार।

नाम बिना सब दुनिया शार, अचरज तेरी कुदरत तेरे कदम सलाह, गनीम तेरी सिफत सच्चे पातशाह, नी तरिया तरपन खुदाए, गरीब निवाज दिन रहन ते आए, नानक कहो खुद खसम मेहरवान, अलो न विसरै दिल जी प्राण, पहरो महला पंजवा, साच पदार्थ गुरमुख लहो, प्रभु का पाणा सतकर सहो, जीवत जीवत जीवत रहो, राम रसायन ने तुठ पीवो, हर हर हर हर रसना कहो रहाओ, कलयुग मैं कनाम उदार, नानक बोले ब्रह्म विचार, पहरो महला पंजवा, सतगुर सेव सर्व फल पाए, जन्म जन्म की मैल मिटाए, पदत पावन प्रभ तेरो नाओ, पूर्व कर्म लिखे गुण गाओ, रहाओ साधु संग होवे उदार, सोभा पावे प्रभ कै द्वार, सर्व कल्याण चरण प्रभ सेवा, तूर बंश है सब सुर नर देवा, नानक पाया नाम निधान, हर जप जप उदरिया सगल जहान, पहरो महला पंजवा, अपने दास कौ कंठ लगावे, निंदक कौ अगन में पावे, पापी ते राखे नारायण, पापी पापी की गत कथु नाही, पापी पचया आप कमायण, रहाओ दास राम जीओ लागी प्रीत, निंद की होई विपरीत, पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगटाया, दुखी अपना कीता पाया, आए न जाई रहया समाई, नानक दास हर की सरनाई, राग पहराओ महला पंजवा, चौपदे कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद श्री धर मोहन सगलियो पावन, निरंकार सुखदाता, ऐसा प्रभ छोड़ करे अन सेवा, कौन बिख्या रस माता, अरे मन मेरे तू गोविंद पाज, अवर्यो पाव सगल मैं देखे, जो चितवी है तित बिगरस काज, रहाओ ठाकर छोड़ दासी को सिमरै, मनमुख अंध ज्ञाना, हर की भगत करै तिन निंदै, निगुरे पशु समाना, जियो पिंड तन तन सब प्रभ का, स्वागत कहते मेरा, अहम बुद्ध दुर्मत है मैली, बिन गुर भव जल फेरा, होम जग जप तप सब संयम, तट तीर्थ नहीं पाया, मिटाया पै सरनाई, गुरमुख नानक जग तराया, पहरो महला पंजवा, बन मैं पेख्यो तरण मैं पेख्यो, गृह पेख्यो उदासाए, दंड तार जट तारै पेख्यो, वर्त नेम तीर्थाए, संत संग पेख्यो मन माए, ऊब पयाल सर मैं पूर्ण, रस मंगल गुण गाए, रहाओ जोग पेख सन्यासै पेख्यो, जत जंगम कपड़ाए, तपि तपि सरमन मैं पेख्यो, नट नाटक निरताए, चहो मैं पेख्यो खट मैं पेख्यो, दस अष्टी सिमरताए, सब मिले को एक बखाने, तव किस्ते कहो दुराए, अगह अगह बेअंत स्वामी, न कीम कीम कीम आए, जन नानक तन कै बल बल जाइए, जेह कट प्रगटी आए, पहरो महला पंजवा, निकट बुझै सो बुरा क्यों करै, बिक संचै नित डरता फिरै, है निकट यार भेद न पाया, बिन सतगुर सा मोही माया, नेड़े नेड़े सब को कहै, गुरमुख भेद बिरला को लहै, रहाओ निकट ना देखै पर ग्रह जाए, दर भिरै मिथ्या कर खाए, पैठ गौरी हर संग ना जानिया, बाज गुरु है परम पुलानिया, निकट ना जाने बोले कूड़, माया मोहे मूठा है मूड़, अंतर वस्त दिसंतर जाए, बाज गुरु है परम पुलाए, जिस मस्त कर्म लिखिया लिलाट, सदगुर सेवे खुले कपाट,
ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਟੇ ਸੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਵੈ ਕੋਏ, ਪੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਕੌਣ ਮਾਰੈ, ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਅੰਤਰ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਕੋਟੋ ਪਾਵ ਚਿਤਵਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਸੋ ਹੋਵੈ ਜੇ ਕਰੈ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣੀ, ਰਾਖੋ ਰਾਖੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ, ਰਹਾਓ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਨਿਰਭਉ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਤਿਨ ਭਉ ਦੂਰ ਕੀਆ ਏਕ ਪ੍ਰਾਤਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੈ ਸੋਈ ਫਨ ਹੋਏ, ਮਾਰੈ ਨਾ ਰਾਖੈ ਦੂਜਾ ਕੋਏ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਚੈ।

जैसी ऊपर नजर करे करतार, तेह जन के सब का सवार, तिसका राखा एक को सोए, जन नानक पढ़ना साके कोए। पैरो महला पंजवा, तौकड़िया जे होवे बाहर, तौकड़िया जे विसरै नरहर, तौकड़िया जे दूजा पाए, क्या कड़िया जा रहा समाए। माया मोहे कड़े कड़ पचिया, बिन नामे प्रम प्रम प्रम खपिया रहाओ। तौकड़िया जे दूजा करता, तौकड़िया जे अन्याय को मरता, तौकड़िया जे कह जाने नाही, क्या कड़िया जा भरपूर समाही। तौकड़िया जे किश होए तिंगाणे, तौकड़िया जे भूल वजाणे, गुर कहया जो होए सब प्रभ ते, तब काड़ा छोड़ अचिंत हम सोते। प्रभ तू है ठाकर सब को तेरा, जो पावे त्यों करे निबेरा। दुतिया नास्त एक रया समाए, राखो पैज नानक सरनाए। पैरो महला पंजवा, बिन बाजे कैसो निर्तकारी, बिन कंठ कैसे गवनहारी, जील बिना कैसे बजर बाप। नाम बिना बिरथे सब काज, नाम बिना कहो को तरिया, बिन सतगुर कैसे पार परिया रहाओ। बिन जेहवा कहाँ को बगता, बिन श्रवना कहाँ को सुनता, बिन नेत्रा कहाँ को पेखै, नाम बिना नर कहीं न लिखै। बिन विद्या कहाँ कोई पंडित, बिन अमरै कैसे राज मंडित, बिन बुझे कहाँ मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना। बिन बैराग कहाँ बैरागी, बिन हो त्याग कहाँ को त्यागी, बिन बस पंच कहाँ मन चूरे, नाम बिना ससद ही चूरे। बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान, बिन पै कथनी सर्व बेकार, कहो नानक दर का विचार। पैरो महला पंजवा, हों मैं रोग मानख कौ दीना, काम रोग मैंगल बस लीना, दृष्ट रोग पचमोए पतंगा, नाद रोग खप गए कोरंगा। जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी रहाओ। जेहवा रोग मीन ग्रस यानो, बासन रोग पवर बिनसानो। हेत रोग का सगल संसारा, त्रिबद रोग में बदे बिकारा। रोगे मरता रोगे जन्मे, रोगे फिर जोनी परमे। रोग बंद रहन रति ना पावे, बिन सतगुर रोग कते ना जावे। पार ब्रह्म जिसकी नी दया, बहां पकड़ रोगों कढ़ लया। टूटे बंधन साध संग पाया, कहो नानक गुर रोग मिटाया। पैरो महला पंजवा, चीत आवै ता महा आनंद, चीत आवै ता सब दुख पंज, चीत आवै ता सरदा पूरी, चीत आवै ता कबे न चूरी। अंतर राम राय प्रगटे आए, गुरपुरै दियो रंग लाए रहाओ। चीत आवै ता सर्ब को राजा, चीत आवै ता पूरे काजा, चीत आवै ता रंग गुलाल, चीत आवै ता सदा निहाल। चीत आवै ता सद धनवंता, चीत आवै ता सद निपरंता, चीत आवै ता सब रंग माणे, चीत आवै ता चुकी काणे। चीत आवै ता सहज कर पाया, चीत आवै ता सुन समाया, चीत आवै सद कीर्तन करता, मन मान्या नानक भगवंता। पैरो महला पंजवा, बाप हमारा सद चरंग जीवी, पाई हमारे सद ही जीवी, मीत हमारे सदा बनासी, कुटुंब हमारा नी करवासी। हम सुख पाया ता सवै सुहेले, गुरपुरै पिता संग मेले रहाओ। मंदिर मेरे सब ते उच्चे, देश मेरे बेअंता पूछे, राज हमारा सदी निचल, माल हमारा खूटा बेचल। सोभा मेरी सब जुग अंतर, बाज हमारी थान थनंतर,
कीर्त हमरी कर कर होई, भगत हमारी सबनी लोई, पिता हमारे प्रगटे मांझ, पिता पुत्रल किन्नी सांझ। कहो नानक जो पिता पतीने, पिता पूते कै रंग लीने, पैरों महला पंजवां। निर्वैर पुरख सतगुर प्रभ दाते, हम अपराधी तुम बख्साते। जिस पापी को मिले ना टोई, शरण आवे ता निर्मल होई। सुख पाया सतगुरु मनाए, सब फल पाए गुरु ते आए रहाओ। पार ब्रह्म सतगुर आदेश, मन तन तेरा सब तेरा देश। चूका पड़दा ता नदरी आया, खसम तू है सबना के राया। तिस पाणा सूके काष्ट हरिया, तिस पाणा ता थल सिर सरिया। तिस पाणा ता सब फल पाए, चिंत गई लग सतगुर पाए। हराम खोर निर्गुण कौ तूठा, मन तन शीतल मन अमृत बूठा। पार ब्रह्म गुर पए दयाला, नानक दास देख पए निहाला। पैरो महला पंजवां, सतगुर मेरा बेमोहताज, सतगुर मेरे सच्चा साज, सतगुर मेरा सब सका दाता, सतगुर मेरा पुरख बिदाता। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव रहाओ। सतगुर मेरा सर्ब प्रतपाल है, सतगुर मेरा मार जीवाल है, सतगुर मेरे की वड़ियाई, प्रगट पई है सबनी थाई। सतगुर मेरा तान नितान, सतगुर मेरा कर दीबाण, सतगुर कहो सदबल जाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया। जिन गुर सेव्या तिस पौ ना ब्यापै, जिन गुर सेव्या तिस दुख ना संतापै। नानक सो दे सिमरत बेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद। पैरो महला पंजवां, नाम लैत मन प्रगट पया, नाम लैत पाप तंते गया। नाम लैत सगल पुरबाया, नाम लैत अठसठ मजनाया। तीर्थ हमरा हर को नाम, गुरु उपदेसया तत् ज्ञान रहाओ। नाम लैत दुख दूर पराना, नाम लैत अतमूढ़ सुगयाना। नाम लैत प्रगट उजियारा, नाम लैत छुट्टे जंजारा। नाम लैत जम नेड़ना आवै, नाम लैत दरगह सुख पावै। नाम लैत प्रभ कह सबास, नाम हमारी साची रास। गुर उपदेश कयो एहो सार, हर कीर्त मन नाम आधार। नानक उधरे नाम पुनै चार, अवर कर्म लोकै पतियार। पैरो महला पंजवां, नमस्कार ता कौ लख बार, एहो मन दीजै ता कौ वार। सिमरन ता कै मिटै संताप, होए आनंद न व्यापै ताप। ऐसो हीरा निर्मल नाम, जास जपत पूर्ण सब काम रहाओ। जां की दृष्ट दुख डेरा टह, अमृत नाम शीतल मन गह। अनक भगत जाके चरण पुजारी, सगल मनोरथ पूर्ण हारी। खिन मैं ऊणे सुबर भरिया, खिन मैं सूके कीने हरिया। खिन मैं निथावे कौ दीनो थान, खिन मैं निमाणे कौ दीनो मान। सब मैं एक रहा पर पूरा, सो जापै जे सतगुर पूरा। हर कीर्तन ताको आधार, कहो नानक जिस आप दयार। पैरो महला पंजवां, मोहे दुहागन आप सिंगारी, रूप रंग दे नाम सवारी। मिट्यो दुखर सगल संताप, गुर होए मेरी माई बाप। सखी सहेरी मेरा ग्रस्त आनंद, कर कृपा भेटे मोहे कंत रहाओ। तपत बुझी पूर्ण सब आसा, मिटिया देर भय प्रगासा। अनहद शब्द अचरज बिस्माद, गुरपूरा पूरा प्रसाद। जां कौ प्रगट भय गोपाल, तां कै दर्शन उसदा निहाल। सर्ब गुणा ता कै बहुत निदान, जा को सतगुर दियो नाम।
ਜਾਂ ਕਉ ਭੇਟਿਓ ਠਾਕੁਰ ਅਪਨਾ, ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹਰ ਹਰ ਜਪਨਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋ ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਰੇਨ ਬਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਏ। ਪੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਚਿਤਵਤ ਪਾਪ ਨਾ ਆਲ ਕੇ ਆਵੈ, ਬੇਸਵਾ ਭਜਤ ਕਿਸ਼ਨੈ ਸਰਮਾਵੈ। ਸਾਰੋ ਦਿਨ ਸਮਜੂਰੀ ਕਰੈ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਵੇਲਾ ਬੱਜਰ ਸਿਰ ਪਰੈ। ਮਾਇਆ ਲਗ ਭੁੱਲੋ ਸੰਸਾਰ, ਵਾ ਭੁਲਾਇਆ ਭੁਲਾਵਣ ਹਾਰੈ। ਰਾਹ ਚ ਰਹਿਆ ਬਿਰਥਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਹਾਓ, ਪੇਖਤ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਬਿਹਾਏ। ਗੜਬੜ ਕਰੈ ਕੌਡੀ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਅੰਧ ਵਿਵਹਾਰ ਬੰਧ ਮੰਤ ਆਵੈ। ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਵੈ, ਕਰਤ ਕਰਤ ਇਵ ਹੀ ਦੁਖ ਪਾਇਆ। ਪੂਰਨ ਹੋਤ ਨਾ ਕਾਰਜ ਮਾਇਆ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਨ ਲੀਨਾ। ਤੜਫ ਮੂਆ ਜਿਉ ਜਲ ਬਿਨ ਮੀਨਾ, ਜਿਸਕੇ ਰਾਖੇ ਹੋਏ ਹਰ ਆਪ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਦਾ ਜਪ ਜਾਪ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਪੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਸਾਧ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਜਾਹੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੀ ਕੋ ਆਧਾਰ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪੋ ਨਿਤ ਭਾਈ। ਤਾਰ ਲਏ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਰਹਾਓ, ਜਿਨ ਕਉ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਇਹੋ ਨਿਧਾਨ। ਸੇਜ ਅੰਦਰ ਗੈ ਪਾਵੈ ਮਾਨ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਅਗੈ ਮਿਲੈ ਨਿਥਾਵੇਂ ਥਾਓ, ਜੁਗੈ ਜੁਗੰਤਰ ਇਹੋ ਤਤ ਸਾਰ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਸਾਚਾ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਸ ਲੜ ਲਾਏ ਲਏ ਸੋ ਲਾਗੈ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗੈ, ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਭਗਤਨ ਕਾ ਆਪ। ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਆਪੇ ਜਾਪ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰੇ ਹਾਥ। ਨਾਨਕੇ ਪ੍ਰਭਸਦ ਹੀ ਸਾਥ, ਪੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਆਵੈ ਕਾਮੀ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਰਵਿਆ ਹਰ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀਨੋ ਦਾਨ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਮੇਰੇ ਭੰਡਾਰ, ਅਗਮਿਆ ਮੋਲਾ ਅਪਰਿਆ ਪਾਰ। ਰਹਾਓ ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਨਿਚਲ ਤਨੀ, ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸਭ ਮੈਂ ਬਨੀ। ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਪੂਰਾ ਸਾਹੋ, ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਬੇਪਰਵਾਹੋ। ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਭੋਜਨ ਪਾਓ, ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਮਨ ਕਾ ਸੁਆਓ। ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਨਾਮ ਲੈ ਤੋ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ ਨਾਦ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾਮ ਨਉ ਨਿਧ ਪਾਈ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾਮ

तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरे जी प्राण सुखदाता, तू मेरा ठाक रहा दास तेरा, तुझ बिन अवर नहीं को मेरा। कर कृपा करो प्रभदात, तुमरी उस्तत करो दिन रात रहाओ। हम तेरे जंत तू बजावन हारा, हम तेरे पिखारी दान दे दातारा। तव प्रसाद रंग रस माने, घट घट अंतर तुम्हें समाने। तुमरी कृपा ते जपिए नाओ, सा संग तुमरे गुण गाओ। तुमरी दया ते हुए दर्द विनाश, तुमरी माया ते कमल विगास। हम बलिहार जाऊं गुरुदेव, सफल दर्शन जाकी निर्मल सेव। दया करो ठाकुर प्रभ मेरे, गुण गावे नानक ने तेरे। पैरो महला पंजवा, सब ते ऊच जाका दरबार, सदा सदा ताको जोहार। ऊचे ते ऊचा जाका थान, कोट अग्गा मिटे हर नाम। ते सरनाई सदा सुख होए, कर कृपा जाको मिले सोए रहाओ। जाके करतब लखे ना जाहे, जाका प्रवासा सब कट माहे। प्रगट पया साधु कै संग, भगता राधा अंदन रंग। दिन दे तोट नहीं पंडार, खिन मैं थापो थापनहार। जा का हुक्म ना मिटे कोए, सिर पातशाह साचा सोए। जिसकी ओट तिसे की आसा, दुख सुख हमरा तिसी पासा। राख लीनो सब जन का पड़दा, नानक तिसकी उस्तत करदा। पैरो महला पंजवा, रोवन हारी रोज बनाया। बलन बर्तन कौ संबंध चेते आया। बूझ बैराग करे जे कोए, जन्म मरण फिर सोग ना होए। बिखिया का सब तंद पसार, विरले की नोना में आधार रहाओ। त्रिबद माया रही ब्याप, जो लपटानो ते दू संताप। सुख नाही बिन नाम ते आए, नाम निदान वट पागी पाए। स्वांगी स्यों जो मन री जावै, स्वांग उतारे है फिर पछतावै। मेघ की छाया जैसे बर्तनहार, तैसो परपंच मोह बेकार। एक वस्त जे पावे कोए, पूर्ण काज ताही का होए। गुर प्रसाद जिन पाया नाम, नानक आया सो प्रवान। पैरो महला पंजवा, संत की निंदा जो नी भवना, संत की निंदा रोगी करना। संत की निंदा दुख सहाम, दान दैत निंद कौ जाम। संत संग करे जो बाद, तिन निंदे नाही के साध रहाओ। भगत की निंदा

निंदक की गत कत हूं नाहे, आ बीजा पे ही खाहे। चोर जार जुआर दे बुरा, अनहोंदा पार निंदक सिर धरा। पार ब्रह्म के भगत निर्वैर, सो निस्तरै जो पूजै पैर। आद पुरख निंदक पोलाया, नानक कीर्तना जाए मिटाया। पैरव महला पंजवां, नाम हमारा बेदर नाद। नाम हमारा पूरे काज, नाम हमारा पूजा देव। नाम हमारा गुरु की सेव, गुरपुरे दृढ़ो हर नाम। सब ते उत्तम हर हर काम रहाओ। नाम हमारा मज्जन इशनान, नाम हमारा पूर्ण दान। नाम लैते सगल पवीत, नाम जपत मेरे भाई मीत। नाम हमारा सौन संजोग, नाम हमारा तृप्त सो भोग। नाम हमारा सगले आचार, नाम हमारा निर्मल व्यवहार। जाके मन वस्या प्रभ एक, सगल जना की हर हर टेक। मन तन नानक हर गुण गाओ, साध संग जिस देवै नाओ। पैरो महला पंजवां, निरतन कहो तुम देवो तना। अनक पाप जाहे निर्मल मना, सगल मनोरथ पूर्ण काम। भगत अपने कहो देवो नाम, सफल सेवा गोपाल राय। करण करावन हर स्वामी, ताते बिरथा कोई न जाए रहाओ। रोगी का प्रभ खंडो रोग, दुखिए का मिटाओ प्रभ सोग। निथावे कहो तुम थान बैठावो, दास अपने कहो भक्ति लावो। निमाने कहो जो दे तो मान, मूड मुग्ध होए चतर सुज्ञान। सगल पयान का पौ नसे, जन अपने कह हर मन बसे। पार ब्रह्म प्रभ सुख निधान, तत् ज्ञान हर अमृत नाम। कर कृपा संत टहले लाए, नानक साधु संग समाए। पैरो महला पंजवां, संत मंडल में हर मन वसै। संत मंडल में दुर्त सब नसै, संत मंडल में निर्मल रीत। संत संग हुए एक प्रीत, संत मंडल तहां का नाओ। पार ब्रह्म केवल गुण गाओ रहाओ। संत मंडल में जन मरण रहे, संत मंडल में जम किशु ना कहे। संत संग होए निर्मल बाणी, संत मंडल में नाम वखाणी। संत मंडल का निचल आसन, संत मंडल में पाप विनाशन। संत मंडल में निर्मल कथा, संत संग हो मैं दुख नसा। संत मंडल का नहीं विनाश, संत मंडल में हर गुणतास। संत मंडल उठाकर विश्राम, नानक उत्पोत भगवान। पैरो महला पंजवां, रोग कवन जा राखे आप। तेह जन होए ना दुख संताप, जिस ऊपर प्रभ कृपा करे। तिस ऊपर ते काल पर हरे, सदा सखाई हर हर नाम। जिस चीत आवे ते सदा सुख होवे, निकटना आवे ता कह जाम रहाओ। जब एहो नासो तब किने उपाया, कवन मूल ते क्या प्रगटाया। आपे मारा आप जीवा ले, अपने भगत का सदा प्रतिपाल ले। सब किछ जानो तिसके हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ। दुख पंजन ता कह नाओ, सुख पावे तिसके गुण गाओ। सुन स्वामी संतन अरदास, जियो प्राण तन तुम रह पास। एहो जग तेरा सब तुए ते आए, कर कृपा नानक सुख पाए। पैरो महला पंजवां, तेरी टेक रहा कल माहे। तेरी टेक तेरे गुण गाहे, तेरी टेक न पो है काल। तेरी टेक बिन सह जंजाल, दीन दुनिया तेरी टेक। सब मै रविया साहब एक रहाओ। तेरी टेक करो आनंद, तेरी टेक जपो गुरमंत।
तेरी टेक तरिया पौ सागर राखण हार पूरा सुख सागर तेरी टेक नाही पौ कोए अंतर जामी साचा सोए तेरी टेक तेरा मन तान इहां उहां तू दीवान तेरी टेक तेरा प्रवासा सगल ते आवे प्रभुतासा जप जप आनंद करह तेरे दासा सिमर नानक साचे गुणतासा पहराओ महला पंजवां प्रथमे छोड़ी पराई निंदा उतर गई सामन की चिंदा लोभ हो सब कीनो दूर परम बैसनो प्रापे खजूर ऐसो त्यागी विरला कोए हर हर नाम जपै जन सोए रहाओ अहं बुद्ध का छोड़िया संग काम क्रोध का उतरिया रंग नाम ते आए हर हर हरे सात जना कै संग निस्तरे बैरी मीत होए सम्मान सर्व मैं पूर्ण भगवान प्रभ की आज्ञा मान सुख पाया गुरपूरे हर नाम दरड़ाया कर कृपा जिस राखे आप सोई भगत जपै नाम जाप मन प्रगास गुरते मत लई कहो नानक तां की पूरी पई पैरो महला पंजवा सुख नाही बहुते तन खाटे सुख नाही पेखे नित नाटे सुख नाही बहु देश कमाए सर्व सुखा हर हर गुण गाए सुख सहज आनंद लहो साध संगत पाईए वडभागी गुरमुख हर हर नाम कहो रहाओ बंधन मात पिता सुदबंता बंधन कर्म तर्म हों करता बंधन काटन हार मन वसै तव सुख पावै निज कर बसै सब जाचक प्रभ देवन हार गुण निधान बेअंत अपार जिसनों कर्म करे प्रभ अपना हर हर नाम तिने जन जपना गुर अपने आगै अरदास कर कृपा पुरख गुणतास कहो नानक तुमरी सरनाई ज्यो पावे त्यों रखो गुसाई पैरो महला पंजवा गुरमिल त्याग्यो दूजा पाओ गुरमुख जपियो हर का नाम बिसरी चिंत नाम रंग लागा जन्म जन्म का सोया जागा कर कृपा अपनी सेवा लाए साधु संग सर्व सुख पाए रहाओ रोग दोख गुर शब्द निवारे नाम औखद मन भीतर सारे गुर भेटत मन पया आनंद सर्व निदान नाम भगवंत जन मरण की मिटी जमत्रास साध संगत ऊंद कमल विगास गुण गावत निचल विश्राम पूर्ण होए सगले काम दुलभ देह आई परवान सफल होई जप हर हर नाम कहो नानक प्रभ कृपा करी सास गिरास जपो हर हरी पैरव महला पंजवा सब ते उच्चा जा का नाओ सदा सदा ताके गुण गाओ जिस सिमरत सगला दुख जाए सर्व सुख वसै मन आए सिमर मना तू साचा सोए हलत पलत तुमरी गत होए रहाओ पुरख निरंजन सृजनहार जी जंत देवै आहार कोट खते खिन बख्शनहार भगत पाए सदा निस्तार साचा तन साची वड्याई गुर पूरे ते निचल मत पाई कर कृपा जिस राखन हारा तां का सगल मिटै अंधियारा पार ब्रह्म स्यों लागो ध्यान पूर्ण पूर रहो निर्वाण भ्रम पाओ मेट मिले गोपाल नानक कहो गुर पहे दयाल पैरो महला पंजवा जिस सिमरत मन होए प्रगास मिटै कलेस सुख सहज निवास
तिसै प्राप्त जिस प्रभ दे पूरे गुर की पाए सेव। सर्व सुखां प्रभ तेरो नाम, आठ पहर मेरे मन गाओ रहाओ। जो इच्छा सोई फल पाए, हर का नाम मन वसाए। आवन जान रहे हर त्याए, भगत पाए प्रभ की लिवलाए। बिन से काम क्रोध अहंकार, टूटे माया मोह प्यार। प्रभ की टेक रहे दिन रात, पार ब्रह्म करे जिस दात। करण करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर्यामी। कर कृपा अपनी सेवा लाए, नानक दास तेरी शरण आए। पहराओ महला पंजवा, लाज मरे जो नाम ना लेवे। नाम बिहून सुखी क्यों सोवे। हर सिमरन शाड परम गत चाहे, मूल बिना साखा कत्या है। गुर गोविंद मेरे मन त्याए, जन्म जन्म की मैल उतारे। बंधन काट हर संग मिलाए रहाओ। तीर्थ नाए कहां सोच सैल, मन को व्यापै हूं मैं मैल। कोट कर्म बंधन का मूल, हर के भजन बिन बिरथा पूल। बिन खाए बुझे नहीं भूख, रोग जाए ता उतरे दुख। काम क्रोध लोभ मोहे व्यापिया, जिन प्रभ कीना सो प्रभ नहीं जापिया। तन तन साध तन हर नाओ, आठ पहर कीर्तन गुण गाओ। तन हर भगत तन करण हार, शरण नानक प्रभ पुरख्या पार। पहरो महला पंजवा, गुर सो प्रसन्न होए पौ गए। नाम निरंजन मन में ले, दीन दयाल सदा कृपाल। बिनस गए सगले जंजाल, सुख सहज आनंद कने। सा संग मिटे पै परमा, अमृत हर हर रसन भने रहाओ। चरण कमल स्यो लागो हेत, खिर मैं बिन स्यो महाप्रेत। आठ पहर हर हर जप जाप, रख नहार गोविंद गुरे आप। अपने सेव कौसदा प्रतपार, पगजना के सास निहार। मानस की कहो केतक बात, जम तेरा खै दे कर हाथ। निर्मल शोभा निर्मल रीत, पार ब्रह्म आया मन चीत। कर कृपा गुरदीनो दान, नानक पाया नाम निदान। पहरो महला पंजवा, करण कारण समर्थ गुर मेरा। जी प्राण सुखदाता नेरा, पह पंजन अबनासी राए। दर्शन देखे सब दुख जाए, जत कत पेखो तेरी सरना। बल बल जाई सदगुर चरना रहाओ। पूर्ण काम मिले गुरदेव, सफल दाता निर्मल सेव। कर गह लीने अपने दास, राम नाम रिद्धियो निवास। सदा आनंद नाही के सोग, दुख दर्द न व्यापै रोग। सब किश तेरा तू करने हार, पार ब्रह्म गुर अगम अपार। निर्मल सोभा अचरज बाणी, पार ब्रह्म पूर्ण मन पाणी। जल थल महियल रविया सोए, नानक सब किश प्रभ ते होए। पहरो महला पंजवा, मन तन राता राम रंग चरने। सर्ब मनोरथ पूर्ण करने, आठ पहर गावत भगवंत। सतगुर दीनो पूरा मंत, सो बड़ भागी जिस नाम प्यार। तिसके संग तरह संसार रहाओ। सोई ज्ञानी जे सिमरै एक, सो तनवंता जिस बुद्ध बबेक। सो कुलवंता जे सिमरै स्वामी, सो पतवंता जे आप पिछानी। गुर प्रसाद परम पद पाया, गुण गोपाल दिन रहन ते आया। टूटे बंधन पूर्ण आसा, हर के चरण रिद माहे निवासा। कहो नानक जाके पूर्ण कर्मा, सो जन आया प्रभ की सरना।
ਆਪ ਪਵਿੱਤ ਪਾਵਨ ਸਭ ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਰਸਨਾ ਚੀਨੇ ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਨਾਮ ਲੈ ਤੋ ਕਿਛ ਬਿਗ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਨਾਮ ਸੁਣ ਤੋ ਜਮ ਦੂਰੋਂ ਭਾਗੈ। ਨਾਮ ਲੈ ਤੋ ਸਭ ਦੁਖੈ ਨਾਸ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਨਿਰਬਿਘਨ ਭਗਤ ਭਜ ਹਰ ਹਰ ਨਾਉ, ਰਸਕ ਰਸਕ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਰਹਾਓ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਕਿਸ ਚਾਖ ਨਾ ਜੋ ਹੈ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਦੈਤ ਦਿਓ ਨਾ ਪੋਹੈ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਮੋਹ ਮਾਨ ਨਾ ਬਦੈ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਗਰਭ ਜੋਨ ਨਾ ਰੁਦੈ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਸਗਲੀ ਬੇਲਾ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਬਹੁ ਮਾਇ ਅਕੇਲਾ। ਜਾਤ ਅਜਾਤ ਜਪੈ ਜਨ ਕੋਏ, ਜੋ ਜਾਪੈ ਤਿਸਕੀ ਗਤ ਹੋਏ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕਾ ਪੂਰਨ ਰੰਗ। ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਸਾ ਸਾ ਸਰ ਦਿਹੋ ਚਤਾਰ। ਪੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਆਪੇ ਸਾਸਤੇ ਆਪੇ ਭੇਦ, ਆਪੇ ਘਟਕਟ ਜਾਣੈ ਭੇਦ। ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਕੀ ਸਭ ਵੱਥ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੂਰਨ ਸਮਰੱਥ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਓਟ ਗਹੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰਮੁਖਿਆ ਰਾਧਾਓ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੁਖ ਨਾ ਆਵੈ ਨੇਰੇ ਰਹਾਓ। ਆਪੇ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰਿ ਭਵਨ ਸਾਰ, ਜਾਂ ਕੈ ਸੂਤ ਪਰੋਇਆ ਸੰਸਾਰ। ਆਪੇ ਸਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਜੋਗੀ, ਆਪ ਨਿਰਬਾਣੀ ਆਪੇ ਭੋਗੀ। ਜਤ ਕਤ ਪੇਖੋ ਤਤ ਤਤ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗ, ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗ। ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਵਸ ਜਾਂ ਕੈ, ਊਣਾ ਨਾਹੀ ਕਿਸ ਜਨਤਾ ਕੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਹੋਏ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਹੀ ਜਨ ਧੰਨ। ਪਹਿਰਾਓ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਭਗਤਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਗੋਬਿੰਦ, ਅਸਥਿਤ ਭਏ ਬਿਨਸੀ ਸਭ ਚਿੰਦ। ਭੈ ਭ੍ਰਮ ਬਿਨਸ ਗਏ ਖਿਨ ਮਾਹੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਸੰਤ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਰਵ ਰਹਿਆ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ ਰਹਾਓ। ਧਨ ਮਾਲ ਜੋਬਨ ਜੁਗਤ ਗੋਪਾਲ, ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਤ ਸੁਖ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕਉ ਦੇ ਰਾਖੈ ਹਾਥ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਛੋਡੈ ਸਦ ਹੀ ਸਾਥ। ਹਰ ਸਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਸਰ ਸਮਾਲੇ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧ ਨਾਰਾਇਣ, ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਾਇਣ। ਤਿਸ ਕੀ ਧਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਮਨ ਜੋਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨ ਇਹੋ ਪ੍ਰਖਾਰਥ, ਪ੍ਰਭੂ ਹਮਾਰਾ ਸਾਰੇ ਸਵਾਰਥ। ਪਹਿਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਭੈ ਕਉ ਭਉ ਪੜਿਆ, ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਸਗਲ ਬਿਆਦ। ਮਿੱਟੀ ਤ੍ਰਿਹ ਗੁਣ ਕੀ, ਦਾਸ ਕੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ਰਹਾਓ। ਹਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਤਿਨਕੋ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰਨ ਧਾਮ। ਜਨ ਕਾ ਦਰਸ ਬਾਂਛੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਹੋਏ ਪੁਨੀਤ ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਾਮ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਦ ਨਿੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟਿਆ ਅਭਿਮਾਨ। ਐਸੇ ਸੰਤ ਭੇਟੈ ਵਡਭਾਗੀ, ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੈ ਸਤ ਕੁਰਬਾਨ।

नाव मेरे बंधप नाव मेरे भाई, नाव मेरे संग अंत होए सखाई। माया मैं जिस रखै उदास, कह कबीर हाँ ता को दास। नांगे आवन नांगे जाना, कोई न रह है राजा राना। राम राजा नौनद मेरा, संपै हेत कला तो तन तेरा रहाओ। आवत संग न जा संगाती, कहा पयो दर बांधे हाथी। लंका गढ़ सोने का पया, मूर्ख रावण क्या ले गया। कहे

सो सुरतान जो दोए सरतान है, बाहर जाता पीतर यान है, गगन मंडल में लश्कर करे, सो सुरतान शत्र सर तरे, जोगी गोरख गोरख करे, हिंदू राम नाम उचरे, मुसलमान का एक खुदा ए, कबीर का स्वामी रया सुमाए। महल्ला पंजवा, जो पाथर को कहते देव ताकि बिरथा हो वैसेव, जो पाथर की पाई पाए तिसकी काला जाई जाए। ठाकर हमरा सदबोलंता, सर्ब जिया को प्रभ दान देता रहा, अंतर देव न जन अंध, भ्रम का मोहया पावे फंद, ना पाथर बोले ना किश दे, फोकट कर्म ने फल है सेव, जे मृतक कहो चंदन चढ़ावे उसते कहो कवन फल पावे, जे मृतक कहो बिष्टा माहे रुलाई ता मृतक का क्या कट जाई। कहत कबीर हाँ कहो पुकार, समय देख सकत गावार, दूजे पाए बहुत कर गाले, राम भक्त है सदा सुखाले, जल में मीन माया के बेदे, दीपक पतंग।

आई। रहाओ पंखी मृग माया मैराते, साकर माखी अधिक संतापे, तुरे उष्ट माया मैं पेला, सिद्ध चौरासी माया मैं खेला, छे जती माया के बंदा, नवे नाथ सूरजर चंदा, तपे रखीसर माया मैं सूता, माया मैं काल यार पंच दूता, स्वान स्याल माया मैं राता, बंतर जीते अर सिंघाता, मांजार गाडर अर लुबरा, बिरख मूल माया मैं परा, माया अंतर पीने देव, सागर इंद्रा यार तार तेव, कह कबीर जिस उधर तिस माया, तब छूटे जब साधु पाया, जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एक नहीं सरे, जब मेरी मेरी मिट जाए, तब प्रभ काज सवारे आए, ऐसा ज्ञान विचार मना, हर कीना सिमरो दुख भंजना रहाओ, जब लग सिंह रह बन माहे, तब लग बन फूल ही नाहे, जब ही स्यार सिंह को खाए, फूल रही सगली बन राए, जीतो बूढ़े हार उतरे, गुर प्रसादी पार उतरे, दास कबीर कह समझाए, केवल राम रहो लिवलाए, सत्तर सह सलाह रह जाके, सवा लाख पै काम ब्रता के, सेख जो कही है कोट अठासी, छप्पन कोट जाके खेल खासी, मो गरीब की को गुजरावे, मजरस दूर मैल को पावे रहाओ, ते तीस करोड़ी है खेल खाना, चौरासी लख फिर दीवाना, बाबा आदम कहो किशन दर दिखाई, उन पी पिस्त कनेरी पाई, दिल खल हल जाके जर दरू बानी, छोड़क तेब करे सैतानी, दुनिया दोस रोस है लोई, अपना किया पावे सोई, तुम दाते हमसरा पिखारी, देव जवाब होए बजगारी, दास कबीर तेरी पने समाना, पेस्तन जीक राख रह माना, सब कोई चलन कहत है उहां, ना जानो बैकुंठ है कहां रहाओ, आप आपका मर्म ना जाना, बात नहीं बैकुंठ बखाना, जब लग मान बैकुंठ की आस, तब लग नाही चरण निवास, खाई कोट ना परलप गारा, ना जानो बैकुंठ द्वारा, कह कमीर अब कहिए काहे, साध संगत बैकुंठ आहे, क्यों लीजे गढ़ बंका पाई, दोवर कोटियार तेवर खाई रहाओ, पांच पचीस मोह मद मत सर, आडी प्रबल माया, जन गरीब को जोर ना पहुंचे, कहां करो रगराया, काम केवारी दुख सुख दरवानी, पापन दरवाजा, क्रोध प्रधान महा बड़ दुंदर, तै मनमावासी राजा, स्वाद सनाहा टोप ममता को, कबोध कमान चढ़ाई, तसना तीर रहे गढ़ पीतर, इउं गढ़ लियो न जाई, प्रेम पलीता सुरत हवाई, गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म यगन सहजे परजाली, एक चोट सजाया, सत संतोख ले लरने लागा, तोरे दोई दरवाजा, साध संगत गुर की कृपा ते, पकड़ो गढ़ को राजा, भगवत पीर सकत सिमरन की, कटी काल पै फांसी, दास कमीर चढ़ियो गढ़ी उपर, राज लियो अबनासी, गंग गुसायन गहर गंभीर, जंजीर बांध कर करे कबीर, मन ना डिगे तन काहे कौ डराए, चरण कमल चित रहो समाए रहाओ, गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगशाला पर बैठे कबीर, कह कबीर को संग ना साथ, जल थल रखन है रघुनाथ, पैरव कबीर जी अष्टपति कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आगम दुर्गम गढ़ रचियो बास, जामै जोत करे प्रगास, बिजली चमकै होए आनंद, जे पौड़े प्रभ बाल गोबिंद, एहो जियो राम नाम लिव लागै, जरा मरण छूटै परम भागै रहाओ, अबरन बरन स्यो मन ही प्रीत, हमै गावन गावै गीत, अनहद शब्द होत चुनकार, जे पौड़े प्रभ श्री गोपाल, खंडल मंडल मंडल मंडा, त्रया शांति त्रे खंडा, आगम्या गोचर रहया अभ्यंत, पार ना पावै को तरनी तरमंत,
कदली पोहप तू प्रगास, राज्य पंकज मैं लियो निवास, द्वादश दाल अभ अंतर मंत, जय पौड़े श्री कमलाकंत, अर्ध उर्ध मुख लागो कास, सुन मंडल मैं कर प्रगास, उहां सूरज नाही चंद, आद निरंजन करे आनंद, सो ब्रह्मांड पिंड सो जान, मान सरोवर कर स्नान, सो हंस सो जा को है जाप, जा को लिप्त न होए पुण्य अर पाप, अबर्ण बर्ण काम नहीं शाम, अवर न पाइये गुर की साम, तारी न टरे आवे न जाए, सुन सहज में रहो समाए, मन मध्य जाने जे कोए, जो बोले सो आपे होए, जोत मंत्र मन असर करे, कह कबीर सो प्राणी तरे, कोट सूर जा कै प्रगास, कोट महादेव अर कबलास, दुर्गा कोट जा कै मर्दन करे, ब्रह्मा कोट वेद उचरे, जो जाचो तो केवल राम, आन देव स्यो नाही काम, राहो कोट चंद्र में करे चराक, सुरत तीसो जे वै पाक, नाम ग्रह कोट ठांडे दरबार, धर्म कोट जा कै प्रतहार, कवन पवन कोट चौ बारे फिरे, बास कोट सेज बिस्थरे, समुंद कोट जा कै पानी हार, रुमावल कोटा ठारे पार, कोट कमेर पर है पंडार, कोट क लक्ष्मी करे सिंगार, कोट क पापन बहरे, इंद्र कोट जाके सेवा करे, छप्पन कोट जाके प्रतहार, नगरी नगरी ख्यात्या पार, लट छुट्टी वरते बिकराल।

नाम असंख कोटियन पूजा करी, एक ना पूजस नामे हरी। प्रणवै नाम दे होए हो करना, अनंत रूप तेरे नारायणा। पर तन पर दारा पर हरी, ताके निकट बसै नर हरी। जो ना भजंते नारायणा, तिनका मैं ना करो दर्शना। रहाओ जिनके पितर है अंतरा, जैसे पस तैसे होए नरा। प्रणवत नाम दे हो ना कै बिना, ना सो है बत्तीस लखना। दूध कटोरे गड़वै पानी, कपल गाय नामे दुहयानी। दूध पियो गोविंदे राय, दूध पियो मेरो मन पतियाए। नाही ता कर को बाप रसाए, रहाओ सोयन कटोरी अमृत भरी। लैना मैं हरिया गै तरी, एक भगत मेरा हृदय बसै। ना मैं देख नारायण हसै, दूध पी आए भगत गर गया। ना मैं हर का दर्शन भया, मैं बौरी मेरा राम पतार। रच रच ता कहो करो सिंगार। भले निंदो भले निंदो भले निंदो लोग, तन मन राम प्यारे जोग। रहाओ बाद विवाद कहूं स्यो ना कीजै, रसना राम रसायन पीजै। आप जी जान ऐसी बन आई, मिलो गोपाल निशान बजाई। उस्त निंदा करे नर कोई, नामे श्री रंग पेट लसोई। कबहू खीर खांड घीओ ना पावै, कबहू घर घर टूक मंगावै। कबहू कूर्ण चने बनावै, ज्यो राम राखै त्यों रहियै रे भाई। हर की महिमा किश कथन ना जाई, रहाओ। कबहू तुरे तरंग नचावै, कबहू पाए पनियो ना पावै। कबहू खाट सुपेदी सुवावै, कबहू भूम पै आर ना पावै। भणत नाम दे एक नाम निस्तार है, जे गुर मिलै ते पार उतारै। हस्त खेलत

अंतर्यामी प्रभ दयाल, अपने दास को नजर निहाल, कर कृपा मोह देहो दान, जप जीव नानक तेरो नाम। बसंत महला पंजवां, राम रंग सब गए पाप, राम जप तो कछ नहीं संताप, गोविंद जप तो समटे अंधेर, हर सिमर तो कछ नाए फेर। बसंत हमारे राम रंग, संत जना स्यों सदा संग रहाओ, संत जनी किया उपदेश, जह गोविंद भगत सो धन देस, हर भगत हीन उदयान थान, गुर प्रसाद घट घट पछान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग, निगट पेख प्रभ करण हार, ई तूत प्रभ कार्य सार, चरण कमल सो लगो ध्यान, कर कृपा प्रभ कीनो दान। तेरिया संत जना की पांछो धूर, जप नानक स्वामी सद हजूर। बसंत महला पंजवां, सच परमेश्वर नित नवा, गुर कृपा ते नित चवा, प्रभ रखवाले माई बाप, जाकै सिमरन नहीं संताप। खसम ते आई एक मन एक पाए, गुरपुरे की सदा सरनाई, साचे साहिब रखिया कंठ लाए रहाओ। अपने जन प्रभ आप रखे, दुष्ट दूत सब भ्रम थके, बिन गुर साचे नहीं जाए, दुख देस दिसंतर रहे ताए। किरत ओना का मिटस नाहे, ओए अपना बीजा आप खाहे, जन का रखवाला आप सोए, जन को पहुंच ना सकस कोए। प्रभदास रखे कर जतने आप, अखंड पूर्ण जाको प्रताप, गुण गोबिंद नित रसन गाए, नानक जीवै हर चरण ते आए। बसंत महला पंजवां, गुर चरण सरेवत दुख गया, पार ब्रह्म प्रभ करी मया, सर्व मनोरथ पूर्ण काम, जप जीवै नानक राम नाम। सारुत सुहावी जित हर चित आवै, फिर सतगुर दी सह बिललांती, साखत फिर फिर आवै जावै रहाओ। से तनवंत जिन हर प्रभ रास, काम क्रोध गुर शब्द नास, पह बिन से निरपै पद पाया, गुरमिल नानक खसम ते आया। साध संगत प्रभ कियो निवास, हर जप जप होई पूर्ण आस, जल थल महियल रव रहया, गुरमिल नानक हर हर कहया। अहित सिद्ध नवनिद एह, कर्म प्राप्त जिस नाम देह, प्रभ जप जप जीवै तेरे दास, गुरमिल नानक कमल प्रगास। बसंत महला पंजवां, कर पहला एक तुके एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सगल इच्छा जपनिया, प्रभ मिले चिरी विछुनिया, तुम रवो गोबिंद रमन योग, जित रवे सुख सहज भोग रहाओ। कर कृपा नगर निहालिया, अपना दास आप संभालिया, से सुहावी रस बनी, आए मिले प्रभ सुख धनी। मेरा गुणे अवगुण ना बिचारिया, प्रभ नानक चरण पूजा रिया। बसंत महला पंजवां, किल बिख बिनसे गाए गुना, आन दिन उपजी सही धुना, मन मौल्यो हर चरण संग, कर कृपा साधु जन भेटे, नित राताओ हर नाम रंग रहाओ। कर कृपा प्रगटे गोपाल, लड़ लाए उधारे दीन दयाल, एहो मन होवा साध तूर, नित देखे स्वामी हजूर। काम क्रोध तृष्णा गई, नानक प्रभ कृपा पई। बसंत महला पंजवां, रोग मिटाए प्रभु आप, बालक राखे अपने कर थाप, सांत सहज गृह सद बसंत, गुरपुरे की सरनी आए, कल्याण रूप जप हर हर मंत रहाओ। सोग संताप कटे प्रभ आप, गुरे अपने को नित नित जाप, जो जन तेरा जपे नाम,
ਸਫਲ ਪਾਏ ਨਿਸ਼ਚਲ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭਲੀ ਰੀਤ, ਸੁਖਦਾਤਾ ਜਪਦੇ ਨੀਤ ਨੀਤ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹੁਕਮ ਕਰ ਕੀਨੇ ਨਿਹਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕੋ ਭਇਆ ਦਿਆਲ, ਗੁਰਪੁਰੈ ਸਾ ਪੂਰਾ ਕੀਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਿੰਦੀਆ। ਰਹਾਓ ਕਰਮ ਧਰਮ ਮੇਰਾ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਬਾਹਾਂ ਪਕਰ ਭਵਜਲ ਨਿਸਤਾਰਿਓ, ਪ੍ਰਭ ਕਾਟ ਮਹਿਲ ਨਿਰਮਲ ਕਰੇ, ਗੁਰਪੁਰੇ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੇ, ਆਪ ਕਰੈ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹਾਰੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਕੋ ਧਾਰੇ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਦੇਖ ਫੂਲ ਫੂਲ ਫੂਲੇ, ਅਹੰ ਤਿਆਗ ਤਿਆਗੇ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਾਗੇ, ਤੁਮ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਭ ਸੁਭਾਗੇ, ਹਰ ਚੇਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਹਾਓ, ਸਗਨ ਬਾਸ ਕੂਲੇ, ਇੱਕ ਰਹੇ ਸੂਖ ਕਠੂਲੇ, ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆਈ ਪਰ ਫੂਲਤਾ ਰਹੇ, ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ, ਅਨਰੂਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ, ਮਤ ਭਰਮ ਭੂਲੋ ਭੂਲੋ, ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਹਰ ਪਾਏ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਹੈ ਲੇਖਾ, ਮਨ ਰੁੱਤ ਨਾਮ ਰੇ, ਗੁਣ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰੇ ਹਰ ਹਰੇ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਰ ਦੂਜਾ ਹਿੰਡੋਲ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੈ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ, ਇਨ ਬਿਦ ਪਾਸਾ ਢਾਲੋ ਬੀਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਹਿ ਲਾਗੈ ਪੀਰ। ਰਹਾਓ ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੁਮ ਚੌਪੜ ਸਾਜੋ, ਸਤ ਕਰੋ ਤੁਮ ਸਾਰੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋ ਮੋਹ ਜੀਤੋ, ਐਸੀ ਖੇਲ ਹਰ ਪਿਆਰੀ, ਉਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭਾਤੇ, ਸੋਏ ਹਰ ਆਰਾਧੇ ਬਿਖੜੇ ਦਾਓ, ਲੰਘਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਤੇ, ਹਰ ਆਪੇ ਖੇਲੈ ਆਪੇ ਦੇਖੈ, ਹਰ ਆਪੇ ਰਚਨ ਰਚਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਨਰ ਖੇਲੈ, ਸੋ ਜਿਣ ਬਾਜੀ ਘਰ ਆਇਆ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ

जोगी जंगम अर संन्यास सभी पर डारिये फास। जेह जे हर को नाम समार ते पव सागर उतरे पार। जन नानक हर की शरण आए दीजे नाम रह गुण गाए। बसंत महला नावा माई मैं तन पायो हर नाम। मन मेरो धामन ते छूटो कर बैठो विश्राम रहाओ। माया ममता तन ते भागी उपजो निर्मल ज्ञान। लोभ मोए परसना साकै गही भगत भगवान। जन्म जन्म का संसार चूकार तन नाम जप पाया। तृष्णा सगल बिनासी मनते नहीं सुख माए समाया। जा कहो दयाल कृपा निध सो गोविंद गुण गावै। कहो नानक बिद की संपै को गुरमुख पावै। बसंत महला नावा मन कहा बिसार्यो राम नाम। तन बिनसै जम स्यों परे काम रहाओ। एहो जग तुए का पहार तै साचा मानिया के विचार। तन दारा संपत ग्रह कह संग ना चालै समझ लेहे। एक भगत नारायण होए संग कहो नानक भजते एक रंग। बसंत महला नावा कहां पूले ओरे झूठे लोभ लाग। कश बिगड़ो नाहन अजो जाग रहाओ। सम सुपने कहो जग जान बिन सैशन मैं साची मान। संग तेरे हर बस्त नीत निस्बासर पाइता है मीत। बार अंत की होए सहाय कहो नानक गुणता के गाए। बसंत महला पहला अष्टपदियां कर पहला दो तुकिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद जग कौआ नाम नहीं चीत। नाम विसार ग्रह देख पीत। मनुआ डोले चीता नीत जग स्यों तूटी झूठ प्रीत। काम क्रोध बिख बज्र भार नाम बिना कैसे गुणचार रहाओ। कार बालू का कुमन केर बरखस बाणी बुद्ध बुदा हेर। मात्र बूंद ते तार चक फेर सर्ब जोत नामे की चेर। सर्ब उपाय गुरु सिर मोर भगत करो पगला गौ तोर। नाम रता चाहो तुझे और नाम दुराए चले सो चोर। पत खोई बिखियंचल पाए साच नाम रतो पास्यों कर जाए। जो किश कीनस प्रभर जाए पै माने निरपो मेरी माए। कामन चाहे सुंदर भोग पान फूल मीठे रस रोग। खिले बिकसै ते तो सोग प्रभ शरणागत कीनस होग। कापड़ पहरस अधिक सिंगार माटी फूली रूप बेकार। आसा मनसा बांधो बार नाम बिना सुना कर बार। गाचो पुत्री राजकुमार नाम पणो सच दोत सवार। प्रयो सेवो प्रभ प्रेम आधार गुर सबदी बिखत्यास निवास। गुर सबदी बिखत्यास निवार मोहन मोहे लिया मन मोहे। गुर कै शब्द पछाना तोहे। नानक ठांडे चाहे प्रभु दयार तेरे नाम संतोखे कृपा धार। बसंत महला पहला मन भूलो परमस आए जाए। अत लुब्ध लुबानो बिख माए। नए असर दी सहक पाए जो मीन कुंडलिया कंठ पाए। मन भूलो समझ सो साच नाए। गुर शब्द बिचारे सहज पाए रहाओ। मन भूलो परमस पवर तार। बिल बिरथे चाहे बहु बेकार। मैंगल ज्यों फासस काम हार। कड़बंधन बांध्यो शीस मार। मन मुग्धो दादर भगतहीन दर प्रहट सरापी नाम बीन। ता कै जात ना पाती नाम लीन सब दुख सखाई गुण है बीन। मन चले न जाई ठाक राख बिन हर असराते पत ना साख। तू आपे सुरता आप राख
ਧਰ ਧਾਰਨ ਦੇਖੈ ਜਾਣੈ ਆਪ, ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਕਿਸ ਕਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰਮੇਲੇ ਬਿਰਥਾ ਕਹੋ ਮਾਏ, ਅਵਗਣ ਛੋਡੋ ਗੁਣ ਕਮਾਏ, ਗੁਰਸਬਦੀ ਰਾਤਾ ਸੱਚ ਸਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਏ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹਉਮੈ ਕੱਢੈ ਧੋਏ, ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਬੰਧ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਸਦਾ ਨਾਮ ਵਿਖਾਣਾ ਔਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਮਨ ਹਰ ਕੈ ਭਾਣ ਆਵੈ ਜਾਏ, ਸਮੈ ਏਕੋ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਸਭ ਹੁਕਮ ਵਰਤੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ, ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਭ ਤੇ ਸਿਰ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਦੇ ਨਾਹੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਮਾਤਾ ਗਾਹੇ, ਤੂੰ ਮੋਟੋ ਠਾਕਰ ਸ਼ਬਦ ਮਾਹੇ, ਮਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨਿਆ ਸੱਚ ਸਲਾਹੇ, ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਜਿਸ ਨਰ ਹੋਏ, ਇਕ ਤਰਾ ਚੈ ਪਰ ਹਰ ਦੋਏ, ਦੂਰ ਦਰਦ ਮਾਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਜੈ ਏਕ ਸਮਾਏ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਕੇਤੀ ਬਿਲਲਾਏ, ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਚੀਨਸ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ, ਰਹਾਉ ਬੇਦ ਵਖਾਣ ਕਹੈ ਇਕ ਕਹੀਐ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਅੰਤ ਕਿਨ ਲਹੀਐ, ਏਕੋ ਕਰਤਾ ਜਿਨ ਜਾ ਕੀਆ, ਬਾਜ ਕਲਾ ਧਰ ਗਗਨ ਧਰੀਆ, ਏਕੋ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤੁਨ ਬਾਣੀ, ਏਕ ਨਿਰਾਲਮ ਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਏਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੈ ਜਾਣ, ਏਕੋ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸੱਚ ਕੋਈ, ਗੁਰਮਤ ਪੂਰਾ ਜੁਜੁਗ ਸੋਈ, ਅਨਹਦ ਰਾਤਾ ਏਕ ਲਿਵਤਾਰ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ ਲਖ ਅਪਾਰ।

तू सर सागर गुण गहीर, तू अकुल निरंजन निरंजन परमहीर, तू आपे करता करण योग, ने केवल राजना सुखी लोग, नानक त्रापे हर नाम सुआद, बिन हर गुर प्रीतम जन्म बा। बसंत हिंडोल महला पहला, कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद, नौ सत चौदह तीन चार, कर महल चार बहाली, चारे दीवे चौ हथ दिए एका एका वारी, मेहरवान मधसूदन माधव, ऐसी संगत तुम्हारी रहाओ, घर कर लश्कर पावक तेरा, धर्म करे सिकदारी, धरती देग मिलै कवेरा, भाग तेरा भंडारी, नासा बूर होवे फिर मंगे, नारद करे खुवारी, लाबा देरा बंदी खाना, अवगुण पैर लोहारी, पूंजी मार पवे नित मुदगर, पाप करे कोटवारी, पावे चंगा पावे मंदा, जैसी नजर तुम्हारी, आदि पुरख को अल्लाह कही है, सेखा आई वारी, देवन देवत्या कर लागा, ऐसी कीर्त चाली, कूंजा बाग निवाज मुसल्ला, नील रूप बनवारी, घर घर मिया सब ना जिया, बोली अगर तुम्हारी, जे तू मीर महीपत साहिब, कुदरत कौन हमारी, चारे कुंट सलाम करेंगे, घर घर सिफ तुम्हारी, तीर्थ सिमरत पुन दान, किशलाह मिलै दिहाड़ी, नानक नाम मिलै वडियाई, मेका कड़ी संभाली, बसंत हिंडोल कर दूजा महला चौथा, एको अंकार सतगुर प्रसाद, काया नगर एक बालक वसिया, खिन पल थिर ना रहाई, अन क्यों पाव जतन कर थाके, बारंबार परमाई, मेरे ठाकुर बालक एक तकरियान, सतगुर मिलै ता पूरा पाई है, भज राम नाम निशान रहाओ, एहो मृतक मड़ा शरीर है सब जग, जित राम नाम नहीं वसिया, राम नाम गुर उदक चुआया, फिर हरिया हुआ रसिया, मैं निरखत निरखत शरीर सब खोजिया, एक गुरमुख चलत दिखाया, बाहर खोज मोए सब सागत, हर गुरमती कर पाया, दीना दीन दयाल पे है, जो कृष्ण बिद्र कर आया, मिल्यो सुदामा भावनी तार, सब किश आगे दालद पंज समाया, राम नाम की पैज वडेरी, मेरे ठाकरे आप रखाई, जे सब सागत करे बखीली, एक रती तिल ना कटाई, जन की उसत है राम नामा, दे दे सोभा पाई, निंदक साकत खब ना सकै तिलो, अपने कर लुकी लाई, जन को जन मेर सोभा पावे, गुण में गुण परगासा, मेरे ठाकर के जन प्रीतम प्यारे, जो होवे दासन दासा, आपे जल परंपर करता, आपे मिल मिलावे, नान गुरमुख सहज मिलाए, ज्यों जल जलै समावे, बसंत महला पंजवा, कर पहला दो तुकिया, एको अंकार सतगुर प्रसाद, सुन साखी मन जप प्यार, अजामल उदरिया कहे एक बार, बाल्मीक होवा साध संग, ध्रुव को मिलिया हर निसंग, तेरिया संता जाचो चरण रेन, ले मस्तक लावो कर कृपा देन रहाओ, गुण का गण का उदरी हर कह तोत, गज इंद्र त्यायो हर कियो मोख, बिपर सदामे दालद पंज, रे मन तू पी पज गोबिंद, बदक उदारे ओ खम परहार, कुबजा उदरी अंगुष्ट तार, पिदर उदारे ओ दास्त पाए, रे मन तू पी हर ते आए, प्रहलाद रखी हर पैज आप, बस्तर शीनत द्रौपदी रखी लाज, जिन जिन सेव्यांत बार,
ਰੇ ਮਨ ਸੇਵ ਤੂੰ ਪਰੈ ਪਾਰ, ਧੰਨੈ ਸੇਵਿਆ ਬਾਲ ਬੁੱਧ, ਤਰਲੋਚਨ ਗੁਰਮਿਲ ਪਈ ਸਿੱਧ। ਬੇਣੀ ਕਹੋ ਗੁਰ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਪੀ ਹੋਏ ਦਾਸ, ਜੈ ਦੇਵ ਤਿਆਗਿਓ ਅਹੰ ਮੇਵ, ਨਾਈ ਉਦਰਿਓ ਸੈਨ ਸੇਵ। ਮਨ ਡੀਗ ਨਾ ਡੋਲੈ ਕਹੂੰ ਜਾਏ, ਮਨ ਤੂੰ ਪੀ ਤਰਸੈ ਸਰਨ ਪਾਏ, ਜਿਹਾ ਨਗਰੋ ਠਾਕਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪ, ਸੇ ਤੈ ਲੀਨੇ ਭਗਤ ਰਾਖ। ਤਿਨਕਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਕੋਏ, ਇਹ ਬਿਧ ਦੇਖ ਮਨ ਲੱਗਾ ਸੇਵ, ਕਬੀਰ ਤੇ ਆਇਓ ਏਕ ਰੰਗ, ਨਾਮ ਦੇਵ ਹਰ ਜੀਓ ਬਸੈ ਸੰਗ, ਰਵਿਦਾਸ ਤੇ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਅਨੂਪ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਵਿੰਦ ਰੂਪ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅਨਕ ਜਨਮ ਭਰਮੇ ਜੋ ਨਮਾਹੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨ ਨਰਕ ਪਾਹੇ, ਭਗਤ ਬਿਹੂਨਾ ਖੰਡ ਖੰਡ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਜਮ ਦੇਤ ਡੰਡ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਮੀਤ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਸਦਾ ਪ੍ਰੀਤ। ਰਹਾਉ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਆਵਤ ਕਹੂੰ ਕਾਜ, ਤੂੰ ਬਾਦਰ ਸਭ ਮਾਇਆ ਸਾਜ।

काम क्रोध मन वस किया, सुपने नाम न हर लिया। कभी राजा कब मंगनहार, दुख सुख बंधो संसार। मन उदरन का साजना है, पाप बंधन नित पौत जाहे। ईठ मीत को सखा नाहे, आप बीज आपे ही खाहे। जा कह कीने होत बेकार, से छोड़ चलिया खन मैं गावार। माया मोहे बहु परमया, किरत रेख कर करमया। करने हारा लिपत आप, नहीं लेप प्रपुन पाप। राख ले हो गोबिंद दयाल, तेरी शरण पूर्ण कृपाल। तुझ बिन दूजा नहीं ठाओ, कर कृपा प्रभ देहो नाओ। तू करता तू करनहार, तू ऊंचा तू बहु अपार। कर कृपा लड़ ले हो लाए, नानक दास प्रभ की शरणाए। बसंत की वार महल पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर का नाम ते आए कै हो हरिया पाई, कर्म लिखन तै पाई है एह रुत सुहाई। वन त्रैण त्र पौन मौलिया, अमृत फल पाई। मिल साधु सुखी उपजै, लथी सब शाई। नानक सिमरै एक नाम, फिर बहुन ना ताई। पंजे बदे महाबली, कर सच्चा टोवा। अपने चरण जपायन, विच दै खड़ोवा। रोग सोग सा मिट गए, नित नवा निरोवा। दिन रैण नाम त्याईंदा, फिर पाए ना मोवा। जिस ते उपजिया नानका, सोई फिर होवा। किथों उपजै कह रह, कै माए समावै। जी जंत सब खसम के, कौन कीमत पावै। कहन त्याईन सुन नित, से भगत सुहावै। अगमा गोचर साहेबो, दूसर लवै ना लावै। सच पूरै गुरु उपदेसिया, नानक सुनावै। बसंत बाणी भगतां की, कबीर जी कर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मौली धरती मौलिया आकाश, कटकट मौलिया आत्म प्रगास। राजा राम मौलिया अंत पाए, जै देखाओ तै रहा समाए। रहाओ द्वितीया मौले चार वेद, सिमरत मौली स्यों कतेब। शंकर मौल्य योग त्यान, कबीर को स्वामी सब समान। पंडित जन माते पढ़ पुराण, जोगी माते जोग त्यान। सन्यासी माते हमेव, तपसी माते तब कै पेव। सब मत माते को न जाग, संग ही चोर कर मुसन लाग। रहाओ जागै सुख देओ आर्याकूर, हनुमंत जागै तर लंकूर। शंकर जागै चरण सेव, कल जागे नामा जय देव। जागत सुबत बहु प्रकार, गुरमुख जागै सोई सार। इस देही के अधिक काम, कह कबीर भज राम नाम। जोय खसम है जाया, पूत बाप खेल आया। बिन श्रवणा खीर पिलाया, देखो लोगा कल को पाओ। सुत मुकलाई अपनी माओ। रहाओ पग्गा बिन हुरिया मारता, बदने बिन खिर खिर हासता। निंद्रा बिन नर पैसोवै, बिन बासन खीर बलोवै। बिन असन गऊ लवेरी, पेंडे बिन बाड़ कनेरी। बिन सतगुर बाट ना पाई, कहो कबीर समझाई। प्रहलाद पठाए पंड साल, संग सखा बहुलिए बाल। मोको कहां पढ़ाव सियाल जाल, मेरी पटिया लिख दे हो श्री गोपाल। नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, मेरो और पढ़न से नहीं काम। रहाओ संडे मर कह कहो जाए, प्रहलाद बुलाए बेगताए। तू राम कहन की छोड़ बान, तुझ तुरत छिड़ाऊ मेरो कहो मान। मोको कहां सतावो बार बार, प्रभ जल थल गिर किए पहार। एक राम ना छोड़ो गुरहगार, मोको काल जार पावे मार डार। काड़ खड़ग को प्यो रसाए, तुझ रख नहारो मोहे बताए। प्रभ थमते निकसे कै विस्तार, हर नक्ष छेद्यो नख बिदार। ओए परम पुरख देवाद देव, भगत हेत नरसिंह पेव। कह कबीर को लखे ना पार, प्रहलाद उधारे अनकबार।
ਇਸ ਤਨ ਮਨ ਮੱਦੇ ਮਦਨ ਚੋਰ, ਜਿਨ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਹਿਰਲੀਨ ਮੋਰ। ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਪ੍ਰਭ ਕਹੋ ਕਾਹੇ, ਕੋ ਕੋ ਨਾ ਬਿਗੂਤੋ ਮੈਂ ਕੋ ਵਾਹੇ। ਮਾਦਾ ਦਾਰਨ ਦੁਖ ਸਯੋ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੇਰੋ ਚਪਲ ਬੁੱਧ ਸਿਓ ਕਹਾਂ ਬਸਾਏ। ਰਹਾਓ ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਸਿਵ ਸੁਕਾਦ, ਨਾਭ ਕਮਲ ਜਾਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾਦ। ਕਬ ਜਨ ਜੋਗੀ ਜਟਾ ਤਾਰ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਅਵਸਰ ਚੱਲੇ ਸਾਰ। ਤੂੰ ਅਥਾਹ ਹੋ ਮੋਹੇ ਥਾਹ ਨਾਹੇ, ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦੁਖ ਕਹੋ ਕਾਹੇ। ਮੋਰੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖਿਆਥ ਤੀਰ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਣ ਰਹੁ ਕਬੀਰ। ਨਾਇਕ ਏਕ ਬਨਜਾਰੇ ਪਾਚ, ਬਰਦ ਪਚੀਸਕ ਸੰਗ ਕਾਚ। ਨਹੋ ਬਹੀਆਂ ਦਸ ਗੋਨ ਆਹੇ, ਕਸਨ ਬਹੱਤਰ ਲਾਗੀ ਤਾਹੇ। ਮੋਹੇ ਐਸੇ ਬਣਜ ਸਿਉ ਨਹੀਂ ਨਕਾਜ, ਜਿਹ ਘਟੈ ਮੂਲ ਨਿਤ ਬੜੈ ਬਿਆਜ। ਰਹਾਓ ਸਾਤ ਸੂਤ ਮਿਲ ਬਨ ਯਕੀਨ, ਕਰਮ ਭਾਵਨੀ ਸੰਗ ਲੀਨ। ਤੀਨ ਜਗਾਤੀ ਕਰਤਰਾਰ, ਚਲੋ ਬਨਜਾਰਾ ਹੱਥ ਚਾਰ। ਪੂੰਜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਬਨਜ ਟੂਟ, ਦਹਿ ਦਿਸ ਟਾਂਡੋ ਗਯੋ ਫੂਟ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮਨ ਸਰਸੀ ਕਾਜ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੋ ਤਾਂ ਭਰਮ ਪਾਜ। ਬਸੰਤ ਹਿੰਡੋਲ ਕਰ ਦੂਜਾ ਏਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ।

मरह अपहगे। कहो पंडित सूचा कवन ठाओ, जहां बैस हो भोजन खाओ रहाओ। जेहबा जूठी बोलत जूठा, कर्ण नेत्र सब जूठे। इंद्री की जूठ उतर सनाही, ब्रह्म अग्न के लूठे। अग्न पी जूठी पानी जूठा, जूठी बैस पकाया। जूठी करसी प्रोसन लगा, जूठे ही बैठ खाया। गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दीनी कारा। कह कबीर ते नर सूचे, साची परी बिचारा। रामानंद जी कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। कत जाइए रे कर लागो रंग, मेरा चेतना चले मन पयो पंग रहाओ। एक दिवस मन पहियो मांग, कह चंदन चोवा बहु सुगंध। पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुरमन ही माहे। जहां जाइए तह जल पखान, तू पूर रहो है सब समान। वेद पुराण सब देखे जोए, उहां तव जाइए जो इहां ना होए। सतगुर मैं बलिहारी तोर, जिन सगर बिकल ब्रह्म काटे मोर। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटे कोट कर्म। बसंत बाणी नाम देव जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। साहेब संकट वै सेवक पजै, चिरंकाल ना जीवै दो को लज्जै। तेरी भगतना छोड़ो पावै, लोग हसै। चरण कमल मेरा ही अरे बसै रहाओ। जैसे अपने तरह प्राणी मरन मांडै, तैसे संत जना।

नारायण सो प्रसन्न होए ता सेवक नामा। लोभ लहर अत निजर बाजे काया डूबे केसवा। संसार समुंदे तार गोबिंदे तार लै बाप बीठला। रहाओ अनल बेड़ा हों खेव ना सकाऊं तेरा पार ना पाया बीठला। हो दयाल सतगुर मेल तू मोको पार उतारे केसवा। नामा कह हों तार पी ना जाना मोको बहां दे बीठला। सहज अवल धूड़ मणि गाड़ी चालती पीछे तिनका लेकर हागती। जैसे पनकत थ्रू टिट हांकती सर तोवन चाली लाडली। रहाओ तोबी तोवे बिरा बिराता हर चरण मेरा मन राता। पंत नाम देव रम रहे अपने भगत पर कर दया। बसंत बाणी रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तुझे सुजनता कशु नाहे पहरावा देखे उपजाहे। गर्भवती का नाही ठाओ तेरी गर्दन ऊपर लवे काओ। तू काए गर्भ बावली जैसे पांदव खूंब राज। तू तिस्ते खरी उतावली रहाओ जैसे कुरंक नहीं पायो पेद। तन सुगंध ढूंढे परदेस आप तन का जो करे विचार। तिस नहीं जम कंकर करे खुवार। पुत्र कलत्र का करे हंकार उठाकर लेखा मंगनहार। फेड़े का दुख सह जियो पाछे किसे पुकारे पियो पियो। साधु की जौ लेहे ओट तेरे मिटे पाप सब कोट कोट। कह रविदास जो जपे नाम तिस जात ना जन्म ना जोन काम। बसंत कबीर जीओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुर है की जैसी तेरी चाल तेरी पुष्ट ऊपर चमक बाल। इस घर में है सो तू ढूंढ खाहे और किसी ही के

पीठ मत लकड़ी सोटा तेरी परे पीठ। कह कबीर भोग भले कीन मत को मारे ईट टेम। राग सारंग चौब दे महला पहला कर पहला एक ओंकार। सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर। अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद। अपरे ठाकर की हों चेरी चरण गहे जग जीवन प्रभ के हम मैं मारन बेरी रहाओ। पूरन परम ज्योत परमेश्वर प्रीतम प्राण हमारे। मोहन मोहे लिया मन मेरा समझ सो शब्द विचारे। मन मुख हीन होची मत झूठी मन तन पीर शरीरे। जबकि राम रंगी लहराती राम जपत मन तीरे। हाँ मैं छोड़ पई बैरागन तब साची सुरत समानी। अकोल निरंजन स्यो मन मानिया बिसरी लाज लुकानी। पूर पवेख नाही तुम जैसे मेरे प्रीतम प्राण आधारा। हर कै नाम रती सुहागन नानक राम पतारा। सारंग महला पहला हर बिन क्यों रही है दुख व्यापै। जेहवा साधना फिकी रस बिन बिन प्रभ काल संतापै रहाओ। जब लग दर्शना परसे प्रीतम तब लग भूख प्यासी। दर्शन देखते ही मन मानिया जल रस कमल बेगासी। ऊनव कनहर गरजै बरसै कोकल मोर बैरागै। तरवर बिरख बिहंग भयंगम कर पिर तन सोहागै। कुचर करूप कुनार कुलखनी पिरका सहज न जानिया। हर रस रंग रसन नहीं तृप्ति दुर्मत दुख समानिया। आए न जावे ना दुख पावे ना दुख दर्द शरीरे। नानक प्रभ ते सह सुहेली प्रभ देखत ही मन तीरे। सारंग महला पहला दूर नाही मेरो प्रभ प्यारा। सतगुर बचन मेरो मन मानिया हर पाए प्राण आधारा रहाओ। एन बिद हर मिली वर कामन तन सुहाग प्यारी। जात वर्ण कुल सहसा चूका गुरमत शब्द बिचारी। जिस मन माने अवमान ना तां कहो हिंसा लोभ विसारे। सहज रवै वर कामन पिर की गुरमुख रंग सुवारे। जारो वैसी प्रीत कुटुंब संबंधी माया मोह पसारी। जिस अंतर प्रीत राम रस नाही दुबदा करम बेकारी। अंतर रतन पदार्थ हित कहो दुरै ना लाल प्यारी। नानक गुरमुख नाम अमोलक जुग जुग अंतर तारी। सारंग महला चौथा कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद हर के संत जना की हम तूर। मिल सत संगत परम पद पाया आत्म राम रया भरपूर रहाओ। सतगुर संत मिलै शांत पाई है किल विख दुख काटे सब दूर। आत्म ज्योत पई प्रफुलत पुरख निरंजन देखिया हजूर। वड्डे भाग सतसंगत पाई हर हर नाम रहा भरपूर। अठ सठ तीर्थ मज्जन किया सतसंगत पग नाए तूर। दुरमत बिकार मलीन मत होछी हिरदा कसुध लागा मोहपूर। बिन करमा क्यों संगत पाई है हम मैं ब्याप रहा मन चूर। हो दयाल कृपा कर हर जी मांगो सतसंगत पग तूर। नानक संत मलै हर पाई है जन हर पेटिया राम हजूर। सारंग महला चौथा गोविंद चरणन कौ बलिहारी। भवजल जगत न जाई तरना जप हर हर पार उतारी रहाओ। हिरदय प्रतीत बनी प्रभ केरी सेवा सुरत विचारी। अनदिन राम नाम जप हिरदय सर्व कला गुणकारी। प्रभ अगम्य गोचर रविया सर्व ठाई मन तन अलख्या पारी। गुर कृपाल पए तब पाया हृदय लख लखारी। अंतर हर नाम सर्व धरणी तार साकत कौ दूर पया हंकारी। तृष्णा जलत न कब हूं बूझै जुवै बाजी हारी। उठत बैठत हर गुण गावै गुर किंचित कृपा तारी। नानक जिन कौ नदर पई है तिनकी पै सवारी। सारंग महला चौथा
ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨੀ ਉੱਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਓ। ਜੋ ਜਨ ਦੀਨ ਭਏ ਗੁਰ ਆਗੈ ਤਿਨਕੇ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੇ, ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਕਰੈ ਗੁਰ ਆਗੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੇ। ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਰਸਨਾ, ਰਸ ਗਾਵੈ ਰਸ ਵਿਚਾਰੇ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚੀਨਿਆ ਓਏ ਪਾਵੈ ਮੁਖ ਦੁਆਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਅਚਲ ਅਚੱਲਾ ਮਤ, ਜਿਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰੇ, ਤਿਸ ਆਗੈ ਜੀਓ ਦੇਵੋ ਆਪਣਾ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਮਨਮੁਖ ਭ੍ਰਮ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਲਾਗੇ, ਅੰਤਰ ਅਗਿਆਨ ਗੁਬਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰੇ। ਸਰਬੇ

रहाओ। कहत सुनत किछ सांत ना उपजत, बिन विश्वास क्या सेखा, प्रभु त्याग ज्ञान जो चाहत, तां कै मुख लागे का लेखा। जां कै रास सर्व सुख स्वामी, आना मानत भेखा, नानक दर्स मगन मन मोहयो, पूर्ण अर्थ बसेखा, सारंग महला पंजवा, सिमरन राम को एक नाम, गल कल मल दग्ध होहे खिने अंतर, कोटदान इशनान रहाओ। आन जंजार बिरथा श्रम कालत, बिन हर फोकट ज्ञान, जन मरन संकट ते छूटै, जगदीश भजन सुख ध्यान। तेरी सरन पूर्ण सुख सागर, कर कृपा देवो दान, सिमर सिमर नानक प्रभ जीवै, बिनस जाए अभिमान। सारंग महला पंजवा, तूरत सोई जे तुर कौ लागै, सोई तुरंतर सोई बसुंदर, हर एक प्रेम रस पागै रहाओ। बल बंच करै ना जानै लाभै, सो तूरत नहीं मूड़ा, स्वार्थ त्याग या सार्थ रचियो, न सिमरै प्रभ रूड़ा। सोई चतर सियाणा पंडित, सो सूरा सो दाना, साध संग जन हर हर जपियो, नानक सो परवाना। सारंग महला पंजवा, हर हर संत जना की जीवन, बिखै रस भोग अमृत सुख सागर, राम नाम रस पीवन रहाओ। संचन राम नाम धन रतना, मन तन भीतर सीवन, हर रंग रांग भय मन लाला, राम नाम रस खीवन। ज्यो मीना जल स्यो उरजानो, राम नाम संग लीवन, नानक संत चातर की न्याई, हर बूंद पान सुख थीवन। सारंग महला पंजवा, हर के नामहीन बेताल, जेता करन करावन तेता, सब बंधन जंजाल रहाओ। बिन प्रभ सेव करत्यन सेवा, बिरथा काटै काल, जब जम आए संघारै प्राणी, तब तुमरो कौन हवाल। राख लेहो दास अपने कौ, सदा सदा कृपाल, सुख निधान नानक प्रभ मेरा, सा संग तन माल। सारंग महला पंजवा, मन तन राम को व्यवहार, प्रेम भगत गुण गावन गीदे, पोहत ने संसार रहाओ। श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी, हो साध को आचार, चरण कमल अस्थित हृदय अंतर, पूजा प्राण को आधार, प्रभ दीन दयाल, सुनो बेनंती कृपा अपनी तार। नाम निधान उचरो नित रसना, नानक सद बलिहार। सारंग महला पंजवा, हर के नामहीन मत थोरी, सिमरत नाहे श्री धर ठाकर, मिलते अंध दुख कोरी रहाओ। हर के नाम स्यों प्रीत ना लागी, अनक भेख बहु जोरी, टूटत बार ना लागै तां कहो, ज्यों गागर जल फोरी। कर कृपा भगत रस दीजै, मन खचत प्रेम रस खोरी, नानक दास तेरी सरनाई, प्रभ ज्ञान ना होरी। सारंग महला पंजवा, चित वाओ वाह अवसर मन माहे, होय एकत्र मिलो संत साजन, गुण गोबिंद नित गाहे रहाओ। बिन हर भजन जेते काम करिय, तेते बिरथे जाहे, पूर्ण परमानंद मन मीठो, तिस बिन दूसर नाहे। जप तप संजम कर्म सुख साधन, तोलना कछुऐ लाहे, चरण कमल नानक मन बेदियो, चरणै संग समाहे। सारंग महला पंजवा, मेरा प्रभ संगे अंतरजामी, आगै कुशल पाछै खेम सुखा, सिमरत नाम स्वामी रहाओ। साजन मीत सखा हर मेरा, गुण गोपाल हर राया, बिसरना जाई निमख हिरदै ते, पूरे गुरु मिलाया। कर कृपा राखे दास अपने, जी जंत वस जाकै, एकाले पूर्ण परमेश्वर, पाव नहीं नानक ताकै। सारंग महला पंजवा, जाकै राम को बल होए, सगल मनोरथ पूर्ण ताहू के, दुख ना व्यापै कोए रहाओ। जो जो जो जन भगत दास निज प्रभ का, सुन जीवा।